स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति, मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक। दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आँखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ। शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत सारी योग की योग सीरीज हमने आपके साथ शेयर की है, योग को किस तरीके से अपनाने के लिए बताया है, योग को करने के लिए बताया है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को भी शेयर किया है जो हमारे

स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुई है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि जब योग से हम जुड़े थे तो मुझे भी इस तरीके की जानकारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जब हम योग से जुड़े तो हमें भी यह मालूम हुआ कि योग हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूं ही नहीं कहा गया है कि योग से जुड़ने के साथ जीवन भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे योगियों को हमने योग करते हुए देखा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हमने योग करते देखा है, जो कि एक बहुत गंभीर रूप से जब पीड़ित होते हैं तो भी योग को करने के बाद भी उन्हें राहत मिलती है। योग में सबसे पहला जो कि हम पूर्णता 8 प्राणायामों के बारे में बताते आए हैं, अनुलोम विलोम कपाल भाती अग्निसार भस्तिका भ्रामरी अग्निसार, क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मुख्य 8 प्राणायामों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई कलाकार होता है तो जो आगे रहता है यानी कि जो फ्रंट पेज पे होता है हम उसे ही देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे जो जिनका हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, जिनके कारण हम उनको जानते हैं, वो हम कहीं न कहीं भूल जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में तो हमने सभी को जाना, किया भी और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, पर क्या इसके फायदे को किसी ने जाना? अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फायदे के तो योग कोई करेगा ही नहीं, यानी कि अनुलोम विलोम कपाल भाती अग्निसार भस्तिका भ्रामरी, यदि हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें उसके फायदे अगर ना मिलते तो कोई समझ ही नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं, यह एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति जैसी ही है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्रचित होकर के हम एक शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें वातावरण ही केवल शांत मिले, महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारी अंदर का ध्यान और हमारी अंदर की खुशी महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अनुलोम विलोम को हमने किया, इस प्राणायाम के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, कैसे होता है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस अवस्था से और किस अवस्था तक यह प्राणायाम करना चाहिए, परंतु आज हम अनगिनत फायदे लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास, नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस फूर्ति की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित, जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है।
अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है। इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए, लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरन्स और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी है, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खराटे। एक को खराटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े, इनके फायदों को जाने और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं
जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है। उसी प्रकार इसका उल्टा, यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है या हम कहें ऐसी अवस्था है जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्र चित हो करके हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो हमें सामने अपने ईश्वर, अपने ईष्ट देव के दर्शन हो रहे हों, और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे।

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे

उठो, जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक हनुमान छुपा है। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र, रब राखा सब राखा। और हाँ जी, आप सुन रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक शो पहली किरण, और आज का दिन है बेहद खास। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज हम मना रहे हैं हनुमान

जयंती, वो दिन जो हमें एक ऐसा बालक देके गया जिसने हमें ये समझाया कि बल क्या है, बुद्धि क्या है, और हाँ, गिर गए हैं तो उठना कैसे है। वो जब बचपन में प्रभु श्री राम के भक्त यानी हनुमान जी ने सूर्य को निगला था और उसके बाद में उनको दंड स्वरूप बहुत कुछ झेलना पड़ा। बचपन में इतनी चंचलता जैसे हर बच्चे में होती है, हर एक बच्चा नटखट होता है। उसके बाद जब आपकी प्यारी सी सौम्य वाली मुस्कान यानी मासूमियत आगे आती है तो सभी बड़े जन आपको माफ कर देते हैं और आप इस चंचलता के चलते अपने आप को कैसे व्यवस्थित करते हैं, अपनी ही शक्तियों पे कैसे आपको पकड़ पानी है, ये सिखाया हमें हनुमान जी के जीवन ने। प्रभु बजरंगबली के जीवन से हमें अगर कोई शिक्षा मिली है तो वो ये है कि हमें अपनी शक्तियों पे नियंत्रण कैसे पाना है। इसके अलावा अपनी भक्ति से हम कैसे विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, यानी वो भक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान की नहीं, अपने माँ बाप की नहीं, अपने काम की भी हो सकती है, आपके अपने गुणों को निखारने की भी हो सकती है। फिलहाल ऐसी बहुत सारी जानकारियों को आज हम आपसे साझा करेंगे, श्री बजरंगबली के चरणों में अर्जी लगाएंगे, हाजिरी लगाएंगे, भजन का भी आनंद लेंगे, साथ ही साथ में आज का जो ये बेहद खास वाला दिन है यानी हनुमान जयंती है उसको भी मनाते रहेंगे आपकी अपनी आर्ज आकांक्षा के साथ में इन योर ओन मॉर्निंग वाला शो। जी हाँ, पहली किरण।

शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें विनम्रता और संयम जुड़ा हो। हनुमान जी के पास असीम शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। हम भी अपने ज्ञान, ताकत और सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई में करें, ये हमें आना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं और जो सबसे बड़ा हमारे अंदर धर्म होता है जिसको हमें निभाना चाहिए, वो है इंसानियत का। जब हम एक किसी पर्टिकुलर धर्म से ऊपर उठ के बात करते हैं चीज़ों की और चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास में काम को करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, चांस के लिए, किसी भी मौके के लिए हमें किसी एक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जितना हम ऊपर उठेंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, एक दायरे को तोड़ते हुए सभी उतने ही सारे ज्ञान, उतनी ही सारी संभावनाएं हमारे पास होंगी। तो उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इस चीज को उतारेंगे और अपने जीवन को, अपने दिन को और बेहतर बनाएंगे। चलिए फिर हनुमान जी के इस गुण को अपने जीवन में उतारते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है आपके सुबह के भोरे भोरे वाले कार्यक्रम यानी पहली किरण में। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज मनाया जा रहा है हनुमान जयंती। ये हिंदू चंद्र माह चैत्र पूर्णिमा के दिन पड़ने वाला त्योहार है। पूर्णिमा तिथि आज के दिन यानी हनुमान जयंती के दिन भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान की जयंती का प्रतीक है और इसी के रूप में इसे मनाया जाता है। और आज के दिन अगर पूजा की बात करें तो पूजा करने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो हमेशा से ही भोर ही माना जाता है, यानी कि सुबह। आप जितनी अर्ली मॉर्निंग उठ के पूजा प्रार्थना करते हैं उतनी ही स्वीकार्यता दी जाती है प्रार्थनाओं को। और कहते भी हैं जब आप शांत मन से प्रार्थना करते हैं ना तो आप ईश्वर से जुड़ाव कर पाते हैं। और सुबह सुबह सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, बड़ी शांति होती है और जितनी ही सुबह पूजा की जाए उतना ही इसका महत्व माना जाता है। आज के दिन भक्त मंदिरों में जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और शक्ति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। और अगर बात करें तो प्रसाद के रूप में सिंदूर, लाल फूल, लड्डू और केले जैसी वस्तुएं बहुत ही लोकप्रिय हैं। ये दिन, मतलब आज का जो दिन है हनुमान जयंती, भारत भर के मंदिरों में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, जहाँ इसे जुलूसों और विशेष प्रार्थनाओं के साथ भी मनाया जाता है। और जगह जगह पर पंडाल भी लगते हैं और कहीं ना कहीं आप प्रसादी खाने को भी पा जाते हैं।

जी हाँ, आज के दिन यानी माह चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है हनुमान जयंती। ये त्योहार भारत भर में, विशेष उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनाया जाता है। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में याद करते हुए बड़ी श्रद्धा से ये दिन मनाया जाता है। हनुमान जी को शिव का अंश और पवन पुत्र यानी मारुति माना जाता है। ये दिन भगवान राम के सबसे बड़े भक्त वीर हनुमान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिरों में शोभा यात्रा आदि निकाली जाती है। और अगर सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो उत्तर भारत में ये चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है और दक्षिण भारत में, विशेषकर तेलुगु राज्यों में, ये वैशाख महीने के दौरान मनाया जाता है। तो त्योहार तो सेम है, बट मनाने के दिवस जो हैं वो थोड़े से अलग कर दिए जाते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से ये त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके लोग हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करते हैं और उनसे शक्ति और साहस का आशीर्वाद मांगते हैं। उम्मीद है कि महाबली आपके भी बल में आज थोड़े से बढ़ोतरी करेंगे और आप अपने जीवन को और कुशलता से आगे बढ़ा पाएंगे।

श्रोताओं, आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों का दाता कहा गया है और ये वरदान इन्हें प्राप्त हुआ है माता सीता से। अष्ट सिद्धि यानी आठ अलौकिक शक्तियाँ, यही अष्ट सिद्धि कहलाती हैं, जो माता जानकी द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। ये हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व। आपने आज तक सुना तो होगा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता, लेकिन वो आठों सिद्धियां हैं क्या, वो मैंने आपसे साझा किया, और इनका काम क्या होता है चलिए ये भी जान लेते हैं। एक बार फिर से मैं बताऊंगी इन आठों नाम को आप सभी से, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा। बिल्कुल, और चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको जानकारी देती कि अणिमा अपने शरीर को अत्यंत छोटा यानी परमाणु आकार का बनाने की क्षमता रखने वाला, उसी को कहते हैं अणिमा। महिमा अपने शरीर को विशाल या बहुत बड़ा बनाने की क्षमता रखने वाला। गरिमा शरीर को अत्यधिक भारी या वजनी बनाने की क्षमता रखने वाला। और ये खाली शरीर में ही नहीं है, ये चीजें आपके मानसिक स्थिति और बाकी सभी चीजों से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखती हैं। गरिमा, गरिमा वही चीज होती है जो आप बेहतरी से समझ रहे हैं कि कब कहां पे किस रूप में हमें क्या करना है, इसकी इस सोच को पैदा करने की क्षमता प्रदान करते हैं हमारे हनुमान जी। तीन सिद्धियां जो मैंने आपसे साझा की, इसके अलावा पांच और सिद्धियां हैं, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। लघिमा शरीर को भारहीन या अत्यंत हल्का बनाने की क्षमता, और ये जब शरीर की बात आती है तो उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप जुड़े हुए होते हैं। प्राप्ति किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंचने या किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता, ये है हमारे बजरंगबली में। प्राकाम्य की बात करें, किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता, जैसे पानी में सांस लेना, ये भी गुण देने वाले हैं हमारे बजरंगबली। इषित्व ईश्वरत्व की प्राप्ति, मतलब देवताओं जैसे शक्ति और शासन करने की क्षमता रखने वाले हैं हमारे बजरंगबली। वशित्व किसी को भी अपने वश में करने या दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता भी देने वाले हैं बजरंगबली। तो जब इतना सब कुछ है बजरंगबली के पास में, तो थोड़े से बल को हम भी मांग लेते हैं आज के दिन इनका गुणगान करके।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका सुबह का सबसे पहला शो यानी कि पहली किरण, और मैं हूँ आपके साथ में आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। चलिए आज हम बात कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और मना रहे हैं हनुमान जयंती, यानी हनुमान जी के उन गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब है तो वो बहुत ही विशाल और उनके गुणों का कोई बखान ही नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में एक कहानी की ओर, जो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा पर वो मेरे तरीके से सुनिए। तो सूर्य को निगलने की कथा आपने कई दफा सुनी होगी और इस पे पूरा का पूरा हनुमान अष्टक लिखा हुआ है। चलिए मैं आपसे साझा कर देती हूँ। बचपन में हनुमान जी बहुत नटखट थे। एक दिन उन्होंने आसमान में उगते हुए सूर्य को देखा और उसे पका हुआ फल समझ लिया। वे उड़कर सूर्य को निगलने चले गए। इससे पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। तब पवन देव, जो कि उनके मानस पिता कहे जाते हैं, नाराज हो गए और उन्होंने हवा रोक दी और पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तभी सभी देवताओं ने हनुमान जी को जीवन दान दिया और उन्हें कई शक्तियां भी दी। तो ये एक छोटी सी झलक थी हमारे बाल हनुमान के नटखट लीलाओं में से। अब नेक्स्ट कहानी मैं आपसे साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये एक और प्यारा सा भजन।

कई बार अच्छा हमारे जहन में आता है ना कि हनुमान जी आखिर अपनी शक्तियाँ क्यों भूल गए। चलिए ये कहानी भी मैं आपसे साझा कर देती। बचपन की शरारतों के कारण हनुमान जी अक्सर ऋषियों को परेशान करते थे, जैसे कि हर एक मासूम बच्चा, हर एक नादान बच्चा, थोड़ा सा शैतान बच्चा करता ही करता है, और बच्चों पर ये जचता भी है। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। बाद में जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया, तब वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे। तो दोस्तों, कभी कभी हम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, इसलिए जरूरी है कि हर काम में समझदारी और संयम रखें, जो हमारे हनुमान जी के पास बखूबी है। हर इंसान के अंदर अपार क्षमता होती है, एकदम वैसे ही जैसे हमारे बजरंग बली के पास थी। बस हम समझ नहीं पाते, हमें भी आत्मज्ञान करने का, आत्मबोध करने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार हम खुद ही उसे भूल के बैठे होते। किसको? अपनी अपार क्षमता को। हमें बस एक जामवंत जी की जरूरत होती है, जो कि आपके दोस्त, गुरु या परिवार, जो हमें हमारी ताकत याद दिलाए, में से कोई भी हो सकता है। तो खुद पर भरोसा रखें, मैं कर सकता हूँ, खुद को ये बिलीव कराएं, अहंकार से दूर रहें। जितनी सफलता मिले उतने में ही विनम्र बने, सही मार्गदर्शन लें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अपनी शक्ति का सही उपयोग करें, दूसरों की मदद करें, यही सच्ची भक्ति है। ओम हनुमान।

लंका में पहुंच करके दिए वाटिका उजाड़, अक्षय कुमार को दिए धरती पे वो पछाड़, आया जो सामने दिए ककड़ी के जैसे फाड़।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं वो जयंती जो कि हमारे संकट को मोच लेती है, यानी हमारे हनुमान जी की जयंती, हनुमान जयंती। और इनको संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। और भक्त मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं हनुमान जी की पूजा इस प्यारे से भजन के द्वारा।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं हनुमान जयंती और इसको लेकर के कई सारे अलग अलग तिथि है। मतलब हम उत्तर प्रदेश में आज के दिन मनाते हैं चैत्र में जब पूर्णिमा पड़ती है, और अगर हम तमिल की बात करें मतलब साउथ के साइड जाके बात करते हैं तो वो अलग दिन मनाया जाता है, और अगर पूरब में जाए पूरब राज्य यानी ओडिशा में तो पन संक्रांति के दिन मनाया जाता है ये हनुमान जयंती। और इसी दिन को अगर हम टैली करते हैं तो ओडिया में इसी दिन नया साल मनाया जाता है। हनुमान जी को बुराई पर जीत हासिल करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले एक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा इनके पास में अपार शक्ति का भंडार माना गया है, और जब हमारी शक्ति असीमित हो और उसके बाद जब घमंड आ जाता है तो उसको कैसे संभालना है, इसकी भी कला कहीं ना कहीं हम हनुमान जी से ही सीखते हैं। इनके जीवन से हम जितना भी सीखें उतना कम है, पर एक चीज तो जरूर से सीखिए कि किसी भी चीज में हम बैलेंस कैसे स्थापित कर सकते हैं।

और किंवदंतियों के अनुसार जब हनुमान जी ने सीता जी के माथे पर सिंदूर लगा हुआ देखा तो उन्होंने उनसे इस रीति रिवाज के बारे में पूछा। सीता जी ने जवाब दिया कि ये उनके पति की लंबी उम्र को और उनके सुचारू जीवन को सुनिश्चित करता है। फिर वहाँ पे जो भक्ति का मतलब आप एक दृश्य देखते हैं कि हनुमान जी एकदम भोले बालक की तरह पूरे शरीर में उन्होंने अपने पीला सिंदूर लगा लिया और उसके बाद तो क्या ही दृश्य था। मतलब ये है कि जब हम किसी के भी भक्ति में होते हैं, किसी के भी साथ में प्रेम में होते हैं तो हम अपनी वो छवि दिखाते हैं, वो छवि प्रस्तुत करते हैं जो हम किसी के सामने नहीं करते, और वो होता है एक नन्हे से बालक का। और जब नन्हे बालक का हम रूप लेते हैं तो हम जीवन को बहुत ही खुश मिजाजी से जी रहे होते हैं। और एक बात और जिस तरह से जब हम भक्ति में होते हैं तो भक्ति की शक्ति ये भी होती है कि हम अपने गुरु को आगे रखते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ पे गुरु का भजन हो वहीं पे हमारा सृजन हो। तो ऐसा कुछ होता है और कहा भी जाता है कि जहाँ पे राम धुन की महिमा का बखान होता है, जहाँ पे राम रस पान होता है, वहाँ पे हनुमान जी आज भी वास करते हैं। और हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो कि कलयुग हो या कोई भी दौर हो उसमें अमर हैं। तो फिर प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राम।

श्रोताओं, वैसे तो हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगी जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा, डर और नकारात्मकता को दूर करेगा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी लाइफ में। अगर हमें ग्रोथ की बात करते हैं तो इन चीजों की बेहद जरूरत होती है, और वो मंत्र है ओम हनुमते नमः। आज के दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, या फिर दिल से 11 बार ही, लेकिन पूरी तरह से आत्म केंद्रित होके इस मंत्र का जाप करें। सुबह की शुरुआत करें बेहतरी के साथ में, एक भक्तिमय ऊर्जा के साथ में, ताकि आपका जीवन और सौम्य, सुरक्षित और सरल हो सके।

तो हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति होने से ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग और विनम्रता। आज इस पावन दिन पर अपने अंदर के हनुमान को पहचानिए। जय बजरंगबली। फिर मिलेंगे पहली किरण के साथ, एक नई सुबह, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। राधे राधे। जय जिनेंद्र। रब राखा तो सब राखा। अल्लाह हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम. ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. सो भाई साहब, आज ट्यूसडे मॉर्निंग है बट आज की शुरुआत इसलिए अलग हुई है क्योंकि कल रात में आंधी बारिश के बाद मौसम जो है वो काफ़ी चेंज्ड नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उमस काफ़ी बढ़ चुकी है तो इसलिए थोड़ा गर्मी से बच के ही रहिएगा. फिलहाल चलिए आपको ले चलते आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके गुड मॉर्निंग गोंडा में आज क्या है.
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite, Ajay Khan.

सो आज की ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट क्या कहता है, आज की जो बात है, आज का जो विचार है वो कहता है कि टूटी हुई चीजों में भी एक कोना बचा रहता है, टूटी हुई चीजों में भी एक कोना बचा रहता है जहां से फिर से शुरू किया जा सकता है। टूटी हुई चीजों में भी एक कोना बचा रहता है जहां से फिर से शुरू किया जा सकता है। कोई भी चीज जब टूटती है तो वो वेस्ट नहीं हो जाती है, एक कोना उसका जरूर महफूज आप पाते हैं, क्योंकि चीजें एक साथ नहीं बनती है, वो बनती भी टुकड़ों टुकड़ों से है, पार्ट्स से है ना, पीसेस से है। और एक पार्ट टूट जाने का मतलब, एक पार्ट नहीं होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि वो कोना जो होता है, जो बचा हुआ कोना होता है, वो एक उम्मीद होता है। किसकी उम्मीद? फिर से शुरू करने की उम्मीद। आप जब थक जाते हैं, लेट जाते हैं, तो फिर आपको ऐसा कुछ याद आता है कि आप एक बार वापस से खड़े होकर के उस काम को करके देन फिर वापस लेटते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि थक गए तो मतलब अब उठ ही नहीं सकते। जब आप हताश होते हैं तो आप इस तरह नहीं हताश होते हैं कि अपने घर में छोटे से बच्चे की किलकारी सुनने के बाद आप वैसे ही बेसुध पड़े रहें, बल्कि कितनी भी टेंशन और कितनी भी परेशानी होती है आप उसको सुन करके एक बार मुस्कुराते ज़रूर हैं, एक बार उसको जाके खिलाते ज़रूर हैं। क्यों? एक कोना बचा हुआ रहता है। उसी तरह से ज़िंदगी में जब ना उम्मीदी आ जाती है, जब परेशान हो जाते हैं, जब हालाकान हो जाते हैं, तो भी एक कोना हमेशा ही बचा रहता है, और वो कोना होता है उम्मीद का कोना। तो क्या आपके पास नहीं बचा है उम्मीद का कोना? बिल्कुल बचा है, बेशक बचा है, हर तरह से बचा है। हम डरते कब हैं? हम डरते तब हैं जब तक हमने जिन चीजों को जहां तक देखा होता है उसके बर्बाद होने से डरते हैं। लेकिन जब हम उसके पार निकल जाते हैं और चीजें बर्बाद हो चुकी होती हैं, तो फिर हमको नजर आता है उसके पार भी एक पूरा और सारा जहां है। इसलिए डर रहे थे क्योंकि उससे आगे देख ही नहीं पा रहे थे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए थे। लेकिन जब उससे आगे बढ़े, निकले, देखा, तो सारा जहां नजर आ गया उसके बाद में। और ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो उम्मीद हमेशा बरकरार रहती है उस टूटे हुए कोने में, जब कुछ भी ना मिले आपको, आपको लगे काफी कुछ बर्बाद हो चुका है, काफी कुछ जा चुका है, तो उस चीज का, उस वक्त का, उस जिंदगी का एक कोना जरूर मिलेगा, और वो कोना ऐसा होगा जिसमें आप एक नई उम्मीद पाएंगे आगे बढ़ने की, आगे ले जाने की। तो शायद ये उम्मीदें आपको जरूर नजर आने वाली है। आई होप कि आज का थॉट ऑफ द डे आपके उस कोने को वापस से आपको याद दिला चुका हो, जिस कोने की बात हम कर रहे हैं, जो है उम्मीदों का कोना, जहां से शुरुआत वापस से होती है ना। चलिए, अब ये उम्मीद का कोना आपको कितना अपना लगा और किस तरह आप उस तक पहुंचे हैं, अगर पहुंचे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल सुनते रहिए अपना मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग उड़ा विद यू मॉर्निंग चौक आरजे अदनान।

0: अंजी चक दे फटे। सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। सो भाई इस वक्त आपने ट्यून किया है 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 की एप्लीकेशन से। यस, सो आप सब लोगों का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान लाइव है, 9:25 हो रहे हैं स्टूडियो में और अब हम चल रहे हैं 89.6 एफएम की एप्लीकेशन की चैट पर, जहां आप जो कुछ लिखते हैं गोंडा एफएम के आरजेस तक पहुंचता है लाइव उनके शो में। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ लिख भेजा है आपने।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सबसे पहले लखनऊ से आया है मैसेज और वो है आशु मिश्र जी का, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। भाग्य को कोसता है ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। क्या बात है। सो इंसान के बारे में आपने बताया है और ये बात सच है कि आपके हाथ में हमेशा सब कुछ होता है करने के लिए, अपने लिए, एंड ये हम भूल जाते हैं। राइट एंड नियति, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपके कंसर्न को हम देख लेंगे। इसके बाद सविता दुबे जी का मैसेज है, लिखा है सुप्रभात, कल रात की आंधी ने हमारे बगीचे का आम जामुन पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया, तबाही की। ओहो, सो शहर में इतना पता नहीं चला कि कितनी तेज़ हवाएं थी। हालांकि अलर्ट कल सभी के फ़ोन पर आया और इस मानिंद आया कि हम सभी लोग डर गए कि ऐसा क्या हुआ। हमें तो लगा कि एक बार को फ़ोन पर वायरस का अटैक तो नहीं हो गया, लेकिन जिस तरह था वो 3 घंटे की ज़बरदस्त बारिश, बिजली और हवाओं की रफ्तार के बारे में था। इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी हैं, आपका भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग टू यू। हनुमान जयंती की मुबारकबाद दी है, आपको भी बहुत मुबारक। प्रीति जी बहराइच से हैं, सर जी वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड इसके बाद जो है आप लोगों ने रिएक्शन दिए हैं आज के थॉट पर। प्रीति जी ने कहा है जानदार थॉट, मैं अधिकतर टूटे फूटे कोने को रिसाइकल कर कुछ नया बना लेती हूँ, चाहे वो सामान हो या कुछ भी हो। क्या बात है, दैट्स वेरी गुड। आशु जी लिखती हैं लखनऊ से, खुश रहना है तो किसी से उम्मीद मत रखो, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाओ, और उसे उम्मीद रखोगे तो अक्सर टूटोगे, लेकिन खुद से वादा करोगे तो हर हाल में मुस्कुराओगे। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये थॉट पसंद आया और आपने इस थॉट को कहीं ना कहीं खुद में लिया। सो यस, टूटी हुई चीज़ों में भी एक कोना बचा रहता है जहाँ से फिर से शुरू किया जा सकता है, और उस कोने को कहते हैं उम्मीद का कोना। सो कुछ भी टूट जाए, हिम्मत, हौसला, कुछ भी ऐसा, सब्र, उसका एक कोना ज़रूर बचा रहेगा और वही आपकी उम्मीद की मिसाल बनेगा। जी हाँ, चलिए फिलहाल बड़ी खूबसूरत बात हो गई है, काफ़ी कुछ है जो आपसे बताना है, कहना है, और तो और सिटी अपडेट की तरफ भी लेके जाना है आपको। सो चलिए सुनते रहिए अपना मॉर्निंग शो, गुड मॉर्निंग गुंडा वीडियो मॉर्निंग जॉकर जो अदनान, और अगला सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है सिर्फ आपके लिए, सुनिए तो अपनी सुबह को बना लीजिए और भी ज़्यादा शानदार अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गुंडा के साथ, क्योंकि इसमें होते हैं आपके अपने आरजे अदनान।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: हाँ जी, तो भाई जैसा कि हमने वादा किया था कि भाई आने के बाद आपको ले चल रहे हैं सिटी अपडेट की तरफ। तो चलिए हम बताते हैं कि आज की सिटी अपडेट में क्या है और क्या कुछ हो रहा है आपके अपने शहर गोंडा में, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई इसी सब बात के बीच में चलिए अब अपडेट्स की तरफ चढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या है अपडेट आज गोंडा से। तो हम बता दें, 5 अवर अभियंताओं का जो है ट्रांसफ़र किया गया है। देवीपाटन जोन के जो मुख्य अभियंता हैं यदुनाथ यथार्थ ने 5 अवर अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र किया है। सो माहिर अली को जेल रोड उपकेंद्र, शिवप्रसाद मिश्र को आर्यनगर और कुलदीप यादव को अम्बेडकर चौराहा उपकेंद्र में तैनात किया गया। अनिरुद्ध सिंह चंदवतपुर घाट उपकेंद्र स्थानांतरित किया गया है। विनोद कुमार गौतम को मनकापुर टाउन उपकेंद्र का प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि लगातार बिजली की कटौती और बिजली की समस्या की बात चल रही है और लगातार लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखा गया, जिसके बाद अभी ये 5 ट्रांसफ़र्स किए गए हैं 5 अवर अभियंताओं के पावर कॉरपोरेशन में। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है वो ऑफकोर्स गर्मी से जुड़ी हुई है, चूँकि नौतपा लगते ही बेहाल हो गए हैं लोग। और कल की अगर हम बताएं तो 43 डिग्री पहुंच गया था पारा। गर्म हवा और उमस से बेहाल कल हम सभी लोग कहीं ना कहीं नज़र आ रहे थे। सो नौतपा की शुरुआत होने के साथ ही जो एक ज़बरदस्त गर्मी है वो शुरू हो चुकी है। और कल यानी सोमवार की बात करें तो कल 43 डिग्री तक पारा जो है वो पहुंच गया था, और जो रात में न्यूनतम पारा था वो 28 डिग्री दर्ज किया गया था। सो इस तरह से जो है वो काफ़ी लोग अपनी खुद की सुरक्षा करते हुए नज़र आए बचते बचाते हुए। एंड यस, इसके अलावा अगली जो अपडेट है वो है कतरनिया घाट से छपिया तक जो है पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति बनेगी, और पर्यटन विकास से जो स्थानीय लोग हैं इनको रोज़गार देने की बात आ रही है कि भाई किस तरह से कतरनिया घाट को डेवलप किया जाए जिससे बाहरी लोग आ जाए यहाँ पर, और कहीं ना कहीं लोगों को इसका फ़ायदा भी जो लोकल लोग हैं उनको ज़रूर मिले रोज़गार के रूप में। इसके अलावा एक शिकायत की बात है जो कि 266 की जो खाद की बोरी है 290 रुपये में बेच रहे हैं दुकानदार। सो किसान दिवस पर खाद की जो काला बाजारी है इसका मामला सामने आया है। ज़िले में 266 रुपये की यूरिया की बोरी जो है खुलेआम फिलहाल 290 रुपये में बेची जा रही है, और किसानों को ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं जबरन जिंक और जो पोषक तत्व खरीदने के लिए मजबूर भी करने की बात सामने आई है। सो खाद की काला बाजारी का मामला कल सोमवार को विकास भवन का जो सभागार है वहाँ किसान दिवस में ये बात रखी गई। इसके साथ ही बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड में बैंक की जो मनमानी है, नालों की सफाई और चकबंदी विभाग की जो काम करने का तरीका है इसको लेकर नाराज़गी भी जताई गई है। इसके बाद चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और शहर में जो मालवीय नगर में मौजूद सगरा तालाब है जिसको हम सागर तालाब भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और फिलहाल यहाँ पर जो जलीय पौधे जंगली घास उगाई है जल संरक्षण को लेकर के जोर दिया जा रहा है, और लगातार इसकी मांग की जा रही है कि भाई यहाँ पे साफ सफाई कराई जाए। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और जो अगली अपडेट है उसमें हम आपको बता दें कि फ़िलहाल जनगणना 2026 के बारे में, सो ज़िले में जो चल रही है भवन और मकान गणना के दौरान जो पहुंच रहे हैं गणना कर्मी घर घर, लोगों से उनके आवास और उनकी जीवन शैली से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। घर में LPG कनेक्शन है या नहीं, खाना कहाँ बनता है, मुख्य ईंधन क्या है, रसोई घर है या खुले में भोजन पकाते हैं, जैसे इन सवालों पे जो कहीं ना कहीं बात हो रही है और ये सवाल आ रहे हैं। 22 मई से शुरू हुई ये जो प्रक्रिया आगामी 20 जून तक चलेगी। ज़िले के सभी 16 ब्लॉक्स में भवनों और मकानों की गणना का काम तेज़ी से किया जा रहा है। प्रशासन ने इसके लिए करीब 6500 ऐसे गणनाकर्मी हैं, पर्यवेक्षक हैं और बाकी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है। पूरे ज़िले को 6089 मकान सूचीकरण खंडों में बांटा गया है जहां अलग अलग टीमें जा करके डेटा ले रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें ACMO ने जन औषधि केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया। सो ACMO डॉक्टर जय गोविंद ने
कल मेडिकल कॉलेज में जो मौजूद संचालित है जन औषधि केंद्र, उसका निरीक्षण किया। जांच में जन औषधि केंद्र निर्धारित दवाओं के अलावा बाहर की दवा बिक्री का मामला आया। सुसंचालक बिलिंग तक नहीं करते हैं और केंद्र पर प्रिंटर तक नहीं मिला, स्टॉक रजिस्टर भी नहीं है। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई किया जाएगा और उच्चाधिकारियों को लेटर भेजा जाएगा। वहीं संचालक की बात बताया तो उन्होंने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि स्टोर से शासन स्तर तक जारी निर्देशों के हिसाब से ही ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की बिक्री की जा रही है। सो फिलहाल ये थी अगली अपडेट। इसके बाद चूंकि 101.77 रुपये प्रति लीटर पहुंचा है पेट्रोल और 95.29 रुपये में डीजल हो गया है, जिस पे लोगों के कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं आ रही है कि भाई जिससे लगातार काफ़ी सामान जो है वो महंगा भी हुआ है। और इसके बाद अगर बात करें तो भाई समर कैंप से जुड़ी हुई अगली अपडेट आ रही है और मीना शाह पब्लिक स्कूल में जो है समर कैंप में बच्चों को कई तरह की क्रिएटिव, टेक्निकल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है बच्चों को सीखने का मौका दिया जा रहा है। एआई के और रोबोटिक्स के बारे में भी बच्चों को उसकी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा खेल में कई सारे गेम्स कराए जा रहे हैं जिससे बच्चों में कहीं ना कहीं उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसकी हम बात करते हैं यानी चहुमुखी विकास, उसमें बच्चे सधें, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को ग्रैब करें। सो ये रही कुछ ज़रूरी अपडेट्स जो कि हमने आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद है आपके पास में ये सारी अपडेट्स पहुंच गई होंगी और कहीं ना कहीं आपके काम की भी ज़रूर होंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी कुछ है जो आज आपसे साझा करना है इसी मॉर्निंग शो में। सो बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गुना मॉर्निंग जॉक आर जो अदनान के साथ और अब हम बेहतरीन सॉन्ग सुनेंगे, साथ ही बातचीत का दौर जारी रखेंगे। 9:47 हो चुके हैं आपके 99.6 FM के स्टूडियो में और आरजे अदनान लाइव हैं।

अय्यू आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

0: आधे घंटे के लिए गायब हो गया था भाई सल्लू भाई का इंस्टा अकाउंट। जी हाँ, सही सुना आपने, सलमान खान का आधे घंटे के लिए इंस्टा अकाउंट नहीं दिखा था, जिससे मच गई हलाकान। और ये हुआ क्या था, जानना नहीं चाहेंगे? चलिए हम बताते हैं आपको बॉलीवुड से आ रही इस खबर के बारे में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

सल्लू भाई की इन दिनों आने वाली फिल्म मातृभूमि को लेकर चर्चा है। सो काम से अलग सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और भाईजान के फैंस भी उनकी पोस्ट पर नज़र रख रहे हैं, मगर कल की अगर हम बात करें मंडे की, तो अचानक फैंस की फिक्र बढ़ गई। दरअसल कथित तौर पर सलमान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब हो गया। करीब 30 मिनट जो है वो इनकी इंस्टा प्रोफाइल सस्पेंडेड दिखी, जिसके बाद हलचल मच गई। सो फिर सवाल ये आया, क्या हैक हो गया था अकाउंट इंस्टा? सलमान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट के कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें इनकी प्रोफाइल फ़ोटो दिख रही थी, मगर पोस्ट और फॉलोअर्स को लेकर कोई डिटेल नहीं नज़र आई। साथ ही लिखा था यूज़र उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ये भी लिखा था ये प्रोफाइल प्राइवेट है। बस इतनी सी बात थी, लेकिन फ़िलहाल लोग जो है वो चौंक गए थे। एंड अगली बात जो आ रही है वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचा देते हैं। और अगली खबर क्या है भाई, जेम्स बॉन्ड की अफवाहों पर क्या है बोले इद्रीस एल्बा। सो पिछले दिनों सुनने में आया था कि इस फिल्म में भी जेम्स बॉन्ड का किरदार डेनियल क्रेग ही करेंगे, पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया। फिर सुनने में आया कि लूथर, हैंड ऑफ स्टेट और थॉर जैसी फिल्मों में काम कर चुके इद्रीस एल्बा को बॉन्ड का रोल ऑफर हुआ था। इस बारे में इन्होंने बयान जारी करके सफाई दी है। सो एक इवेंट के दौरान एल्बा ने भी इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, सच कहूँ तो मैं कभी इस दौर में था ही नहीं। हम अभिनेताओं के लिए ये प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक है जिसे हर कोई निभाना चाहता है। टीम युवा कलाकारों को खोज रही है। मेरी तरफ से इस प्रोजेक्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। सो ये जो खबर थी ये हॉलीवुड से थी ऑफ कोर्स, और सल्लू भाई की खबर बॉलीवुड से थी। सो फिलहाल दोनों ही दुनिया की खबरें हमने आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि ये खबरें आप तक ज़रूर पहुंच गई होंगी। एंड फिलहाल 10:07 हो गए हैं आपके 89.6 FM के स्टूडियो में, और आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान साथ में हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर आपको एक बेहतरीन सुपर्ब सा सॉन्ग सुनना है, जिसको सुनने के बाद जो है आपकी ये गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, तो मुझे लगता है ये सॉन्ग वर्क करने वाला है। ये थोड़ी सी गर्मी आपकी दूर करने वाला है और आपको डेफिनेटली ये सॉन्ग पसंद आने वाला है। सो सॉन्ग कौन सा है, चलिए सुनिए और उसके बाद बताइए कि हाँ, इस सॉन्ग ने सच में कुछ कूल कूल सा एहसास कराया या नहीं। लेकिन इसको सुनने के बाद ही आप इस चीज़ को बता सकते हैं। सो फिलहाल आप बने रहिए अपने 89.6 FM के स्टूडियो में और सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

हाँ जी, आपका एक बार वापस से वेलकम करते हैं मॉर्निंग स्पेशल वाले शो में। आप कुछ स्पेशल बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं। वापस से आकर बताते हैं क्या है स्पेशल आपके लिए आज के इस शो में।

0: हाँ जी, तो भाई जिस वादे के साथ गए थे कि कुछ स्पेशल ज़रूर होने वाला है, तो चलिए क्या स्पेशल होने वाला है ये भी हम बता ही देते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो भाई दरअसल बात यह है कि कुछ जॉब्स की अपडेट्स थी जो कि आप तक पहुंचानी थी, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा स्पेशल क्या हो सकता है। फिलहाल कई सारे सेक्टर्स में आई हुई है, तो चलिए कहाँ कहाँ पे आई हुई है और क्या क्या लास्ट डेट है ये भी बताते हैं, और किस तरह से किस पोर्टल पर जा करके किस वेबसाइट पर जा करके आपको अप्लाई करना है ये भी आपको हम बता ही देते हैं। हाँ जी, तो भाई अब शुरू करते हैं और बताते हैं। सबसे पहले जो भर्ती आई है वो रेलवे बोर्ड से निकली हुई है, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 14 जून 2026 है। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना क्या है? अप्लाई करना है rrbaapply.gov.in पर, rrbapply.gov.in पर अप्लाई करना है। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर 150 पद निकले हुए हैं, और रेलवे की जो हमने बताया भर्ती दरअसल वो है असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्तियां हैं, 11,127 पद है। वहीं अगर हम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की बात करें तो 150 वैकेंसीज़ हैं इसमें, और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो अगले महीने की 6 तारीख है यानी 6 जून। और पात्रता की बात करें तो BE होना चाहिए या फिर BTEC होना चाहिए या कोई भी योग्यता इस तरह से होनी चाहिए। इसको अप्लाई करना है dpcc.delhi.gov.in पर, जी हाँ dpcc.delhi.gov.in पर अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 91 पद हैं, तकनीकी सहायक वन रक्षक और अन्य पद जो हैं वो खाली हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 3 जून है, योग्यता है 10वीं 12वीं, और जो बाकी निर्धारित पात्रता हैं वो अप्लाई करना है fri.icfre.gov.in fri.icfre.gov.in। इसके अलावा NHI में भी 60 पद निकले हुए हैं, उप प्रबंधक के पदों पर निकली है भर्ती। इसकी लास्ट डेट 15 जून है। इसका वेतन जो है 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये पर मंथ का है। आवेदन करना है nhai.gov.in पर, जी हाँ nhai.gov.in पर अप्लाई करना है। अगली जो वैकेंसी आई है वो है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 40 पदों पर। सो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो अगले महीने की 12 तारीख है, 12 जून। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। आवेदन करना है nationalfertilizers.com पर, जी हाँ nationalfertilizers.com पर। इसके अलावा IIFCL में जो है वैकेंसीज हैं, 15 वैकेंसी है जिसमें उप महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक के पदों पर इसमें वैकेंसी आई हुई है, और 8 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। आयु सीमा की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पद के हिसाब से 45 साल और 50 साल जैसा पद के हिसाब से निर्धारित है उस पर करना है। आवेदन करना है iifcl.in, उसकी साइट पर जाना है, फिर इंडेक्स में जाना है, फिर 189 में जाना, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इस तरह से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमने वैकेंसीज़ बताई है, चाहे वो IIFCL में हो, चाहे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हो, NHI हो, वन अनुसंधान संस्थान हो, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति हो, या फिर रेलवे बोर्ड हो। ये सारी वैकेंसीज़ हमने आपको बता दी कि किस किस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ है, किन किन पदों के लिए है, और कैसे अप्लाई करना है, और लास्ट डेट क्या है। आई होप कि अगर इसमें से किसी में भी आप इंटरेस्टेड होंगे तो जाहिर सी बात है इसके बारे में थोड़ा सा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के पता कर लीजिएगा। आपको इसकी पात्रता, इसका वेतमान और बाकी जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी आपको वो वहीं पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जाना कुछ जॉब वैकेंसीज़ के बारे में, और ये जॉब वैकेंसी आपके लिए भी बेहतर हो सकती है और आपके जानने वालों के लिए भी। क्यों? क्योंकि भाई उनको भी तलाश होती है, और कई बार नोटिफिकेशन या उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती, तो उनसे आप कह सकते हैं भाई और जोड़ सकते हैं 89.6 FM के संग
ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन से वो चूके ना और कहीं ना कहीं साथ में बने रहें, तो उनको इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो ज़रूर मिलती रहेंगी। और ये बढ़िया भी है कि भाई इस तरह की अपडेट्स मिल जाने से हम कहीं ना कहीं इसलिए ब्लेस्ड मानते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई है जगह जहाँ पे हमको ऐसी जानकारियों को मुहैया करा दिया जाता है। फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं मॉर्निंग वाले शो में।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में? क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है,

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जॉक अर्जित नान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। कुछ बातें इतिहास की होती हैं, लेकिन जब सामने आती हैं तो शायद आज का जो वर्तमान है वो इतिहास से सीधे जुड़ा हुआ होता है। ऐसी एक बात है जिसको आज हम आपसे कहना चाहेंगे, और ये बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसने आज को भी चेंज कर दिया है। जी हाँ, बात क्या है आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Arjun Khan.

17 साल की एक विधवा को जिंदा जला दिया गया। एक लड़का था जो ये कभी भूल ही नहीं पाया। इसी आग से शुरू हुई थी एक क्रांति। जी हाँ, हम दरअसल बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय और सती प्रथा के खिलाफ इनकी लड़ाई की। रुको इस पाप को मत करो, मेरी भाभी को जीने दो। ये बात है साल 1811 की। उन्होंने अपनी 17 साल की भाभी को पति के चिता में जिंदा जलते हुए देखा।

और ये जख्म कभी नहीं भरा। किस शास्त्र में लिखा है कि औरत को जलाना चाहिए? यह सवाल था। जवाब यह था कि परंपरा है, चलती चली आ रही है। राममोहन ने हिंदू, इस्लामिक और ईसाई ग्रंथों में सच को खोजा और पाया कि यह सिर्फ अत्याचार है। सती कोई धर्म नहीं, सच्चा धर्म महिलाओं को नहीं जलाता। सदियों की परंपरा पर सवाल उठाता है, ये धर्म का अपमान है, ऐसा कहा गया। लोगों ने उन्हें बहुत कुछ कहा, अंग्रेजों अफसरों ने उन्हें अनसुना किया और जान से मारने की धमकियां भी मिली। राजा राम मोहन राय ने कहा, शिक्षा दो, आजादी दो, जीवन का सम्मान करो, ये हमारी आजादी की बात कर रहे हैं, महिलाओं ने कहा। राम मोहन राय की कलम उनका हथियार बनी, उनकी बातें अखबारों में छपी और ब्राह्मण समाज एक बार उसमें नई लहर दौड़ गई। सो हिंदू परंपराओं में दखल से विद्रोह हो सकता है, ऐसा कहा गया, ब्रिटिशर्स ने कहा, लेकिन राजा राम मोहन राय ने कहा, लेकिन इससे हजारों जाने बचेंगी। सन था ये 1829 का, जब ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को कानूनी रूप से बैन किया, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। लंदन में रूढ़िवादी ताकत में बहुत मजबूत है, ऐसा कहा गया, और राजा राम मोहन राय का जवाब था, तो मैं वहां भी लड़ूंगा। 1830 का वो किस्सा, ये इंग्लैंड गए ताकि ये कानून वापस ना लिया जाए। इन्होंने बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने की कोशिश भी की। इन्हें विद्रोही कहा गया, लेकिन इतिहास इन्हें मसीहा मानेंगे। जी हाँ, जो कभी भारत लौट तो नहीं सके, और 1833 में इंग्लैंड में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार लौटे और बदलाव की मशाल बन करके। और आज का वो दिन है जब सती प्रथा को समाप्त हुए इतने साल हो गए हैं। वो प्रथा जिसमें उसके पति की मृत्यु होने पर पत्नी को जिंदा जलना पड़ता था, परंपराओं के अकॉर्डिंग, रूढ़िवादिता के अकॉर्डिंग। ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं आज भी समाज में हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत छोटी तो लगती हैं, लेकिन है वो कुप्रथा। और शायद इसलिए नहीं कि वो धर्म में है, बल्कि इसलिए कि बस वो चलती चली आ रही है और हम आंखें बंद करके उसको अपनाते जा रहे हैं। क्या आपके और हमारे अंदर एक राजा राम मोहन राय नहीं, जो इसको देखकर कई सारे सवाल उठाता है, लेकिन हम उसी समाज की तरह उस पर मिट्टी डाल देते हैं और कहते हैं छोड़ो जी, आगे बढ़ो, लेकिन हर बार छोड़ना, हर बार ऐसे चलने देना, ये हमारी जिंदगी को ले किधर जाता है। जिस नियम में हम जीना बेहतर नहीं समझते, उन्हीं के लिए हम वापस से आगे बढ़ जाते हैं और उन चीज़ों को रोकते हैं जो शायद हमको करना चाहिए था। सवाल तो है, और ये सवाल सभी के मन में होना चाहिए, क्योंकि हर किसी शख्स के अंदर ये सोच ज़रूर रहती है कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं। सो आइंदा से जब भी कुछ भी करने की चले, उससे पहले सोचिएगा कि बस यूं चलता चला रहा है इसलिए किया जा रहा है, या सच में करा जाना चाहिए ही चाहिए। सवाल बड़ा वाजिब है, जवाब मेरे पास नहीं, आपके पास है।

0: अच्छा तो नेताजी ये बताइए, आपके शहर में सड़कों की हालत इतनी खराब क्यों है?
1: क्योंकि भैया हम जनता को कठिनाइयों से लड़ना सिखाता हूँ।
2: जय हो नेताजी की जय।
3: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: ओए छोटे,

क्या बात भाई, इस गाने में तो ऐसा हो गया कि इसमें सुनने में इतने हम मशगूल हो गए कि आते आते ऐसा पता ही नहीं चला कि भाई वक्त भी हो चला है। फिलहाल वक्त है बाकी आए हुए मैसेजेस को पढ़ने का जो कि चैट बॉक्स पर आए हुए हैं। सो आशु जी ने कहा आज लखनऊ का मौसम ख़राब हो रखा है। सो ख़राब का मतलब हम क्या सेंस लें कि वहाँ पर बदली ज़्यादा है या फिर धूप निकली है, आप क्या बताना चाह रहे हैं ये ज़रूर आप बता सकते हैं। नरेंद्र जी हैं फ्रॉम बलरामपुर, आपका वेलकम है, स्वागत है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। अर्पिता सिंह जी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड धर्मेंद्र मोहन जी ने बोला है कि अदनान सर जी वैकेंसी की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया। और वैकेंसी के लिए स्पेशली भाई जो लोग भी ढूंढ रहे होंगे जॉब, ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी मज़ा आने वाला है और उनके लिए भी ये काफ़ी काम की चीज़ है। तो आज तो हमने काफ़ी मिल करके एंजॉय किया, अच्छा लगा। आई होप कि आपने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा, आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अब देखते ही देखते मुझे लगता है कि चलने का वक्त आ गया है। सो चलिए, लेकिन हम जो है चलते हैं, बट आप बने रहेंगे अपने बैक टू बैक 89.6 FM पर आने वाले शोज़ को लेकर के। तो यस, फ़िलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त और आप सुनते रहिए अपना 89.6 FM, क्योंकि ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान और फ़िलहाल ले रहा हूँ विदा।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: समता दी, आज आप सभी को इमलिया गांव जाने की तैयारी करनी है। हम सभी यानी किरण दीदी, गीता दीदी और आपको मेरे साथ साक्षी की शादी में जो जाना है।
9: पर जया, अभी तो उसकी शादी में काफी समय है, और किरण दीदी आपकी तो नंद के घर ही शादी है, वो इमलिया गांव वाली, जिनके गांव को जाते समय रास्ते में पावर हाउस भी पड़ता है, जहां से पूरे शहर की बिजली की सप्लाई होती है।
10: हाँ समता और जया, केवल इतना ही नहीं, वहाँ तो पावर हाउस के बगल में ही जिला कारागार भी है। ये वो जगह है जहाँ जिला कारागार में स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लहरी को फांसी दी गई थी। उन्हें काकोरी कांड से जुड़े होने के कारण 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई है। आज भी इस दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। आसपास के हर विद्यालय द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती है और रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस दिन जनता को वो हर जगह घूमने की विशेष अनुमति दी जाती है।
11: अरे तो का हम सबे हुए तो घूमे जावा जात है, चलो फिर से तैयारी कर लिया जाए हुए जाए की शादी और सात वचन ना हो ये कैसे हो सकत है।
8: हाँ सही कहा आपने,
10: बिल्कुल सही। और आज का पहला गीत जो हम साक्षी की शादी के लिए तैयार कर रहे हैं वो है पता क्या, सात वचनों की लाज बचाना। सात वचनों की लाज बचाना ये सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि पति पत्नी का वो भरोसा है जो दो दिलों को जोड़े रखता है।

0: समता दी, ठंड का मौसम चल रहा है, मक्के की रोटी और सरसों का साग तो गांव में खूब बनता है। लगता है इस बार हमें इमलिया गांव में चूल्हे पर बनी मकई की रोटी, सरसों का साग, गाय का शुद्ध मक्खन और सर्दी वाली सजाव दही के साथ आंवले की चटनी, अचार, कई चीजें खाने को मिलेंगी। आहा, सोच के ही मजा आ गया।
1: अरे जया, बस करो ख्याली पुलाव के शेफ। दरअसल बात ये है कि अब वो पहले जैसी खेती नहीं रही और ना ही फसलों में वो बात रही, क्योंकि अब अनाज को ज्यादा उपज के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है और इन सब पे हम बाद में बात करेंगे, पहले एक गाना हो जाए।
2: आज

0: हाँ समता, सच में बहुत ही दुखद है ये हमारी धरती और आने वाली पीढ़ी के लिए। अरे इतना रसायन, उफ़ो, इससे धरती माँ की उर्वरा शक्ति छीण हो जाती है और तो और मिलावटी उपज से बीमारी इतनी फैलती है कि क्या बताऊँ, और हमारी उम्र में भी कमी देखने को मिलती है।
1: अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब ये बताओ कि ये बार कौन खेत घूमे जाए मिली वहाँ जाए पर। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, तनिक कौनो ठीक गौ नहीं हुई जाए तो नीक लागे।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अब हम सब चलते हैं दिव्यता की ओर, उस पल की ओर जब बेटा दूल्हा बनता है, माँ की आंखों में भीगती खुशी होती है, जैसे माँ कौशल्या रानी के गोद आज राम दुल्हा बने। अरे भाई, आज हर माँ को लगता है कि उसका लाल राम जैसा दूल्हा है, और दामाद को देखते ही ससुराल वाले खुद को दशरथ समझ लेते हैं।

0: जया, पता है इस समय दिसंबर चल रहा है तो रबी की फसलें जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चना और विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे पालक, धनिया, मेथी, मटर, मूली ये सब लगाई जाती है और इसी के दौरान तुरैया और कद्दू जैसी फसलें जो है पक के तैयार भी हो जाती हैं और साथ ही बरसीम भी लगाई जाती है जिसकी इस समय कटाई चल रही है। अच्छा, तो इके साथ साथ अब की बार साक्षी की शादी भी देखे का मिली। वाह भाई वाह, खूब मजा आई।
1: अरे इतना ही नहीं, खाने को सारे शुद्ध पकवान, दही, दूध, घी और बहुत कुछ होगा।
2: हाँ समता, पर आजकल वो स्वाद कहाँ जो चूल्हे की बनी रोटी साग और रात की बासी सगपहता वाली दाल को चूल्हे पर घी, हींग, लहसुन, जीरा और हरी मिर्च आदि के तड़के के साथ जब गरम किया जाता था, आहा मजा आ जाता है भाई, मेरे मुंह में तो लार गिर रही है।
3: हाँ दी, अब तो कोई चूल्हा जलाना जानता ही नहीं है। पहले तो पूरा घर और चूल्हा चिकनी मिट्टी का होता था, द्वार पर नीम आम जैसे बड़े पेड़ होते थे। अब तो गांव भी शहर सा बनता जा रहा है, कोई पेड़ लगाना ही नहीं चाहता।
0: हाँ जया, पर हमारी गांव की गूंज की टीम अपने उसी प्राकृतिक परिवेश को पुनः जीवित करने का काम कर रही है। हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से वो दिन याद दिलाते हैं कि जब लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ हुआ करते थे, शुद्ध वातावरण भी होता था और उम्र सबकी लगभग लगभग 80 पार हुआ करती थी, कुछ तो 100 और उससे भी अधिक जीवित रहते थे। अब आजकल देखो 60 पार हो जाए तो जानो तो ये बड़ी बात होगी कि अगर कोई 60 की उम्र पार कर ले।
1: एकदम सही कहा दीदी। अच्छा जरा एक और गीत सीखते हैं। अरे भाई, दुखड़ा लेकर आप कहाँ बैठ गई? आप भूल गई कि हम सब

0: वाह दीदी, तो शादी हल्दी की तैयारी पूरी हो गई।
1: हाँ, तो इस बार इमलिया गांव में खूब धूम मचेगी। जिधर आसपास की गोंडा मेडिकल कॉलेज, सर्किट हाउस और बादशाह बाग भी पड़ता है।
2: अरे आजकल गांव-गांव कहाँ रह गया है। जहाँ परिवहन के साधन हो तो गांव और शहर की दूरियां ना के बराबर हो जाया करती हैं।
1: जाते जाते एक और गीत हो जाए।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, अब आते हैं शादी के सबसे हंसी मजाक वाले रस्म की ओर, सुहाग रात के किस्सों पर। अंजोरिया की रात पिया काहे डराए गयो, आओ ये गाना सुनते हैं किरण की आवाज में।
1: अरे पिया डराएंगे नहीं तो क्या करेंगे। भाभियां कमरे के बाहर खड़ी हैं, दोस्त फोन पर लाइव अपडेट मांग रहे हैं, और इधर दुल्हन भी सोच रही है, और ये तो ऐसे ही चुपचाप है जैसे इंटरव्यू देने आए हूँ।
3: अजूरिया के रात पिया काहे डराए गए,

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आई हो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोपहर के वक्त हो चला है, यानी कि घड़ी में वक्त हो चला है 12:12 बाय स्टूडियो क्लॉक, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम का, जिसमें मैं हूँ आपकी आरती उन्नति, और आप सुन रहे हैं आपका अपना 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपके अपने गोना शहर की धड़कन, और प्रोग्राम चल रहा है आपका ज्ञान असली लाइव, जिसके अंदर आरती उन्नति आती है लेकर के आपको बहुत सारी बातें। और एक हफ्ते बाद मेरी मुलाकात हो रही है आप लोगों से ज्ञान असली लाइव में, तो आई होप आपने मुझे मिस किया होगा, क्योंकि मैंने तो भैया आपको बढ़ चढ़ के मिस किया है, और जितना आपको मिस किया है उससे ज़्यादा मिस किया है आपके मैसेजेस को। फिलहाल के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कोई और भी मौजूद है, तो आइए उनको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ जी, तो मोहतरमा आपका नाम है सुहानी, आई थिंक आई एम राइट?
1: यस मैम, मैं सुहानी हूँ।
0: ओके, तो भैया हमारे साथ मेरी को होस्ट सुहानी और उनकी को होस्ट संध्या मौजूद हैं, डिजिटल मास कम्युनिकेशन के दो स्टूडेंट्स, जो आज हमारे साथ बात करने वाले हैं एग्जाम्स पर।
1: यस मैम,
0: पता है मैं टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ?
1: क्योंकि एग्जाम और डर सबको लगता है।
0: नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम देकर आई हूँ।
1: मैं, मेरा भी एग्जाम आ रहा है,
0: है ना। अब या तो एग्जाम किसी का आ रहा है, या आ चुका है, या किसी ने एग्जाम दे दिया है, लेकिन इस दौर में एक चीज होती है जो सबके अंदर ना डर बैठा चुका होता है, एग्जाम्स। एग्जाम का नाम इतना भारी भरकम होता है
1: मैम, कि वो चार वर्ड क्या ही हैं,
0: मुझे तो चार वर्ड जो है ना वो एकदम 40 किलो के बराबर लगते हैं, ऐसा था किसी ने मेरे कंधे पर इतना आके वजन डाल दिया है।
1: यस मैम,
0: और जैसे ही एग्जाम खत्म होता है
1: क्या मतलब
0: दिल में इतना आराम मिलता है, ऐसा था कितना भारी वजन उतर गया है। लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक बात तब होती है जब सुनने में आता है कि रिजल्ट आ चुका है।
1: यस मैम,
0: होता है ना, जब भी रिजल्ट की बात आती है तो ज्यादा डर लगता है, और फिर हमें वो वाला डायलॉग याद आता है, कौन सा पूछो पूछो
1: कौन सा,
0: मरना तो है ही, ऐसे नहीं तो ऐसे मरेंगे, एक दिन तो सबको मरना है।
1: हाँ, मतलब अगर एग्जाम से बच गए रिजल्ट में तो नहीं बचेंगे ना।
0: बिल्कुल, और एग्जाम का प्रेशर लेकर के ना बच्चों के बीच में, यानी कि बच्चों की मानसिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब कुछ तो हमारे जैसे होते हैं जो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह कभी सीरियसली लेते नहीं है, हमारे घर वाले सीरियसली ले रहे होते हैं कि एग्ज़ाम चल रहे हैं इस लड़की के, जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसको सीरियसली है ही नहीं कि इसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बट वहीं पर घर वाले परेशान हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम ये होती है उन्हें टॉप करना है, अगर उन्हें सोचा हुआ है कि 99.99% ही चाहिए, और अगर वो गलती से 99.97% आ जाए तो वो बेचारे उसमें भी उदास हो जाते हैं, ये सोचकर कि जितनी उम्मीद की थी उतना अच्छा नंबर नहीं आया।
1: यस मैम,
0: और जब ये एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है ना, तो हम खुद को टॉर्चर करने लग जाते हैं, कभी परेशान करने लग जाते हैं, इवन बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं ये सोचकर कि अब क्या होगा, एक बार मैं फेल हो गया तो दिक्कत है, पेपर लीक हो गया, जो कि आजकल बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है।
1: यस मैम,
0: भाई जब एग्ज़ाम्स की बात आती है तो एक तो सेंटर बहुत दूर दूर जाते हैं, और दूर चले भी जाओ तो समझ में आता है कि पेपर ही लीक हो गया, चार साल की, दो साल की, सालों की मेहनत बस यूं ही पानी में चली जाती है, और उस टाइम बच्चे संभल नहीं पाते। एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर, लीक का प्रेशर, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट का प्रेशर, और उसके बाद आता है इन सबको मिला जुला के तानों का प्रेशर, घर वाले क्या बोलेंगे,
1: कहेंगे इतना टाइम दिया तुमसे कुछ नहीं हुआ।
0: बिल्कुल, कि शर्मा जी के बेटे ने तो देखो एक ही बार में क्रैक कर लिया, तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो। और ये प्रेशर ना इतना गंदा होता है कि बेचारे बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। और ये मैंने देखा है जब मैं एग्जाम दे रही थी, यूं तो मुझे एग्जाम को सीरियसली लेने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी जब एग्जाम की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जाती है ना, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं कि क्या होगा, क्या आने वाला है पेपर में।
1: रातों की नींद उड़ जाती है, रात में सपना आएगा कि मेरा पेपर छूट गया मैंने,
0: और स्पेशली ऐसा होता है, मुझे लगता है मैं सुबह तक देर तक ना सो जाऊं और अब तो मेरा एग्जाम गया,
1: यही डर रहता है कि मैं लेट से उठी, पहुंचते पहुंचते गेट बंद हो गया, अब मैं क्या करूंगी, मैं पेपर नहीं दे पा रही
0: हूं। तो भाई अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप भी इस फीलिंग से गुजरते हो, कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी तो फील की ही होगी, अगर आप स्टूडेंट रह चुके हो और अभी भी आप एग्जाम को लेकर तैयारियां कर रहे हो, तो एक डर रहता है कि एग्जाम में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, मैंने जो पढ़ा है ये सब बकवास है, कुछ नहीं आता है। लास्ट मोमेंट में मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैंने सब पढ़ लिया है, और लास्ट आते आते आते आते
1: क्या पढ़ा है मैंने अभी तक, कुछ आ ही नहीं रहा,
0: मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है,
1: यस मैम, सबके साथ में यही होता है। हम साल भर मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम टाइम पे लगता है जैसे सबने पढ़ लिया मैं पीछे रह गई।
0: तो आज इसी प्रेशर की बात करने वाले हैं और किस तरह से आप इस प्रेशर को टैकल करेंगे अपने एग्जाम्स के दिनों में, उस पर आज हम करने वाले हैं चर्चा आपके यूनिवर्सिटी लाइफ में। आई थिंक ये विषय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारे बच्चे जो बड़े हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए, क्योंकि भाई एग्जाम तो हमेशा चलता रहता है। और ये कहते हैं ना, पेपर जो होते हैं वो तो कम से कम बता कर आते हैं, जो जिंदगी का एग्जाम होता है उसका तो सिलेबस भी नहीं पता होता है।
1: यस मैम, लेकिन एग्जाम जो बता के लिया जाता है उसमें हम शायद ना भी कर पाए लेकिन जिंदगी वाले में कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं।
0: यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए फिलहाल एग्जाम वाले के लिए भी। तो भाई आज जानते हैं, लेकिन उससे पहले लेते छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पर आते ही करते हैं आपसे ढेरों बातें। तब तक के लिए अगर आपके एग्जाम हो रहे हैं तो चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप एग्जाम्स को देते देते तैयार करते करते एंजॉय करते रहिए। आपका अपना ज्ञान असली लाइव अपनी आर श्रीमती और मेरी को होस्ट सुहानी संध्या के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: मैं चाहता हूँ तुझे दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। ये गाना संध्या जी आपको कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा अच्छा?
2: करता था।
0: ओके। और जब इस गाने को मैं सुनती हूँ ना, तो कभी कभार लगता है कि एग्जाम पीछे से कह रहा है कि तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, क्योंकि मैं तुझे इतना चाहता हूँ कि बार बार तेरी लाइफ में आता हूँ। तो फिलहाल आइए बता देते हैं कि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसमें संध्या जी हमारी क्या लेकर आई हैं। संध्या जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि बच्चे क्यों इतना ज्यादा प्रेशर फील करते हैं जब भी उनका एग्जाम होता है?
1: वो इसलिए इतना प्रेशर फील करते हैं कि जब उनसे रिलेटिव्स या नाइबर पूछते हैं कितने मार्क्स आए, वो और प्रेशर फील करने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरा फ्यूचर का क्या होगा या लोग मुझ पे क्या कहेंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए हो जाती है।
0: ओके, तो भाई सुहानी जी,
2: Yes,
0: आपका क्या ख्याल है, क्यों एक बच्चा एग्जाम की प्रेशर को इतना ज्यादा प्रेशराइज करता है, यानी कि इतना ज्यादा फील करता है कि ऑलमोस्ट कई बार ऐसा होता है बच्चे रिजल्ट आने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं?
2: मैम, क्योंकि वो जो टारगेट बना के चलते हैं वो नहीं आता तो फिर उनका कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर फील करने लगते हैं।
0: जी, अब हम आपको बता दें भाई, ये एग्जाम का प्रेशर क्यों होता है, किस लिए होता है और क्या होता है। तो भाई आपने भी देखा होगा, बच्चों के अंदर एक अलग सी भावना रहती है हमेशा आगे निकलने की, और कई बार ये भावना उनको एक्सपेक्टेशन से आ जाती है जो उनकी फैमिली उनसे रखती है।
2: यस मैम,
0: हम बचपन से किसी ना किसी के साथ कंपेयर होते ज़रूर आते हैं, या तो हमारी आदत होती है हमारे मम्मी पापा की कि हमेशा वो हमारे साथ, हमारे पढ़ने वाले कजन्स के साथ हमें कंपेयर करती हैं कि देखो तुम्हारी चाची की लड़की का इतना आया, तुम्हारी मौसी की बेटी का इतना आया और तुम इतना लेकर आए हो, ये कैसी बात होती है।
1: मेरे पापा मोस्टली करते हैं,
0: और ये चीज़ हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं टैकल करता ही है। और जब ये कंपेरिजन शायद हम बंद भी कर दें, क्योंकि हमने मम्मी पापा से कहा है कि हर वक्त हमें शर्मा जी के बेटे से कंपेयर ना करो, हमें दिक्कत होती है, और लेकिन अब हमारी आदत ऐसी पड़ गई है ना कि हम खुद कंपेयर करते रहते हैं खुद को।
2: हाँ, कि वो ऐसा कर रहा है मैं नहीं कर पा रही हूँ।
0: बिल्कुल, जब क्लास में कोई टॉपर है और वो फिजिक्स में बहुत अच्छा है और हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि यार हम फिजिक्स में क्यों नहीं अच्छे हैं।
2: हाँ मैम,
0: है ना। तो एक्सपेक्टेशन घर वालों की तो होती ही होती है, साथ में बच्चों की खुद भी हो जाती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें आदत पड़ जाती है खुद को कंपेयर करने की दूसरों के साथ। दूसरी चीज़ होती है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि फेल होने का डर। हमारी ज़िंदगी में जब हम कोई काम करते हैं ना, तो कभी ये सोच कर नहीं करते कि काम हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो लेसन मिलेगा, दोबारा करेंगे। हम सोचते हैं काम को लेकर के, हमेशा एग्ज़ाम देने बैठो, कोई काम करने बैठो, कोई प्लान बना रहे हो, डर सबसे ज़्यादा होता है कि फेल ना हो जाए। हालांकि वो फेल नहीं भी हो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उन्हें फेल कर देगा, क्योंकि हम डर ही इसको मैनिफेस्ट करते रहते हैं।
2: मैम, हम सोचते हैं मेरा एक बार में हो जाएगा, बस यही लास्ट चांस है हमारे पास।
0: बिल्कुल, और ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना कि फेल हो जाएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, फेल हो जाएंगे तो दोस्त क्या कहेंगे, फेल हो जाएंगे तो ये क्या होगा, वो क्या होगा।
2: मैम, लगता है जैसे हमारा फ्यूचर बस इतना ही बचा हुआ है, यही एक ही एग्ज़ाम।
0: बिल्कुल, और इसी दौरान अगर आप स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको डर लगता है इस बात का कि फियर ऑफ जो फेलियर है आपका, वो ये है कि अगर मैं फेल हो गया तो अपने जूनियर्स के साथ क्लास शेयर करना पड़ेगा, और ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। और इसको देखकर सोसाइटी वाले कहते हैं, क्लास वाले, वो जो आपसे अभी तक आपको भैया भैया कह रहे थे, दीदी दीदी कह रहे थे, अब वो आपको क्या कहेंगे। और यही एक वो डर होता है जिसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कि करना है, मतलब कुछ तो करना है, पासिंग मार्क्स ही आने चाहिए, लेकिन हमको पास होना है, फेल नहीं होना चाहते किसी भी हद तक। अब जिनके पासिंग मार्क्स की एक्सपेक्टेशन होती है उन्हें फेल होने का डर रहता है। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको टॉप करने की एक्सपेक्टेशन होती है और बेचारे वो टॉप नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट रिलीज किए गए थे तो सुनने में आया था कि गोंडा में कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि भाई उनकी परसेंटेज उतनी नहीं थी जितना उन्होंने सोचा हुआ था। अब आप मान सकते हैं कि किसी को 90% लाना हुआ, वो 90 नहीं लाया, वो 80% ले आया है, तो वो बच्चा सुसाइड करने तक आ जाता है और कई बार कर भी लेता है।
2: मैम, मानने वाली बात क्या है, ऐसा मेरे साथ में हुआ है।
0: ओके, मतलब आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने ये चीज़ की है।
2: यस मैम, मेरा मन, मुझे लगा था हाँ मैं ही टफ करूँगी, अब मैंने मेहनत भी वैसे ही किया था पर मेरा नहीं आया, तो उसके बाद इतना प्रेशर, मतलब लोग क्या कहेंगे, इतना पढ़ती थी फिर भी नहीं हुआ, ये है। मेरे चाची का लड़का नहीं पढ़ता था, वो पास हो गया, मेरा उससे ज़्यादा ही आया था, लेकिन बात ये थी कि कहते तुम तो पढ़ती रहती थी, तुम्हारा आया क्यों नहीं। और कॉलेज वालों भी नहीं सुनाया कि मैंने स्कूटनी का फॉर्म भी भरा था पर हुआ कुछ नहीं।
0: ओके, मतलब कि तुम दिन

0: की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कमाल की बात यह है कि हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते.
1: मैम अगर कोई क्वेश्चन याद करो वो नहीं याद होगा, लेकिन अगर कोई चाचा बोल के गए हैं तुम्हारा कम आएगा तो तुमको बताएंगे.
0: अच्छा देखो ये कितनी बढ़िया चीज़ है, पॉसिबिलिटीज कितना सोच लेते हो. अगर यही हम एक सही डायरेक्शन में सोचें तो लाइफ को कितने आसानी से जिया जा सकता है. बट हम हमेशा ओवरथिंकिंग में सोचते हैं, और ओवरथिंकिंग में हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिक्स करके सोच लेते हैं.
1: यस मैम.
0: कोई हमको ताना सुना कर गया, उसने ऐसा क्यों बोला, इस टोन में क्यों बोला, क्या उसका कोई मतलब था, क्या कोई मतलब नहीं था, गुस्से में था, नहीं यार गुस्से में नहीं था, वो चाहता ही था, ये सब बातें हम सोच लेते हैं. लेकिन यही डायरेक्शन अगर हम अपने क्वेश्चंस में ले जाएं और हम क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़ना शुरू करें कि इस क्वेश्चन में जो कुछ हुआ है उसको 50 एंगल से और देखें, तो काम नहीं होगा क्या?
1: होगा, लेकिन तो इंसान बना ही ऐसा है कि वो अच्छी चीज़ें कम सोचता है.
0: बिल्कुल सही है. तो भाई सबसे बड़ा जो फेलियर का जो एक डर होता है, अगर आप इसे अपने दिमाग से निकाल देते हैं तो ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं. आप कर दिखाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. कई बार मेरे साथ जब छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो घर वालों को उम्मीद थी कि हम फेल हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद थी नहीं भाई फेल नहीं होना है, मुझे सप्लीमेंट्री नहीं चाहिए. और मेरी मम्मी का कहना है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम कुछ करने के काबिल नहीं थी, तब तुम्हारी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज थी. मैंने कहा था क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन मुझसे नहीं रखी थी कि मैं पास हो जाऊंगी, और वही एक्सपेक्टेशन जब आपकी थी ही नहीं तो मुझे लगा जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है तो जितना मन करेगा मैं उतना करूंगी.
1: यस मैम, जब प्रेशर नहीं रहता तो अच्छा आ जाता है, जब रहता है कि
0: बस वही बात है कि जब हमारे पास बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के दब चुके होते हैं, तब हम काम करना तो चाहते हैं लेकिन उस लेवल पे कर नहीं पाते. और वहीं जब आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है और आपसे कहते हैं भैया तुम बस पास ही हो जाओ, तो आप सोचते भी नहीं हो इतना, फिर आप मेहनत करते हो और मेहनत का फल इतना होता है कि भाई मेरी तरह आप भी टॉप करते हो.
1: यस
2: मैम.
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, और मुझे पहले ऐसा होता था जब भी एग्जाम आते थे, एग्जाम से पहले मुझे बुखार चढ़ जाता था.
2: yes,
0: और मेरी मम्मी कहती थी तुम्हें एग्जाम आते ही क्यों बुखार चढ़ता है.
2: मैम पता है कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात जाग कर पढ़ते
0: हैं. ये मेरी बात हो रही है क्या? एक्चुअली हर एक बच्चा वो चाहता है ना कि एक रात में हम कितना पढ़ लेंगे, और यहाँ पर वो थोड़ी सी गलती भी करते हैं. सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट हमें लगता है कि हम एक रात जग के जितना पढ़ेंगे हम उतना अच्छा कर लेंगे. फिलहाल कैसे करना है टैकल ये हम आपको ज़रूर बताते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के उस पर. तो तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम्स की कुछ नॉस्टैल्जिक बातें या आपके क्या एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम्स को लेकर के अभी तक, वो मुझे ज़रूर से बताइएगा आपने अपने चैट बॉक्स में. चैट बॉक्स जो आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन आपको मिलती है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर, जिसका नाम है रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, रेड एंड ब्लैक आइकन के अंदर. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पर यानी कि इस ब्रेक के उस पर. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.
3: अरे सुना, यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट.
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो. एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12. गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है. पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346.

0: और ये गलियां हैं आपकी अपने रेडियो ज्ञान असली 9.6 FM आपकी अपने गोंडा शहर की। मैं हूं आपकी आरजी नदी, मेरे साथ मौजूद है मेरी कोहोस्ट सुहानी और संध्या जो कि है DAMC यानी कि डिजिटल मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स और हमारे साथ आज मौजूद हैं एग्जाम को लेकर बात करने के लिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव। इस बेहतरीन से गाने के बाद आपका एक बार वापस स्वागत करते हैं तहे दिल से और बात कर लेते हैं अब एग्ज़ाम के प्रेशर को टैकल करने की। और मुझे लगता है ना एग्ज़ाम के प्रेशर से लड़ना पड़ता है, टैकल नहीं करना पड़ता
1: लड़ना पड़ता है। मैम
0: वी आर वॉरियर्स और हम लड़ते हैं
1: मैम लड़ते ही हैं
0: है ना, लेकिन इसको टैकल कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हर एक बच्चा एग्ज़ाम के प्रेशर को झेल तो रहा है लेकिन उसको यही नहीं पता है कि एग्ज़ाम के प्रेशर को कम कैसे करते हैं।
1: एग्ज़ाम के प्रेशर को कम करना कहीं कहीं होता तो बहुत ईजी है पर हम उसको बड़ा बनाए रहते हैं।
0: चलिए तो जो प्रोफेशनल्स बताते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर्स को टैकल करने के लिए वो हम आपको बता देते हैं। और प्रोफेशनल कहते हैं कि मेक अ सिंपल स्टडी प्लान, यानी कि आपको एक बढ़िया सा आसान सा छोटा सा अपना स्टडी प्लान बनाना है। वो टाइम टेबल नहीं बनाना है कि सुबह 4 बजे से लेकर के हम 7 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 8 बजे का एक ब्रेक लेंगे, फिर 9 से 11 पढ़ेंगे, फिर 12 बजे का ब्रेक लेंगे, फिर 1 बजे तक फ़ोन चलाएंगे, फिर 2 बजे, ये वाला आप कभी प्रॉपर कर ही नहीं पाओगे क्योंकि बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि आपने सोच रखा है दिन में आराम से सोकर उठने के बाद मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर एक सेगमेंट कंप्लीट करूंगा, या एक चैप्टर की आपने बात कर ली है कि भैया ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही आज अपनी सीट को छोड़ेंगे, ये तो आप प्रॉपर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं सुबह 4 बजे उठकर 7 बजे तक 3 घंटे इधर पढ़ेंगे, फिर 9 से 11 उधर पढ़ेंगे,
1: सोचते ये है कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे,
0: बिल्कुल, और ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमारा ब्रेन कहता है भाई एक पेज पे ही हो, अभी 15 तो और बाकी है।
1: यस मैम,
2: अगर पूरा चैप्टर देखकर अगर इंसान पढ़े तो उसको स्ट्रेस फील होगा ना, इतना हैवी ये कैसे क्या वो कर पाएगा।
0: बिल्कुल, और यही तो मैंने आपसे कहा कि हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन वाला स्टडी प्लान बना लेते हैं कि हम एक साथ ही सब कुछ करेंगे।
2: मैम ना उसे स्मार्ट पार्ट्स में अगर बांट दिया जाए तो ज्यादा बेटर होता।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए मैंने कहा भाई कि अगर आप एक अच्छा सा सिंपल सा आसान सा स्टडी प्लान बनाते हैं तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हो। मैं तो बनाती भी नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरा दिमाग फिर उसके पीछे पड़ जाता है। अभी तुमने कहा था तुम 2 घंटे पढ़ोगी, तो कहो तुमने 45 मिनट ही पढ़ा है
1: मैम बनाने के बाद और ज़्यादा टेंशन हो जाती है।
0: बिल्कुल, कि हम तो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका सोल्यूशन है प्लानिंग करना, यानी कि आप प्लान करोगे बैठ करके जिसमें आप प्रेशर फील ना करो, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है, पूरा सिलेबस को डिवाइड करना है और टाइम को भी डिवाइड करना है कितने घंटे में, या फिर मैं एक चैप्टर खत्म करके ही उठूंगा।
2: नहीं, ऐसे ऐसे 30 मिनट आप रीडिंग करो, 15 मिनट रिवीजन कर लो, 15 मिनट शॉर्ट नोट्स चेक कर लो, तो उसमें आपका मेंटेन बनता रहेगा, कोई प्रेशर भी नहीं आएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि स्टडी इन स्मॉल पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाई करना, जिसमें आपकी 30 मिनट की रीडिंग आ गई, जिसमें आप ध्यान लगाकर सिर्फ रीड कर रहे हो, याद करने की टेंशन नहीं है, उसे भूल जाने की भी टेंशन नहीं है, बस आप एक रीड कर रहे हो समझने के लिए। जब आप उसको समझ के रीड करते हो और उसके बाद अगर आप वही की पॉइंट्स बुक बंद करके दूसरी कॉपी में लिखते हो तो आपको समझ में आता है कि जो आपने रीड किया था उसके अंदर से कितने बुलेट पॉइंट्स आपको मिले हैं।
2: कभी-कभी ब्रेक भी लेना।
0: ये बात सही है क्योंकि अब आपका जो दिमाग होता है वो 30 से 45 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे फोकस नहीं कर सकता। yes, और जब हम कोशिश कराते हैं
2: तो उसे मुझे खुद की वीकनेस लगती है, यार मैंने ब्रेक ले लिया है, सही नहीं।
0: ये हर किसी की प्रॉब्लम है ना एक्चुअली, बट हमारे दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, जब तक हम उस कैपेसिटी के अंदर काम करते हैं तब तक तो ठीक है। हम कहते हैं ना कि इससे ज़्यादा वज़न कोई गाड़ी नहीं झेल पाएगी, ऐसे हमारा दिमाग भी होता है जो कहता है इससे ज़्यादा नहीं झेल पाऊंगा एक बार में, मुझे भी 15 मिनट का आराम चाहिए। इसीलिए कभी भी आपने क्लास देखे होंगे 45 मिनट में डिवाइड होते हैं।
1: यस मैम,
2: मैं
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद आपका दिमाग वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता
1: मैम। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करो 10 मिनट के ब्रेक लेने के बाद, वो 10 मिनट कब आधे घंटे में निकल जाता है ये भी तो नहीं पता चलता।
0: अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप 10 मिनट का ब्रेक लेने जाते हो और आप फोन उठा करके रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो और फोन में टाइम पता नहीं चलता।
2: 5 मिनट ना 50 मिनट का बदल जाता है कुछ।
0: आप सोचते हैं मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, आपने ब्रेक लिया, आप टाइम देखते हो 1:50 पे लिया था, 3 बज रहे हैं, ये तो 5 मिनट से ऊपर हो गया फिर एक नया गिल्ट आता है सामने कि अरे यार टाइम वेस्ट हो गया
1: बहुत ज्यादा।
0: इसलिए जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो आपसे हमेशा कहा जाता है कि आप वॉक करें, अपना कुछ पसंदीदा खा लें, एक बढ़िया गाना सुन लें, फोन को हाथ ना लगाएं,
2: पर हाँ, टाइम को ध्यान में रखते हुए।
0: बिल्कुल, वे स्टडी इन स्मॉल पार्ट्स, ब्रेक्स को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 45 मिनट से ज़्यादा आपका दिमाग एक जगह पे कभी भी फोकस नहीं कर सकता है। तो 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, ख़ुद को रिफ़्रेश कीजिए। बाद में आता है कि आप अवॉइड करें एक दूसरे को कंपेयर करना। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं चौथे पे नहीं पहले पे रखना चाहती थी लेकिन प्रोफेशनल्स कहते हैं कि ये चौथा पॉइंट है कि आप खुद को कंपेयर करते हैं।
2: मैम, हमें दूसरों को देखते ही लगता है कि मैं तो उससे पीछे रह गई, बहुत पीछे रह गई।
0: वैसे आगे पीछे तो कोई भी नहीं होता है ना,
2: लेकिन मैम फील ऐसा होता है।
0: नजरिए की बात है, नजरिए की बात है।
1: मैम कोई किसी में तेज है तो कोई किसी सब्जेक्ट में तेज है, हमें लगता है नहीं मुझे सब में होना है।
0: अच्छा आप ये सोचो, पेड़ पे रहने वाली चिड़िया से कहा जाए कि समंदर की गोतों को लगाए जा करके मछली की तरह, तो क्या वो कर ले जाएगी?
1: बिल्कुल नहीं मैम।
0: और अगर समंदर में तैरने वाली मछली से कहा जाए भाई तुम बंदरों की तरह पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, क्या वो चढ़ ले जाएगी?
1: नहीं मैम, आकाश से सीधे नीचे जाएगी।
0: ठीक है, अब बंदर से कहा जाए कि आप मगरमच्छों की तरह पानी में रह के शिकार करके दिखाओ,
1: वो भी नहीं कर पाएगा मैम।
0: शेर से कहा जाए कि घास खा के दिखाओ,
1: वो भी नहीं करेगा।
0: और हिरन से कहा जाए कि आप तुम शेर की तरह शिकार करके दिखाओ
1: मैम ये क्या है?
0: जब आज
2: मतलब ये है कि जो काम जिसका है वो वही कर सकता है।
0: यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक फील्ड में बेहतर हो, लेकिन आप एक फील्ड में ज़रूर बेहतर होते हो। आप मैथ में अच्छी हो, मैं साइंस में अच्छी हूँ, और हो सकता है हमारी जो संध्या जी हैं वो दोनों में अच्छी हो।
2: थैंक यू मैम।
0: बेशक, क्योंकि आपको मैथ में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, और उनको हो सकता है दोनों में इंटरेस्ट हो।
1: yes,
0: वो फिजिक्स भी बहुत बढ़िया करती हूँ, वो बायोलॉजी भी बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, बट हो सकता है उनकी हिंदी वीक हो।
1: यस मैम, सबके साथ में होता है, कोई कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग रहता है बाकी सब एवरेज।
0: और इसीलिए कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरों से। और बात करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो मुझे बेहद पसंद है, और वो है सोना।
1: लेकिन जब एग्जाम आता था सो तो बिल्कुल नहीं पाते,
0: बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपके एग्जाम चल रहे हैं तो आपको कंप्लीट नींद लेना जरूरी है। एग्जाम्स के दिनों में हम नींद नहीं लेते हैं, और प्रोफेशनल्स कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एग्जाम के टाइम पर आपका भरपूर मात्रा में नींद लेना ही आपके दिमाग को शांत रखता है और आपको पढ़ने के काबिल बनाता है। इससे आपको पैनिक नहीं आता, आप नर्वस नहीं होते, आपको डर नहीं लगता, और आप आराम से जो चीज़ याद करते हो फिर वो आपको याद रहती हैं, वो मिक्स होकर खिचड़ी नहीं बन जाती है, जिसमें रायता भी मिक्स है, पापड़ भी मिक्स है, दाल चावल भी मिक्स है, खिचड़ी भी मिक्स। वो जब मिक्स करके हम एक पूरा रायता बना लेते हैं ना, फिर हम ढूंढते हैं, एग्ज़ाम आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें सारी सन याद होते हैं, सारी ईयर याद होते हैं, अब हमको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी, और हम लिख के दूसरे का आते हैं, खिचड़ी हम बनाते हैं।
1: जानबूझ के ऐसा होता है, मुझे लगता है
0: जानबूझ के नहीं होता है, बस बात इतनी सी होती है कि आपने ब्रेक नहीं लिया है और आप भरपूर मात्रा में नींद लेकर नहीं है। तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम पर। 3 से 4 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी होती है, नहीं तो आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, यानी कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए 7 से 8 घंटे की नींद आपकी ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए एग्ज़ाम के दिनों में भी भरपूर मात्रा में नींद लीजिए, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो ज़रूर आराम से सोइए, ताकि अगले दिन आपका दिमाग बहुत क्लियर होके, बहुत फोकस होकर आपके एग्ज़ाम को दे सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके पीछे का साइंस क्या है? भाई हम आपको बता दें, जो दही और चीनी आपको खिलाई जाती है इसका मतलब ये होता है कि आपको एक तो एनर्जी मिलती है, दूसरा आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन रहता है, आपका डाइजेशन खराब नहीं होता है, और जब आपका डाइजेशन अच्छा रहता है तो आपका दिमाग अच्छा रहता है, जब आपका दिमाग अच्छा रहता है तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, दोनों आपस में मिले जुले हैं। फिलहाल
1: दही चीनी खानी चाहिए।
0: मेरी मम्मी ने नहीं खिलाया इस एग्ज़ाम में मुझे एक भी बार, मुझे पानी भी नहीं पिलाया, दही चीनी की तो बात अलग है।
1: मेरी मम्मी खिला देती हैं।
0: आपने मुझे एडवाइस भी नहीं दी थी, और आपको पता था मेरा एग्जाम है।
1: अब मैम को मैम क्या ही बताया जाए।
0: ओके फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, तो मुझे लगता है चैट बॉक्स में चल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं एप्लीकेशन से, उनके कुछ मैसेजेस यानी कि चंद अल्फाज, चंद पैगाम आ चुके हैं, और उनके पैगामों में सबसे पहले हमारी एक लिस्टनर हैं जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर आरजे, गुड आफ्टरनून टू यू। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं आदल जी जो लिख रहे हैं हाय एवरीवन, हाय कैसे हैं आप। एंड इसके बाद हमें काफ़ी सारे इमोजीज मिले हैं सॉन्ग को लेकर के, थैंक यू सो मच। जिज्ञासा जी हमारे साथ, जिज्ञासा हैं आप, जिज्ञासा हैं वैसे बताइएगा ज़रूर, जिज्ञासा जी आपका स्वागत करते हैं। और आपने लिखा है हाय मैम, हाय कैसी हैं आप, एंड कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, और मेरा भी सेम सवाल था आपके लिए, कैसी हैं आप? आयुष तिवारी जी जो मैं गोंडा से सुन रहे हैं, उन्होंने लिखा है दो बार हेलो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? आप भी बताइएगा ज़रूर, आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं हम ज्ञान असली लाइफ में। तो ये था हमारा आज छोटा सा सेगमेंट जिसमें हमने बात की एग्ज़ाम्स की, एग्ज़ाम्स के उस प्रेशर की जो हर एक स्टूडेंट फील करता है, और कैसे इस प्रेशर को टैकल करना है। कैसे टैकल करना है? पॉजिटिव रह करके, ख़ुद को कंपेयर ना कर करके, आराम से सोना, छोटे छोटे प्लान्स बनाना, और पढ़ते वक्त 45 मिनट के बाद तो छोटा सा ब्रेक लेना,
2: गुड वाइब के साथ।
0: गुड वाइफ के साथ, वाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई इतना सब कुछ करके आप अपने एग्ज़ाम्स को, एग्ज़ाम्स के प्रेशर को टैकल कर सकते हैं, और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आने वाले हैं। बट मैं आपको बता दूं, एक सिंगल पेपर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई जिनके 45% हैं आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिनके 90% हैं वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपका एवरेज होना आपकी लाइफ पे कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाता है, इवन आपकी लाइफ की और भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करता है। हो सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, सकता है आप आर्ट में बहुत अच्छे हो, सकता है आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो। क्योंकि अगर सोचिए, सचिन के फादर ने कहा होता कि फिज़िक्स में 90 लेकर आओ, 99 लेकर आओ, तो शायद आज वो छक्के चौके लगाकर हमारा नाम रोशन नहीं कर रहे होते।
1: यस मैम,
0: बिल्कुल। तो भाई अपने टैलेंट को समझिए, जानिए।
2: मैं तो कम्प्लीटली एग्री करती हूँ आपकी इस बात से कि वो जो एक पेपर होता है वो फ्यूचर
0: नहीं डिसाइड करता है। और ये बात हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप को समझने की ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि अगर उनका बच्चा 90% नहीं लाता है तो मतलब उसका फ्यूचर डार्क है। ऐसा हमारे साथ एक्चुअल भी होता है।
2: Yes, ma'am. Parent ही नहीं, सब लोग ही।
0: और हर माँ बाप अपने बच्चे का एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इसीलिए शायद उन्हें दिक्कत रहती है कि अगर इस बढ़ती हुई दुनिया में जहाँ कंपटीशन इस लेवल पे निकल रहा है, अगर हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो क्या होगा। भाई हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो, तो उसकी उस खूबी को दबाए नहीं, उसको भी निखारे, साथ में उसको अच्छे से पढ़ने का मौका दे, प्रेशर फील ना कराएं। और मुझे यकीन है कि आपने जैसा सोचा हुआ है कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, वो वैसा ही होगा। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ, इसी मैसेज के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अब हमें दीजिए इजाजत, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। घड़ी में वक्त है 12:57 बाय स्टूडियो क्लॉक, और ऑफ कोर्स आपका अगला प्रोग्राम है सिहतिया सिंह, सुनना मत भूलेगा। आप सुन रहे थे 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी आरती नदी, और मेरी को होस्ट सुहानी एंड सत्या के साथ। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा चैट बॉक्स में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: नमस्कार, स्वागत है साथियों, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो विषय थोड़ा सा अलग है। सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है इस बारे में बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन असल में जिंदगी बचाने के लिए ये पूरी ताकत रखता है। इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातें आसान सी भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज हमारे इस शो में आपका।
1: धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। इतने सारे प्यार और भरोसे के लिए आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।
0: बात तो सच है कि बहुत बड़ी हो रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर क्या है? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह से गलत सोच रहा हूँ?
1: अरे नहीं नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं हैं और पूरी तरह सही भी नहीं हैं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगा कर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी समझ में आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की ज़रूरत क्यों आन पड़ी?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्ते में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी ज़िंदगी ठीक से शुरू भी नहीं होती है और ख़त्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी ज़रूरी है।
0: ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतने जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज़्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की ज़रूरत होती है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई ख़ास इंतज़ाम होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चों को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, खासकर हमारे गांव और दूर दराज इलाकों में है। और जहाँ उपलब्ध होती भी है, वहाँ हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया, अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार आखिर क्या करे?
1: यही पर कंगारू मदर केयर उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती है, इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका एक समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और उसे वही सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे संभव है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधे लगाकर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है जो उसके विकास के लिए बेहद जरूरी है।
0: ओह, तो क्या इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए वो काफ़ी है?
1: नहीं, सिर्फ गोद में लेना ही काफ़ी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधे शरीर से लगाकर रखा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती है। ये एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसे उसे माँ के गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
1: बिल्कुल असरदार है। कई शोध में ये भी साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई है उनकी मृत्यु दर कम रही है, उनका वजन तेजी से बढ़ा है और वो ज़्यादा स्वस्थ पाए गए हैं। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर ही मन भर आता है।
1: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है। स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: वाह, ये बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सियातिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर में भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पतालों में ही किया जाता है?
1: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी इसे समझ सकें।
1: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डोले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है, यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है, उसकी सांसें भी ज़्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज़्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य से तेज़ी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बनने लगता है, साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास ही बढ़ाता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी कोई भूमिका होती है या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
1: बहुत सही, अच्छा सवाल पूछा है आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को सीने से लगाकर वही फायदा दे सकते हैं जो माँ देती हैं?
1: जी हाँ, पिता का शरीर बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की ज़रूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो ना सिर्फ बच्चे को फ़ायदा होता है बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चे को दोगुना प्यार और देखभाल मिलती है। लेकिन सेहतिया जी, हर चीज़ के साथ कुछ सावधानियाँ भी ज़रूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते वक्त भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ ज़रूरी सावधानियाँ हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चे पर रहे, और धूमपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा
0: जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है
1: यानी छाती का हिस्सा, वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
0: और इससे कितनी देर करना चाहिए, क्या इसका कोई तय समय होता है?
1: कम से कम एक घंटे तो इसे लगातार करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामले में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की इस बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में मैं थोड़ा झिझक रहा था और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
1: यही तो हमारा मकसद है कि जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकें और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी न खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नज़दीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी ज़रूर लें। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं बल्कि माँ के प्यार और स्पर्श में होती है। सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का
2: साफ सफाई और स्वच्छता का
0: पालन करेंगे
2: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
0: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं आपका दोस्त आरजे अदनान आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।

हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी, तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।

0: भाए।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: और हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए
2: स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है, सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
4: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
5: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
4: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
5: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
4: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
5: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
4: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिक।
8: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। क्या हाल है भैया आप सभी का? जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी का ध्यान रखते हुए हम सभी लोग फिर से आपके शो, यानी कि आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है, जिसका नाम है सुन सहेली विथ आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो चलिए भाई, जैसे कहते हैं ना, एक औपचारिकता होती है कि मतलब मैं आज आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, छोटी सी याद आया कि आज तो भाई ट्यूसडे है ना।
9: yes,
8: और ट्यूसडे के दिन हम छोटे बच्चे बन जाते हैं। आई मीन हम वैसे भी छोटे होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि एक महात्मा जी थे और वहाँ पर एक बच्चा था और एक थोड़ी सी बड़ी उम्र के लोग थे। तो महात्मा जी ने पूछा कि आपको बड़ा होना है कि छोटा होना है, मतलब जो बड़ा इंसान था उससे पूछा गया। तो उस मूर्ख ने हाथ उठाया और कहा कि मुझे बड़ा बनना है। लेकिन जो छोटा बच्चा था, फिर महात्मा जी ने उससे पूछा कि तुम्हें बड़ा बनना है? तो उसने कहा, नहीं महात्मा जी, हमें बड़ा नहीं बनना है, हमें छोटे ही रहना है। फिर पूछा गया कि क्यों, उसका कारण ये हुआ कि उस छोटे वाले बच्चे ने बताया कि महात्मा जी, जब हम बड़े हो जाएंगे तो कई जिम्मेदारियों से घिर जाएंगे, कई उलझनों से घिर जाएंगे, कई सवालों में घिर जाएंगे, अपने हमसे दूर चले जाएंगे, वो मौसम, वो प्यार, वो अपनापन, वो रिश्ता नहीं रहेगा। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि और जब बड़े ने ये बात सुनी तो कहा कि बताओ ये छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी समझदारी की बात कर सकता है और हम बड़े हैं और हम बड़े आज तक नहीं समझ पाए। इसीलिए कहा गया है कि अपने आप को हमेशा बच्चा बना करके ही रखो। कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी।
2: बिल्कुल दिल तो बच्चा है मैम। और आपने बहुत ही अच्छे से देखिए लिसनर जिसे कहते हैं अभी मैं एक बात कह दूंगी तो वो मैम थोड़ा सा बोल जाएंगी तो वो मैं नहीं कहूंगी लेकिन वो मैम समझ गए
8: बड़े बुजुर्ग का होना।
2: अरे वाह देखा ये दिल से दिल का कनेक्शन है। देखिए मेरे बिना
8: घर में बड़े बुजुर्ग का होना अनिवार्य होता है।
2: देखिए तो इसमें मैम इसमें वो मतलब ऑकवर्ड वाली तो कोई सिचुएशन नहीं। आप इतनी
8: कहाँ कह रहे हैं हम तो कहते ही हैं हम बड़े हैं हम कहाँ कह रहे हैं।
2: इतनी अच्छी बात आपने स्टार्टिंग में ही बताई इससे प्यारी शुरुआत नहीं हो सकती थी कि आपने बताया ना कि ऋषि की कहानी और वो बच्चा कितना मतलब स्वीट होता है तो इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। आपने इतनी प्यारी बात बताई अब अगर इस पर मैं कह दूं तो इस पर मतलब कह सकती हूँ
8: तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे लोग जब किसी
2: मुझे ये भी बताएंगे मैम को अच्छा क्यों लगता है
8: क्यों
2: अंकल हैं तो मतलब नहीं सॉरी आंटी हैं तो अंकल भी होंगे और अगर भाभी हैं तो भैया भी होंगे। नहीं
8: ये बात मैंने अभी बताई नहीं इसने पहले ही सुन ली कि कहीं जाती हूँ तो लोग जब कहते हैं ना आंटी तो मैं बड़ा खुश होती हूँ।
2: हाँ।
8: मुझे बोलते हैं संबोधित करते हैं भाभी तो मैं बड़ा खुश होती हूँ मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ मतलब डैश डैश डैश ना ना ना ना ना
2: तो वो जो गैप था वो
8: डैश डैश डैश वाला ही था। तो हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता अपलू चपलू लेकिन आज भी हम बच्चे हैं क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के बच्चों का सेक्शन है हमारे यानी कि ट्यूसडे बच्चों के सेक्शन को बच्चों की पाठशाला को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है अभिनंदन आपके अपने शो सुन सहेली में। और इस प्यारी सी दोपहर में प्यारे सा कल मौसम रात में हो गया था तुमने देखा था रात का मौसम।
2: यस मैम।
8: अरे भगवान
2: मतलब
8: सुनो तो उस पे भी एक मुझे बात याद मुझे एक बात बतानी अच्छा। है तो हम सब लोग बैठे हुए थे भैया दोनों भैया क्योंकि भाभियां हैं नहीं तो बड़ा सुकून था मतलब अगर भाभियां नहीं सुन रही है ना तो बड़ा अच्छी बात है मतलब एनीथिंग जो भी भाभियां हैं वो अगर नहीं सुन रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि फिर कल हमने कहा
2: नहीं तो फिर घर में शांति होती है क्रांति
8: शांति ही होती है क्रांति नहीं होती है।
2: मैंने कहा ना
8: तो इतना सुकून वाला माहौल था और सबसे अच्छा माहौल तो वो तब लगा जब मम्मी के तीनों बच्चे बैठे हुए थे मतलब मैं और मेरे दोनों भाई और बस हमारे मतलब मेरे मुंह से ही निकला था कि बस यार आज पापा की कमी लग रही है तो वो बचपन वाले दिन मई जून वाले याद आ गए कि बस पापा होते तो हमारी जो फैमिली है वो मतलब जैसे हम बचपन में हम लोग बैठते थे वैसे ही कुछ ऐसा फील हो रहा था। तो मैं क्या बता रही थी मौसम को लेकर। तो कल जब ऐसा मौसम हुआ तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नौतपा शुरू हो गया है ठीक है तो भैया ने मेरे कहा मेरे बड़े वाले भैया ने कहा कि अब उन्होंने किसी को कमेंट किया वो किसको कमेंट किया मैं वो ऑन एयर नहीं बता पाऊंगी पर उन्होंने एक कमेंट किया कि इंसान कितना भी तप ले इंसान कितना भी तप ले लेकिन अगर अगर भगवान ने अगर तपाना शुरू किया उसको तो ये 9 तपा 10 तपा ये सब कोई काम नहीं आता है। तो मतलब जैसे बारिश हो गई तो वैसे उस बारिश को लेकर के उन्होंने बोला कि इंसान अपने आप कितना तप तप के बोलता है ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन जब भगवान ने जब 9 तपा शुरू कर दिया तो वो जो जो जो पृथ्वी पर रह के तपते हैं ना लोग वो यूं ढीले पड़ जाते हैं।
2: बिल्कुल
8: है ना
2: क्योंकि कहते हैं ना कि मैम जैसे मैम ने भी बताया बहुत ही अच्छे से उन्होंने ब्रीफ किया तो यही कहूंगी कि हम कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की तो वैसे ही होता है कि इंसान कितना भी कर ले जब भगवान वो एक अपनी जब वो चलाने पर आते हैं तो फिर सब दिख जाता है कि कितना किसमें पोटेंशियल
8: हाँ कि मतलब तुम्हें जितना तपना है ना तुम तपो तपो तुम तपो
2: हम जब आएंगे
8: जब हाँ जब ईश्वर तपाएंगे आपको तो आपको पता चलेगा। अच्छा बताओ कि कितनी गर्मी है मतलब 2-3 दिन से कितनी भयंकर गर्मी और रात को देखो मौसम कैसा हो गया कि अगर अगर मतलब लाइट नहीं थी तो कूलर एसी की कोई नीड नहीं लग रही थी
2: बहुत अच्छा मौसम
8: बहुत अच्छा मौसम हो गया था बारिश भी हुई थी। तो ये होता है कि भगवान के हाथ में सब कुछ है यार और सब कुछ तय है पहले से। जैसे एक ऑनलाइन एक आती है ना कि होइए वही जो राम रच रखा है ना ये मैंने किसी खास अपने के मुंह से सुना है बार बार तो इसलिए भी मुझे ये लाइनें याद हैं कि होइए वही जो राम रच रखा। तो राम रच राखे में हम अगर पॉजिटिव मान के चलें तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों के साथ कभी भी बुरा नहीं करते हैं।
2: बिल्कुल
8: तो आइए उसी बच्चे को लेकर के हम चलते हैं आगे और आज की
2: एक मिनट आज आइए नहीं आज ले चलते हैं हम हमारे लिसनर्स को
8: कहां
2: हमारे लिसनर्स के साथ आपको भी
8: कहां
2: अच्छा मैम पहले एक सवाल का जवाब दीजिए फिर ले चलूंगी।
8: हाँ।
2: तो ये बताइए कि हमारी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा होता
8: है? बचपन।
2: ओके, तो आज किसे अपने बचपन में वापस जाना है?
8: मुझे तो जाना है भाई।
2: तो मैम को भी ले चलती हूँ और हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं उन्हें भी घर बैठे ले चलते हैं अपने बचपन में वापस। और वो ले जाएंगी आपको बचपन में वापस आपकी अपनी फेवरेट वाली, जिनके गुस्से से हम थोड़ा सा डरते हैं पर फिर भी चला लेते हैं, यानी कि
8: काम चल जाता है।
2: हाँ, फिर भी चल जाता है आपकी अपनी आरजे समता, क्योंकि वो लेकर के आई है बहुत ही प्यारी सी पोयम।
8: जी बिल्कुल।
2: और ये सिर्फ पोयम नहीं होगी, ये जब आप आंखें बंद करके सुनेंगे ना, आज एक काम करते हैं आंखें बंद करके सुनते हैं।
8: मैं भी आंख बंद करके बोलूं?
2: आप आंख बंद करके कैसे बोलेंगे?
8: अपने मन की आंखों से।
2: ये सुनने वालों के लिए था।
8: अच्छा, सुनने वाले आंखें बंद करके सुनेंगे लेकिन कान खुले रहेंगे, क्योंकि कान खुले रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो और साथ ही साथ में मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने दिल के दरवाजे भी खुले रखें, क्योंकि ये बहुत ही भावुक सी आज कविता लेके आए हैं। तो सुनेंगे, समझेंगे और फिर मैं इसका फीडबैक सबसे पहले आज अंशिका से पूछूंगी और उसके बाद में मैं लिसनर से पूछूंगी।
2: तो चलिए लिसनर्स, अब एक काम करते हैं कि मैम पोएट्री शुरू करने वाली है तो हम अपनी अपनी सीट्स ले लेते हैं और अपनी आंखों को कर लेते हैं बंद और सैर करते हैं अपने बहुत ही प्यारे से बचपन की।
8: तो सबसे पहला तो मैं आज का शीर्षक बता दूं आपको कि बेहद खूबसूरत सी कविता है जो कि है वो बचपन का जमाना। बचपन का जमाना यार, वो भी
2: बचपन का जमाना,
8: वो भी मई जून में। कहां बचपन, कहां आज अब बचपन। ये भी एक पोयम बन गई ना, कहां बचपन कहां बचपन।
2: लेकिन आजकल तो न्यू वाला है कि आजकल का जो बचपन है ना वो बचपन में बहुत ही
8: दिखता ही नहीं है,
2: कन्वर्ट होता है।
8: हाँ, ये भी बात सही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी पोयम को। वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, फिर से याद आती है वो गुड़िया गुड्डी की कहानी। अरे, ना कोई फिक्र थी ना कोई जिम्मेदारी थी, बस दोस्तों के साथ खेलने की ही तैयारी थी। तितलियों के पीछे भागना वो धूप में दौड़ लगाना, जरा सी चोट लगने पर पूरी दुनिया को सिर पर उठाना, मिट्टी के घरौंदे बनाना फिर खुद ही उन्हें ढहाना, रूठना और एक पल में सब कुछ भूलकर फिर से मान जाना। कंधे पर भारी बस्ता था पर दिल बहुत हल्का था, हर एक खेल में छिपा खुशियों का एक तिनका था, ना पैसों की चाहत थी ना कोई बड़ा सा ख्वाब था, पापा की वो गोदी और माँ का आंचल ही लाजवाब था, अब बड़े होकर समझ आया वो सुकून कहाँ खो गया, जिंदगी की दौड़ में बचपन कहीं पीछे सो गया, काश फिर से मिल जाता वो बचपन का जमाना, ना कोई दर्द होता ना ही कोई रोना धोना होता।
2: वाओ, मतलब जैसे मैंने लिसनर्स को कहा था कि आप खोएंगे तो आपकी जगह साथ साथ मैं भी खो गई हूँ। और मैम ने इतने प्यार से पढ़ा है ना, मतलब इतना अच्छा और इतनी अच्छी पोइट्री। सबसे पहले तो सवाल यही है कि मैम आप इतनी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी पोइट्री लाती कहाँ से हैं?
8: मैं पोइट्री तो लाती जहाँ से भी हूँ, मतलब मैं ये क्यों बता दूँ, क्योंकि ये कुछ अंदर की बात
2: राज,
8: है
2: राज।
8: बट पता है अंशिका, मुझे इसमें से एक चीज जो है ना ये बहुत ज्यादा दिल को छू गई कि वो न पैसों की चाहत थी न कोई बड़ा सा ख्वाब था, पापा की वो गोदी और माँ का आंचल ही लाजवाब था।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और जैसे कि इसमें लास्ट वाली लाइनें वाकई पूरी पोयम और लास्ट वाली स्पेशली बहुत ही बिल्कुल ऐसा ही होता था मैम। मतलब ये नहीं लगता था कि जैसे आजकल जब हम बड़े हो जाते हैं तो लगता है ना, अरे अगर बाइक है तो कार होनी चाहिए, अगर कार है तो उससे कुछ और ऊपर। मतलब उस टाइम पे बचपन पे ये नहीं होता था, कोई 2 रुपए भी दे देता था तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, अरे आज मुझे 2 रुपए मिले या 5 रुपए।
8: मैं उस जमाने की बच्ची हूँ, मतलब मैं 90s किड्स हूँ, मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है, मैं 90s किड्स हूँ। और उस समय 1 रुपए में किराए पे साइकिल मिलती थी, याद है कि आपको शायद नहीं याद होगा,
2: नहीं मुझे
8: 90s के बच्चों को याद है। और जितने भी हमारे लिसनर्स अगर 90s के हैं, 90s के किड्स हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें हमें बताएं कि किस किस ने ये काम किया है। 1 रुपए में 1 घंटा किराए पे साइकिल मिलती थी।
2: ओ,
8: और ये जो मई जून के महीना होता था ना, ये तो हम लोग नाना, मतलब हम लोग जाते थे मामा के घर ही जाते थे, लेकिन जब हम लोग जैसे अब तुरंत तो हम लोग जाते नहीं थे क्योंकि मम्मी को मनाते मनाते पापा छुट्टी देते 15 मई हो जाती थी, ठीक है, तो 15 मई हो जाती थी और उसके बाद में जब तक हम लोग की छुट्टियां, मतलब 30 अप्रैल तक छुट्टियां हो जाती थी, मतलब पहले जो क्या होता था एग्जाम्स में, तो अप्रैल में तो होते नहीं थे एग्जाम्स, तो पूरी पूरी 3 महीने की छुट्टी मिलती थी हम लोगों को, ठीक है। तो क्या होता था कि हम लोग ये जो 2-2.5 महीना, मतलब 1 महीना तो पहले हम लोग यहीं पर ही इंजॉय करते थे और 1 रुपए की किराए पे साइकिल लेते थे और हम लोग पूरा अपने मेरे दोनों भाई और मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स थी यहाँ पर और मेरे भाई के 2 फ्रेंड, मतलब इतने लोगों का पूरा एक कबीला होता था, पूरा मतलब कबीला बना के चलते थे और 1-1 रुपए की हम लोग साइकिल लेते थे। कभी हम लोगों को पापा पैसे नहीं देते थे, मतलब कि अरे नहीं रो रोज तुम लोग साइकिल चलाओगे गिर जाओगे, ट्रैफिक है, लेकिन उस समय ट्रैफिक भी नहीं हुआ करता था,
2: इतनी गाड़ियां,
8: गलियां इतनी चौड़ी चौड़ी होती थी। अब तो गलियों में भी जैसे लग रहा है कि चलने भर की जगह मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ना आराम से साइकिल चलाते थे और कभी कभी जब पैसे नहीं होते थे तो जो हम लोग के फ्रेंड्स हुआ करते थे वो साइकिल लेके आते, तो हम लोग पीछे करियर जो कैरियर वाली जो साइकिल होती है, हम लोग वो वाली साइकिल ढूंढ ढूंढ के, जहाँ साइकिल बहुत सारी रखी रहती थी
2: जी जी,
8: तो हम लोग वो वाली साइकिल देखते थे जहाँ जिसमें पीछे कैरियर ना।
2: हाँ,
8: अब तो हर कोई अपने करियर के पीछे भाग रहा है,
2: कैरियर
8: छूट गया, करियर के पीछे भाग रहा है। तो हम लोग क्या करते थे कि उसपे मतलब जैसे हम अपने भाई के पीछे बैठते थे, फिर छोटा वाला भाई किसी और फ्रेंड के पीछे, ऐसे ऐसे करके हम लोग 2-2 शिफ्ट हो जाते थे, 6 लोग होते थे तो 3 साइकिल हम लोग ले लेते थे
2: जी।
8: और यहाँ से जाते थे सीधे हम लोग अंजुमन, तब अंजुमन वो था गांधी पार्क का नाम, अंजुमन हुआ करता था। फिर हम लोग वहां पर पूरा पहले तो मतलब बहुत ज्यादा जैसे नहीं वो ऊंचाई पे बना था, पहाड़ टाइप पे बना होता था, हम लोग वहां जाकर के साइकिल चलाते थे पूरा घंटों घंटों, मतलब 3 बजे यहाँ से निकलते थे, काहे का नौतपा और काहे का धूप। हाँ। कुछ नहीं, मतलब क्या नौतपा,
2: बचपन में कुछ नहीं पता,
8: मुझे तो लग रहा है ये नौतपा अभी से लगना शुरू हुआ है। क्या बचपन में नौतपा होता था? नहीं होता था, मुझे तो नहीं लग रहा है होता होगा, अगर होता होगा तो हम लोग के ऊपर तो नौतपे का कोई
2: असर नहीं हो, मतलब नौतपा क्या वो लगता था कि पूरी जमीन जल रही होगी। हाँ। फील होता है वो जल रही है, गर्मी लग रही है, तब तो कुछ भी फील नहीं होता था।
8: और हम लोगों का खेलने का टाइम ही यही होता था जब
2: दोपहर का,
8: तो मम्मी लोग सोती थी।
2: हाँ।
8: आराम करती थी और बस हम लोग का
2: शुरू अपना
8: शुरू 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और सोचो कितनी कड़ी धूप होती है,
2: ज्यादा,
8: और जब देखते थे धीरे से मम्मी सो रही है, बस हम लोग फटाफट नीचे उतरे और शॉप पे जाए, पापा से पैसे ले, साइकिल उठाएं और हम लोग पूरा गोंडा घूमते थे और पूरा यही वाला एरिया, अपना वाला एरिया, और गांधी पार्क जाते थे, वहां पर साइकिल चलाते थे और फिर 5 बजे थके हारे आते थे वहां से फूल वूल तोड़ करके, और मम्मी को आते आ करके उनको मनाने के लिए कि कुछ डांटे वांटे ना कि तुम लोग मेरे बगल से कब उठ के चले गए, और मम्मी हम लोगों को सुलाने के चक्कर में खुद सो जाती थी और
2: लेकिन हम लोग नहीं सोते थे।
8: तो ये तो बचपन था, मतलब ये ऐसे वाले बचपन के बच्चे हम लोग हैं। तो आज याद आ गया क्योंकि आज हम लोग का बच्चों का सेक्शन है, तो सभी लोग बताइएगा कि 90s किड्स कौन कौन से। और अब चलते हैं सीधे हम लोग आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की।
2: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ चलेंगे लिसनर्स, और मैम ने इतना प्यारा बता दिया ना कि मन कर रहा है, मतलब ऐसे मन नहीं कर रहा है, ऐसे फील हो रहा है।
8: हाँ।
2: कि मैं उस टाइम में पहुंच गई हूँ। मैम मैं तो गुट्टक बहुत मतलब मैंने खेला,
8: मैंने भी खेले पत्थर
2: वाले, बहुत ज्यादा, बहुत मजा आता था
8: बहुत। और हम लोग तो जब आज ना मतलब कितने पुराने वाली बातें हम लोग याद आ गई है। हम लोग पता है क्या करते थे, वो जो पत्थर वाले सबके घर के मकान जी, कभी कभी बनते थे।
2: हाँ।
8: तो हम लोग वहां से उसको बीन बीन के ले आ, तो 5 का वो बनता था, 5 या 8 का है ना, 5 या 7 का बनता।
2: हाँ,
8: था वो, तो हम लोग वो ऐसे उठाते थे और मतलब मुट्ठी में जितना आ जाए
2: एक ऊपर।
8: हाँ,
2: करके।
8: हाँ, तो मेरी मामा की बेटियां बहुत एक्सपर्ट थी ये खेलने में। अच्छा, मुझे नहीं आता था ये, तो मैंने ये गिट्टक खेलने वाला मैंने उन्हीं से सीखा था।
2: नहीं, मुझे तो आता था, और फिर हम लोग जब गुट्टक खेल लेते थे उसके बाद आम तोड़ने जाते थे, पूरी मतलब पूरी दोपहर में अच्छे खासे आम हम लोग तोड़ लेते थे और बहुत मजा आता था।
8: मम्मी को मनाने के चक्कर में हम लोग अमिया लेके आते थे
2: कि मम्मी देखो इतना खेल के आए हैं तो आपके लिए भी देखो
8: लेके आए,
2: मतलब लेकर। हाँ। और हम लोगों ने तो मैम क्या बताऊं, मतलब वो ऐसे फोड़ करके आम, मतलब पेड़ पे जब तोड़ते थे तो काटने की तो ऐसी कोई वो होते, और तब इतनी वो भी नहीं होती थी कि काटो नमक
8: काटो, नहीं
2: तो
8: ये भी नहीं होता था कि अगर जमीन पे गिरा है तो उसको धुल। हाँ। धुल भी लो,
2: धुल भी लो,
8: ऐसे कपड़े से पोंछ करके खा लेते थे।
2: तो हम लोगों ने तो उसको फोड़ करके पत्थर पे और उसमें मैं नमक लगा के खाया है। और ये होता था कि हम लोग पहले डिसाइड कर लेते थे कि मतलब तुम अपने घर से नमक कागज में वो करके फोल्ड करके और लेके चलना वहाँ, फिर ये ना हो कि नमक नहीं है।
8: तो तुम लोग भी वही गांधी पार्क जाते थे?
2: हाँ,
8: गांधी पार्क ना।
2: हाँ, पार्क में भी तोड़े हैं आम हम लोगों ने, और हम लोगों के मतलब 2 घर छोड़ के आंटी थी उनके यहाँ लगे हुए थे, उनके यहाँ हम लोगों ने खूब तोड़े हैं। मतलब चोरी से उनके गेट में घुस जाओ फिर आम तोड़ो, बहुत मजा आता था। ओ माय गॉड, क्या याद आ गया। तो चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ पे जाते हैं।
8: हाँ, वरना ये हम लोग बचपन में ही चले गए हैं, तो बचपन तो एक ऐसा जमाना था कि हम लोग वहाँ से निकल तो पाएंगे नहीं। तो आइए बढ़ते हैं और अभी रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बाद में सीधे हम आपसे आएंगे और भी बहुत सारी बेहतरीन बातें करने, लेकिन अभी वक्त हो चला है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ का।
2: तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं होती। अपनी तैयारियों को हमेशा शांत रखिए। लोगों को आपके संघर्ष का शोर नहीं बल्कि आपकी सफलता का नतीजा चाहिए। कहने का सेंस ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अरे मेरा पेपर है, हम तो दिन भर पढ़ा करते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं, मेरे पास तो बिल्कुल कुछ और करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, आप उस पर पूरी मेहनत कर रहे हो, तो वो आपकी मेहनत बिल्कुल सही है कि आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। वो जब आपका पेपर आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि हाँ इसने इतनी मेहनत की, तो मतलब जितने भी आए हो वो। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि पेपर मतलब उनको ये रहता है पेपर आ रहा है तो हम बस पेपर आने में जितने टाइम है उतने में पूरा पढ़ डाले, साल भर फिर चाहे उठाई हो किताब कॉपी या ना उठाई।
8: बिल्कुल,
2: तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे मम्मी पापा या सब लोग कहते हैं ना कि अरे इतना मत कौन नजर लग जाती है, तो नजर वगैरह की बात नहीं होती, बट एक साइंस भी होता है कि जैसी एनर्जी आप देते हैं वैसी एनर्जी हमें यूनिवर्स से रिवर्स मिलती है। तो अगर हम अपनी मेहनत को बार बार कहते हैं ना बहुत मेहनत करते, जैसे किसी को आपने सुना होगा अरे वो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है, फिर अचानक एक दिन होता है कि वो प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो कहने का सेंस ये है कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं तो अपनी वो पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रखिए, उसमें शोर मचाने की और बताने की जरूरत नहीं होती। इससे पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना वो कम होती है, और इसके साथ साथ कई बार जब आप किसी मतलब नेगेटिव एनर्जी के उसमें आ जाएंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी से क्लैश भी करती है।
8: बिल्कुल,
2: इसलिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए।
8: सही कहा, बिल्कुल। तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हमने अभी सुना अंशिका की तरफ से, तो चलिए फटाफट चलते हैं यहाँ एक ब्रेक की ओर, क्योंकि काफी देर से हम लोग अपने बचपन की ओर चले गए हैं। तो अभी एक ब्रेक बनता है और एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग भी सुनाएंगे। बस हम यू गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88-40-33-95-84। 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और आरजे अंशिका। तो चलिए भाई बच्चों के प्रोग्राम को यानी कि बच्चों की पाठशाला को शुरू करते हैं और अब बताते हैं हम आपको कि ये जो नौ तपा वाला दिन है जो चल रहे हैं, इसमें छोटे बच्चों यानी कि नवजात शिशु और थोड़े से उससे बड़े बच्चों की जो प्रिकॉशन है, उनकी देखभाल है, हम कैसे कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो पॉइंट्स हैं हमारे पास, हम आपको ब्रीफ करेंगे। पर उससे पहले क्या है ना कि भाई गर्मियों के दिन है यानी कि ये छुट्टियों वाले दिन भी होते हैं और काफ़ी थोड़े से बहुत मतलब गर्मी लगती है, थोड़ा सा बहुत इंजॉय भी होता है। तो आप सब भी इंजॉय करें इन प्यारे प्यारे दिनों को और कुछ प्लान्स बनाइए, कुछ अपनी मतलब अच्छे वाले प्लान्स बनाइए और इंजॉय करिए। तो लेकिन हम इंजॉय करेंगे बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ में। और सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि हमेशा कहा जाता है ना कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ। ऐसा हमेशा कहते हैं मैम कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और बॉडी को हाइड्रेट रहना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें नवजात शिशुओं की यानी कि 6 महीने से छोटे बच्चों की, तो उन्हें आप पानी तो नहीं पिला सकते हैं, मतलब पानी तो
2: ज्यादा पानी नहीं पिला सकते हैं।
3: हाँ, ज्यादा पानी नहीं पिला सकते,
2: वो एक एक बूंद जाता है पानी में।
3: इसलिए जरूरी ये होता है कि इसलिए हर 1-2 घंटे में जो फीडिंग है मदर उनको फीड जरूर कराएं। हर 1-2 घंटे में आप थोड़ा फीड कराइए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मिल जाता है मतलब प्रॉपर वे में बच्चों को फीडिंग, जैसे जब हम कराते हैं तो दूध जो उन्हें मिल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में एक लिक्विड की कमी को ही पूरा कर देता है। इसलिए
2: जी हाँ। और सेकंड पॉइंट इज कि गर्मी और धूप से बचाव करना चाहिए। आज ही मैंने एक, पता नहीं क्यों मुझे टॉपिक पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग दिख जाते हैं। आज मैं जब आ रही थी घर से निकली और मैंने जब रास्ते में थी तो मैंने देखा कि ये जो लेडीज हॉस्पिटल है, जो महिला अस्पताल है
3: जी,
2: उसके बाहर से एक बाइक पे एक महिला बैठी हुई थी बाइक पे और एक आदमी था, वो उसने छोटे बच्चे को उठाया हुआ था, मतलब बहुत ही नवजात शिशु था, और उसने उस बच्चे को, और मैंने उसको घूर के देखा भी, मतलब मुझे ये लगा कि यार या तो छाता ले लेते या तो गाड़ी अगर नहीं है तो आप बाइक पे ना करके आप ई रिक्शा पे जाते, एटलीस्ट उस बच्चे के लिए सोचते आप। अब वो बाइक पे, अब सुनना, बाइक पे और उस छोटे बच्चा, बिल्कुल छोटा नवजात शिशु था, मुझे लग रहा था कि अभी 5-6 दिन का होगा, उसने उसको पूरा कवर किया हुआ था, मुंह तक कवर किया हुआ था कि बच्चा सांस ही ना ले पाए।
3: नहीं नहीं, ये तो
2: और इतना मतलब, और मुझे कैसे पता चला कि उसमें क्या है, क्योंकि उसने ऐसे ही उसने गोदी में लिया हुआ था और उस औरत ने वैसे ही लिया था जैसे बच्चा लेते
3: बच्चा
2: हैं
3: लेते।
2: और जैसे पता चल रहा था कि हाँ बच्चा है, लेकिन वो पूरा मुंह से लेकर के पैर तक पूरा कवर था। अब अगर भगवान न करे सांस नहीं ले पाए और कितना छोटा बच्चा होता है ना, और मतलब मुझे तुरंत मुझे लगा कि आज तो मैं ये ऑन एयर ये बोलूंगी जरूर से कि मतलब हॉस्पिटल से वो निकल रही थी लेडी और किस तरीके से उस बच्चे को लेके जा रही थी, मतलब मुझे इतना मतलब गुस्सा आ रहा था कि कैसे, देखो या तो आप छाता लो, चलो आप छाता नहीं बाइक पे उड़ जाएगा या फिर बाइक पे आप नहीं ले सकते हो, तो एटलीस्ट आप अगर बाइक पे बैठे हो तो आप कुछ ऐसे करके अपनी शॉल ऊपर ले लो,
3: मतलब
2: दुपट्टा ऐसा ले लो
3: साड़ी से ही उसको,
2: हाँ थोड़ा ऐसे ताकि थोड़ा सा उसका मुंह खुला रहे कि बच्चे जो है वो सांस ले सके। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच बच्चे को घर से बाहर बिल्कुल नहीं लेके जाए, साथ ही साथ कमरे को ठंडा लेकिन कूलर या पंखे की सीधी हवा बच्चे पर ना लगने दे, खास करके नवजात शिशु और ये नौ तपा वाले दिनों में।
3: बिल्कुल, और भी हमारे पास पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए बच्चों की केयर क्यों हम बार बार कहते हैं, क्योंकि बड़े होते हैं तो वो बता देते हैं मैम कि मुझे यहाँ गर्मी लग रही है, धूप लग रही है या फीवर है, बच्चे बता नहीं पाते, इसलिए नवजात शिशुओं की स्पेशली मदर को एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: एक पॉइंट ये है कि बच्चों को सिर्फ कॉटन के हल्के और ढीले कपड़े पहनाने चाहिए, इस मतलब जो बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में सिंथेटिक पॉलिस्टर के कपड़े, या कुछ को मैंने देखा है कि बच्चे को अगर जीन्स पहनाती है तो छोटा बच्चा है सोचिए 6 महीने का या उससे भी कम, तो जीन्स वगैरह या कुछ भी पहना रही है तो इतना टाइट पहना देंगी कि वो बच्चे की बॉडी पर निशान पड़ जाते हैं।
2: हाँ।
3: तो इतना टाइट नहीं पहना है, और जहाँ तक हो सके उनको आप पसीने, अगर पसीना जैसे उनको हो रहा है तो उनको ऐसे कपड़े पहनाइए जो पसीने को आसानी से सोप कर सके। और थोड़े थोड़े टाइम पे बच्चे को चेक करते रहें कि मतलब उसे, देखिए क्या होता है ना कि पसीने में जमने की वो होती है, बच्चों में जब पसीना जम जाता है तो उसने रैशेज हो जाती है, गमोरिया हो जाती है, इसलिए पीठ पर और बाकी चेक करते रहिए कि पसीना जो है वो जमे ना, थोड़े थोड़े देर पे उनको साफ करते रहिए।
2: बिल्कुल, और साथ ही साथ में एक और पॉइंट है जो कि स्पंज और मालिश। दिन में 2 या 3 बार सामान्य पानी से बच्चे को स्पंज करते रहें, कपड़ा भिगोकर शरीर को साफ करते रहें, साथ ही साथ हल्के हाथ से मालिश करना बच्चे के लिए ये बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे का जो एक शरीर का बढ़ाव होता है वो बचपन में यानी मालिश के दौरान ही होता है। तो सुबह जल्दी या फिर शाम को ठंडे मौसम में ही ये काम करें, और हल्का तेल लें क्योंकि गर्मी है, तो बिल्कुल हल्का सा तेल लें, यानी कि मतलब कड़वे तेल से तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि बच्चों के शरीर पे वो हल्के से दाने भी हो सकते हैं, कड़वा तेल तो बिल्कुल नहीं, सरसों का तेल बिल्कुल नहीं, लाल तेल ले सकते हैं या फिर कोई ठंडा तेल आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क में रहें क्योंकि बच्चे को तेज़ बुखार, उल्टी या दस्त हो या फिर बहुत ज़्यादा सुस्ती लगे तो बिना देरी किए डॉक्टर से ज़रूर से संपर्क करें क्योंकि ये लक्षण हो सकते हैं उन्हें लू लगने के। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चा छोटा है, वो घर से तो बाहर गया नहीं, उसे लू कैसे लगी? तो लू लगने के कारण ये भी हो सकते हैं कि अगर हम घर से बाहर नहीं भी निकल रहे हैं तो भी आप कहीं पे भी बच्चे को लेके गए, मान लीजिए डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर के पास से जब आप यहाँ पे आ रहे हैं उतनी देर में भी, क्योंकि उसकी छोटे वाले बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और उसी सेंसिटिव स्किन को ये धूप की किरणें ज़्यादा झेल नहीं पाती हैं जिसके कारण से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर ये बच्चे को हो रहा है तो आप ज़रूर से तुरंत तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें।
3: बिल्कुल, देखिए डॉक्टर से कंसर्न करना कि जैसे मैम ने अभी बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप कंसर्न नहीं करेंगे, जैसे कुछ लोगों को हमने देखा है कि छोटे बच्चों को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो घर में सभी कहते हैं अरे घर से ही कुछ चीज़ें कर लेते हैं, तो देखिए घर के नुस्खे ठीक हैं बट कुछ कुछ केसेस में वो उल्टे भी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए सबकी स्किन, जैसे हम हमेशा जब रेमेडी बताते हैं या कुछ भी बताते हैं मैम तो हम हमेशा कहते हैं कि हल्दी यूज़ करिए या इस तरह की चीज़ें हम बताते हैं, बट किसी किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि हल्दी जैसी इतनी गुणकारी और इतनी अच्छी चीज़ भी रिएक्ट कर जाती है, इसीलिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि पहले पोर्स पे लगा के, कॉर्नर पे लगा के आप चेक कर लीजिएगा, बाद में फेस पे लगाइएगा। तो कहने का सेंस यही है कि आप छोटी से छोटी चीज भी आप बच्चे पे यूज कर रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर को कंसर्न कर लीजिए, भले आप घर की ही चीज करिए लेकिन आप एक बार कंसर्न कर लीजिए कि ये हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे उसे?
2: बिल्कुल, और साथ ही साथ में चैट बॉक्स में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है
3: तो चलिए हम भी शामिल
2: हो जाते हैं और वन बाई वन सभी के मैसेजेस को देखते हैं कि कितने लोग एंट्री कर चुके हैं।
3: तो कमल नयन जी सबसे पहले आ चुके हैं और उन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून मैम।
2: गुड आफ्टरनून,
3: और बहुत सारे सूरज के साथ गुड आफ्टरनून किया है।
2: अरे मतलब सूरज वैसे ही बाहर इतना है और आप फिर से सूरज
3: चैट बॉक्स में भी हमारे फिलहाल रोशन है।
2: हाँ।
3: और लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया आपको भी, बहुत सारी इमोजीज भी भेजी है उन्होंने और जवाब भी दिया है जो सवाल आपने पूछा था मैम कि हाँ हमने भी किराए पर साइकिल चलाई है और रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे मिलता था गांधी विद्यालय के सामने।
2: हाँ जी बिल्कुल,
3: और कैरियल होता है, नहीं मुझे लगता है कमल जी कैरियल नहीं है,
2: कैरियल नहीं होता है,
3: कैरियर होता
2: कैरियर
3: है।
2: नहीं मैं भी करना, करियर तो वो होता है,
3: करियर नहीं होता है मैम,
2: कैरियर,
3: कैरियर होता है,
2: कैरियर हाँ।
3: जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है। और ये लिखा है कि नौतपा होता था मैम लेकिन पहले प्राकृतिक हवाएं अच्छी चलती थी, अब बहुत सारे पेड़ थे। हाँ ये बात तो मतलब कहीं ना कहीं
2: 100%
3: कि पेड़ और ये सारी चीजें पहले बहुत थी, अब उतनी नहीं,
2: अब उतनी नहीं है।
3: ओके, और गीता जी भी आ चुकी है, गीतू जी जो की लिखती है शुभ दोपहरिया दोनों आज, शुभ
2: दोपहरिया गीता जी,
3: और लिख रही है ये गाना किस मैम की पसंद का है, बहुत प्यारा है, मैं इसे रोज सुनती हूँ।
2: कौन सा गाना?
3: आई थिंक अभी जो चल रहा था एक नया आसमा
2: एक, अरे भगवान ये हम लोगों के सुन सहेली का फेवरेट सॉन्ग हो गया है, मतलब हम लोगों को लगता है कि हम लोग अगर ये गाना नहीं चलाएंगे तो हम लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती है।
3: हाँ।
2: तो ये गाना हम दोनों की पसंद का है क्योंकि ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, जो सच्चाई है।
3: ओके, और साथ ही साथ में लिख रही है नाइस सॉन्ग, और नाइस सॉन्ग के साथ बहुत सारी इमोजी भेजी है, उसमें स्टार भी भेजा है, उसमें दिल भी भेजा है, और उसमें आई थिंक कुछ बादल भी भेजे।
2: गीता जी एंड प्रीति जी जितने हमारे फीमेल लिसनर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि कल हम लोगों ने खाना खजाना में कॉलिंग का प्रोग्राम रखा था। जैसे कि नागेश्वर जी कहते हैं कि एक दिन कॉल रसोई, तो आप लोगों में से किसी का कॉल नहीं आया, तो भाई हम भी आपकी रसोई से कुछ खाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का हाथ के हाथ से बनाया हुआ टेस्ट अलग अलग होता है। तो इस मंडे से हम बिल्कुल सीरियसली इसको शुरू करने वाले हैं कि कॉलिंग प्रोग्राम लेंगे, मतलब एक लिसनर कोई भी एक ही मतलब फीमेल लिसनर की हम कॉल उठाएंगे और उनकी उनके द्वारा बताई गई रेसिपी को हम लोग ऑन एयर करेंगे और उन्हीं को मौका देंगे कि आप सुन सकते हैं अपने पसंदीदा सॉन्ग को।
3: बिल्कुल, तो मौका है, दस्तूर भी होगा हमारे मंडे में, तो आपको रहना है तैयार, क्योंकि हम दोनों ही आपकी किचन से कुछ अच्छा सा टेस्टी सा खाने के लिए और बताने के लिए दोनों के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन उससे पहले आई थिंक मैम चलें एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ।
2: हाँ जी बिल्कुल, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से कुछ नया और अच्छा सा पाठशाला में लेकर,
3: और तब तक आप सोचिए कि किस पे दिल आया है, क्योंकि ये सॉन्ग आपको बताएगा कि किस पे आया है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता।

0: बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंदीदा वाला शो जो कि है सुन सहेली, और जिसे वापस से लेकर के हाजिर हैं आपकी दोनों सहेलियां। बिल्कुल, जहां बात हो सहेलियों की वहां पे तो बहुत सारी बातें हैं हमारे पास आपको बताने के लिए, लेकिन उससे पहले पहले पहले हम बात कर लेंगे कि अभी तक हमने बात की गर्मियों को लेकर बहुत सारी, लेकिन अभी तक हमने गर्मियों को लेकर उनके लिए केयर नहीं बताई है जो कि हमारे परिवार का एक बहुत ही प्यारा सा कहीं ना कहीं हिस्सा होते हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अनमोल और बहुत ही स्वीट होते हैं वो हमारी फैमिली में, जो कि हमारे प्यारे प्यारे पेट्स होते हैं जिनसे हमारा बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होता है। तो आज उन पे हम बात करेंगे, और आज बात करने वाले हैं डॉग्स पे। हाँ। क्योंकि मेरे भी घर पे है प्यारा सा छोटा सा प्राणी जो कि
1: ब्लैकी।
0: हाँ, प्यारा सा छोटा सा प्राणी तो है, लेकिन वो छोटे से प्राणी के जो कारनामे हैं वो छोटे से बिल्कुल भी नहीं है। हमें घर पे सारे कपड़े मतलब अलमारी में ही रखने पड़ते हैं, तो वो हमें अगले दिन सुबह मिलते हैं, वरना अगले दिन सुबह यही होता है कि ब्लैक लेकर चले गए होंगे अगर गलती से कहीं बेड पर या नीचे कहीं छूट जाता है कभी। तो सुबह फिर यही होता है कि अगर आपको मतलब जींस मिलेगी तो टॉप गायब है, टॉप मिलेगा तो जींस गायब है, और फिर एक ही सवाल होता है घर में किसी की भी कोई भी ड्रेस गायब हो मैम वो एक ही सवाल होता है ब्लैक ले गए।
1: मतलब घर में अगर कोई चीज नहीं मिल रही है
0: तो वो ब्लैक ले गए, और वो बिल्कुल 100% सच भी होता है कि वो जाएंगे आप तो उसी के पास रखा हुआ मिलेगा आपको।
1: ओके,
0: तो इसलिए छोटा सा प्राणी जो है बहुत तंग
1: नुकसान भी करता है।
0: नहीं, कुछ नहीं करता है मैम, मतलब कुछ नहीं करेगा, बस केवल लेके जाएगा अपने पास मतलब रखता है और कुछ नहीं करता है, मतलब ऐसे कोई नुकसान नहीं। तो आज हम उसे लेकर के बात करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हम आपको अब बताने वाले हैं, हम दोनों ही इस पे आपको पॉइंट्स बताने वाले हैं, वो ये है कि मतलब ये सभी में कॉमन होती है कि डॉग्स में क्या होता है ना मैम कि इस मौसम में रैशेस बहुत हो जाते हैं।
1: हाँ, खुजली होती है।
0: हाँ, खुजली होती है गर्मियों की वजह से। तो ब्लैकी भी इस समय मतलब इसी समस्या से है, लेकिन वो थोड़ी मेडिसिन दो, थोड़ी दवाई दो तो फिर वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके साथ क्या है ना कि वो जल्दी मेडिसिन लेता नहीं है मैम। मतलब मेडिसिन खिलाने के लिए उनके पीछे ऐसे भागना पड़ता है कि मतलब लगता है कि घर में अब कुछ बचा ही नहीं है। तो इस वजह से तो रैशेज और सनबर्न के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे अच्छी जो चीज़ जो आप घर पे कर सकते हैं वो है कि बर्फ़ का टुकड़ा, मतलब अगर आपकी फ्रिज में बर्फ़ अवेलेबल है तो फ्रिज में, वरना बाहर से अगर आप ला सकते हैं तो बाहर से ले आइए। वैसे घर में आइस क्यूब्स सभी के
1: होते हैं, और काफी लोग तो बर्फ को जमाते भी हैं। हाँ, अलग अलग उसमें सामानों में,
0: तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, मतलब छोटा सा पीस, और जैसे दो आइस क्यूब आप दो आइस क्यूब ले लीजिए, और कॉटन की हैंकी ले लीजिए जो प्योर कॉटन की हो।
1: हाँ,
0: और उसमें उसको मतलब अच्छे से फोल्ड कर दीजिए दोनों बर्फ के टुकड़े उस हैंकी में, और फिर उस पे आप जहाँ पे भी रैशेज हैं आपके डॉग को उस पे आप अच्छे से ठंडी सेकाई करिए। इससे क्या होगा कि इससे वो पक नहीं पाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि दाना हो गया है पक गया है, तो वो क्यों होता है, वो शरीर की गर्मी की वजह से। और मैं बता दूं कि डॉग्स को गर्मी बहुत ज्यादा लगती भी है, मतलब उनमें नेचुरली वो होता है एक चीज। तो आप उसी जहाँ पे भी रैशेज हैं वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से उसको चलाइए बर्फ, और तब तक चलाना है जब तक कि वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाए। इससे ठंडी सेकाई से क्या होगा कि जो उनको पेन होगा या थोड़ा अनईजी हो जाते हैं, जब कभी रैशेज हो जाते हैं तो अनईजी हो जाते हैं, तो उससे बहुत आराम मिलता है। और हाँ, दवा बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर को आप तुरंत दिखाइए, और डॉक्टर जो भी दवाइयाँ जो भी प्रिस्क्राइब करे वो उन्हें तुरंत दीजिए, क्योंकि घर की रेमेडीज तो हम मतलब घर की चीजें यूज करते हैं मैम, लेकिन उससे नहीं होता है, मतलब डॉक्टर को दिखाना और दवाई लेना बहुत इम्पोर्टेंट।
1: हाँ, वो इम्पोर्टेंट ही होता है जो बात है।
0: बहुत लोग बोलते हैं ना अरे नहीं नहीं हम घर पे कर रहे हैं वो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है।
1: और खास करके ना एनिमल्स को तो बिल्कुल भी किसी चीज का प्रिकॉशन अगर आप दे रहे हैं ना तो वो जरूर से देना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं ना वो हमारे क्या कहते हैं बेड पे भी बैठ रहे हैं हमारे। हाँ, साथ अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो भी वहीं आ जा रहे हैं, तो अगर पेट्स हैं तो उनका क्या कहते हैं ख्याल हमें खुद से ज्यादा भी रखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ हो जिसकी हमें जानकारी ना हो, और कहीं ना कहीं फिर हमारे ऊपर भी ये चीजें लागू हो जाए।
0: बिल्कुल, एक बात और बता दूं कि गर्मियों में अगर आप अपने पेट्स को खाना खिलाते हैं, क्योंकि हम लोग खिलाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा नॉलेज है उस बारे में, कि हमेशा से उनको ऐसी चीजें खिलाइए जो बॉडी को ठंडी करती है।
1: और कहा जाता है कि खास करके पेट्स में डॉग को मीठा नहीं देना चाहिए।
0: हाँ,
1: मतलब मैंने ऐसा सुना, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे पहले पेट्स थे, तो मीठा देने से सब लोग अवॉइड करते हैं, बिस्किट हो गया, मिठाई हो गई, जैसे होता है ना कि घर में अगर कुछ बच गया तो चलो ठीक है उसको दे दो खा लेगा, बट कभी भी मीठा नहीं उनको देना चाहिए।
0: बिल्कुल, उससे बाल क्या होते हैं उनके झड़ जाते हैं।
1: हाँ,
0: एक पॉइंट ये है कि जब भी आप उसको खाने के लिए दीजिए तो दही दीजिए। हम लोग ब्लैकी को दोनों टाइम, मतलब अब तो गर्मियां बहुत ज्यादा पीक पे पड़ गई हैं, तो तीनों टाइम उसको देते हैं, एक रोटी। और हाँ, खाना कम दीजिए। कम देने का सेंस है, जैसे आपका पेट अगर तीन रोटी खाता है या दो रोटी खाता है तो एक दीजिए। भले आप दिन में उसको तीन बार दीजिए, उसमें नहीं प्रॉब्लम है, कि एक रोटी।
1: अच्छा,
0: दही पहले अच्छे से, दही थोड़ा सा पानी वाला जो दही होता है मट्ठे वाला, वो ले लीजिए और उसमें रोटी को पूरी तरीके से भिगो दीजिए,
1: तोड़ करके भिगो दीजिए।
0: हाँ, प्रॉपर आधे एक घंटे वो भीगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद हाथों से मैश करके आप आराम से खिला दीजिए उसको, आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अगर अपने आप से जैसे खा लेता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैकी तो है, उनके पीछे लेकर के घूमना पड़ता है, बेटा खा लो, बेटा खा लो।
1: अच्छा,
0: अरे मैम ना पूछिए आप, मैं क्या कहूँ। ये हमारे यहाँ सब लोग ये लाइन जरूर कहते हैं कि बच्चे नहीं है हमारे घर में, मतलब मैं और दीदी बड़े हो गए तो इनके पीछे भागो। पहले बच्चों के पीछे भागना होता था, मतलब एक घंटे, आधे घंटे, एक घंटे नहीं आधे घंटे प्रॉपर उसके पीछे भागना पड़ता है, बेटा खा लो, बेटा खा लो। तो फिर हम लोगों पे वो तरस खा जाता है, जब कभी
1: खा लेता है
0: तो खा लेता है कि इनको इतना दौड़ना पड़ रहा है। लेकिन मजा आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये करना है, और साथ में एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल अगर आपके घर में है तो थोड़ा सा लेकर के उसको जहाँ पे भी रैशेस हो वहाँ पे एलोवेरा जेल लगा दीजिए। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं कि हमेशा से ऐसी चीज़ें दीजिए, जैसे कि अब हम लोग उसको देते हैं तो फलों का रस देते हैं, लेकिन फलों का रस कैसे देते हैं, जैसे बॉटल अगर ला रहे हैं या बाहर से निकाला हुआ लेकर के आते हैं जब, तो फ्रिज में पहले एक घंटे रख देते हैं, जब वो बिल्कुल चिल्ड हो जाता है तब उसे देते हैं।
1: क्या
0: जूस?
1: अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह?
0: हाँ, जूस वगैरह। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे इतना चिल मत दो, ये ठीक है कि बहुत ठंडा नहीं दिया जाता है, लेकिन जब वो रैशेस, घमौरी, सनबर्न ऐसी चीजों से अगर उनको है तो आप ठंडा ही सामान देंगे। जितना ठंडा वो खाएंगे उतना ज्यादा वो उतनी जल्दी ठीक होगा,
1: वो रिकवर होगा,
0: क्योंकि जब हम ठंडा खाते हैं तो हमारी बॉडी की जो तासीर अंदर से गर्म होती है, जब वो बैलेंस्ड होती है तो वो प्रॉपर अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे जब पेट की गर्मी कभी बहुत ज्यादा, जैसे कहते नहीं मुंह में दाने हो गए, रैशेस हो गए हैं, तो हम कहते हैं ना अरे पेट की गर्मी की वजह से, अंदर से अपने आप को मतलब ठीक कीजिए। तो अंदर से ठीक करने का मतलब यही है कि आप उनको ठंडी चीजें दीजिए, वो खाएं, और थोड़ा सा उनको यू नो ठंडा एनवायरनमेंट, यानी कि एसी है, कूलर है, पंखा है, उसमें वो ज्यादा रहें, बाहर धूप पे ज्यादा ना निकले, छतों पे ज्यादा ना जाएं, ज्यादा दौड़े ना, इन सारी चीजों का ख्याल रखिए।
1: बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे अब आज की मॉरल स्टोरी जो कि मैं लेके आ रही हूँ। तो फटाफट बस हम यू गए यू आई बस एक ही सॉन्ग सुनाएंगे अंजी का, क्योंकि हमारा जो टाइम है ना वो भाग रहा है, तो टाइम भी भागेगा, हम लोग भी भागेंगे, लेकिन इस गाने के बाद भागेंगे। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली और वापस से हाजिर हो गई हैं आपकी सहेलियां। और अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे लेकर चलते हैं आपको मॉरल स्टोरी की तरफ, क्योंकि टाइम हो गया है 2:53।
3: जी हाँ, तो मॉरल स्टोरी बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी है
2: आज, कुछ अभी
3: आज कुछ ज्यादा ही मॉरल स्टोरी अच्छी है।
2: इत्तेफाक बहुत प्यारा सा हुआ,
3: प्यारा सा इत्तेफाक हुआ है। पर चलिए, एक बंदर और एक जादुई आम की कहानी है, लेकिन इसका मॉरल हम बाद में
2: बताएंगे। लेकिन बंदर कौन है और जादुई आम कौन है?
3: जादुई आम हम हैं।
2: अच्छा।
3: और बंदर चीकू है।
2: ओके,
3: ठीक है। तो एक चीकू बंदर बहुत लालची था। एक दिन उसे जंगल में एक अनोखा आम का पेड़ मिला। उस पेड़ का एक नियम था, वहां से हर जानवर रोज एक सिर्फ मीठा आम तोड़ सकता था। नहीं, मैं आम आम नहीं, जादुई आम नहीं हूँ भाई, ठीक है। वहां से हर जानवर रोज एक मीठा आम तोड़ सकता था। चीकू ने सबसे पहले एक आम खाया, उसे बहुत मजा आया। अगले दिन उसने सोचा कि मैं सारे आम एक साथ तोड़कर छुपा लेता हूँ, ताकि मुझे रोज मेहनत न करनी पड़े। उसने पेड़ की बात नहीं मानी और एक साथ 10 आम तोड़ लिए। जैसे ही उसने आम जमीन पर रखे, वे सारे आम पत्थर हो गए और उस पेड़ के सारे फल गायब हो गए। तब चीकू को समझ आ गया कि लालच करने से जो पास में होता है वो भी चला जाता है।
2: बिल्कुल सही, जो निष्कर्ष निकल करके आए, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो बिल्कुल सही है कि लालच करने से जो आपके पास होता है
3: वो भी चला जाता
2: है।
3: बिल्कुल। तो अगला इंसान जो भी है, कि अगर अगला इंसान लालच कर रहा है, तो लालच करना बहुत बुरी बात नहीं है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वाली बुरी बात है। तो लालच नहीं करना चाहिए, आपके पास जितना है जो है और जो भी समय से है, उसमें अगर आपको रहना और सब्र करना आ गया ना, तो जीवन की समझ लीजिए 75 लड़ाई तो आपने जीत डाली।
2: बिल्कुल,
3: जीत ली आपने लड़ाई, 75% लड़ाई आपने जीत ली, अगर आपके पास जितना है जो भी है उसमें आपको संतोष करना आ गया।
2: बिल्कुल। और बहुत ही प्यारा सा अभी एक जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो मैम ने आपको बताई, और बहुत ही प्यारी स्टोरी भी सुनाई आपने मैम, बंदर की और जादुई आम की।
3: बंदर और जादुई आम, याद रहेगी ये स्टोरी,
2: याद रहेगी बिल्कुल, क्योंकि इस स्टोरी के साथ कुछ बहुत प्यारा सा एक
3: इंसिडेंट भी हो गया,
2: जुड़ा हुआ है, जो हाँ। गलती से भी नहीं हुआ, बस हो गया
3: जी।
2: तो कई चीजें जो लाइफ में बस हो जाती है ना, वो बहुत अच्छी वाली होती है। तो इसी के साथ हमारा टाइम भी 2:56 हो गया।
3: ओह माय गॉड, हो गया टाइम।
2: यस मैम।
3: तो भाई, अभी मुझे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं मुस्तफा सिद्दीकी जी। तो आज मुस्तफा जी से ये एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मुस्तफा जी, मुझे आप ये बताएं कि क्या आपको सुन सहेली पसंद नहीं है? पूछिए अंशिका जी।
2: जी बिल्कुल, अभी आपकी आज समता जी ने आपसे सवाल किया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल किया है उन्होंने कि क्या आपको सुन सहेली पसंद नहीं है, तो जवाब दीजिए मुस्तफा जी, और ये सवाल आपसे क्यों किया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे जरूर।
3: तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब हम लोगों के जाने का टाइम होता है तो कुछ लिसनर्स आते हैं,
2: हाँ।
3: है ना, तो ये एक प्रभाव होता है कि शायद हम लोगों के जाने के बाद आप लोग की एंट्री होती है, तो इट मीन्स कि ये सुन सहेली आपको नहीं पसंद है।
2: तो मुस्तफा जी जवाब जरूर दीजिएगा, और आपके जवाब का रहेगा इंतजार, क्योंकि मैंने पहले भी लिसनर्स को कहा है और बहुत बार कहती हूँ कि आते आते आया करिए, प्लीज जाते जाते मत आया करिए।
3: हाँ, आते आते आया करिए,
2: आते आते आया करिए, बहुत प्यारा लगता है जब आप आते आते आते, और बहुत दुख होता है जब आप जाते जाते जाते। अच्छा, क्यों पसंद नहीं है? बस टाइम नहीं मिलता।
3: अच्छा, तब तो कोई बात नहीं,
2: तब कोई बात,
3: कोई बात नहीं मुस्तफा जी, कोई बात नहीं, हाँ सॉर्टेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वरना ये मलाल जो है मैं दिल में लेके जाती। कोई नहीं, कल हम लोग फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
2: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें ऑल्टस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
0: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता
5: है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

स्वर्ग से धरती तक पावनता की धार बनकर बहने वाली, पापों को हरने वाली, जीवन को तरने वाली माँ गंगा के पावन अवतरण दिवस गंगा दशहरा की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं, जी हाँ, आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम, जी हाँ, कॉलर ट्यून गोंडा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गैनस 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज है भैया गंगा दशहरा के साथ में जेठ वाला मंगल भी। भैया इस बार में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तीसरा मंगलवार पड़ा हुआ है और काफी सारे लंगर्स लगे हुए हैं और प्रसाद का वितरण हो रहा है और काफी सारे भक्तगण उसका सेवन भी कर रहे हैं निरंतर। फिलहाल आज जैसे हमने कल भी अनाउंस किया था कि गौरा चौकी में हनुमानगढ़ी पे हमारे सुरेंद्र जी के निकट घर के निकट मंदिर पर लंगर लगा हुआ है, मतलब प्रसाद वितरण हो रहा है। और साथ ही साथ में पूरे लखलख धाम यानी कि बालाजी मंदिर में भी आज गंगा दशहरा के पावन उत्सव पर वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तो जो जहां भी हाजिरी अपना दर्ज करा सकते हैं दर्ज कराएं और बिल्कुल से आज के दिन का लाभ उठाएं और अपने आप को थोड़ा सा धर्म की ओर भी अग्रसर करें। और सेवा देना चाहे तो सेवा भी दे सकते हैं अपनी। और इसके अलावा मैं बात कर रही थी कि कल मैंने प्रार्थना की थी कि गंगा माता से अगर आप थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे तो मौसम थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब आपको संतुष्टि मिलेगी, ये जो हीट स्ट्रोक है वो कम होकर के एटलीस्ट एक गर्मी वाला फील खाली देगा। तो आज का मौसम सेम टू सेम है, रात में हुई बारिश गोंडा में और ठंडक का एहसास भी हुआ, आंधी तूफान भी आया, लेकिन नुकसान तो मुझे नहीं लगता किसी का हुआ होगा। हमारी हर कपूर से सिवाय सविता जी के किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि भाई उनके छोटे मोटे प्यारे प्यारे पौधे थे जो कि उखड़ गए तेज हवा के कारण। तो ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ किसी का, लेकिन मौसम तब से काफी राहत वाला हो गया है और इस चीज के लिए मैं अपनी गंगा माता को बिल्कुल से धन्यवाद करूंगी। और आज के दिन का नहीं भैया दोपहरिया का, यानी कि आज के सेगमेंट का, आज के शो का आगाज मैं करूंगी माता गंगा का अनुसरण करके इस प्यारे से माता के भेंट के साथ में। तब तक आप भी सुनिए और अगर आपने भी ट्यून करवाना है अपने फेवरेट गाने को तो प्लीज से कॉल कर लीजिए, नंबर वही है 6393316429। फिलहाल के लिए हर हर गंगे।

जब भी हमें गर्मी लगी बस गंगा मैया इतनी कृपा करना कि थोड़ी सी बारिश करना और थोड़ा सा मौसम जो है खुशनुमा कर देना, ताकि आपके बच्चे तपती हुई गर्मी से थोड़ा सा निजात पा सके। इसी कामना के साथ अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड आई हुई हमारे पास में हमारे प्यारे लिसनर धर्मेंद्र मोहन भाटी जी की ओर से, जो हमें सुनते हैं आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से। आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से सुनने वाले सभी लिसनर का मैं खैर मकदम करती हूँ और चलते हैं इस प्यारी से बजरंग बली की भेंट की ओर। भाई आज जी हाँ ज्येष्ठ का मंगलवार भी है, तो एक तो भैया गंगा दशहरा, दूसरा जेठ का मंगलवार, चलिए मिलके मनाते हैं ये मंगल मंगल मंगल में मंगलवार।

जय जय बजरंगबली, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। लेकिन उससे पहले भाई हमसे एक सवाल पूछा गया। हमारे साथ में बने हुए तीरथ प्रसाद सोनी जी, और इनका कहना है भाई गोंडा में वाटर पार्क भी खुल गया है, कृपया करके एड्रेस बता दीजिए। तो भैया हमको कंफर्मेशन तो नहीं है, बट इतना जरूर पता है कि वो वाटर पार्क जो आपका खुला हुआ है उतरौला रोड पे मलारी चौराहा है शायद, या मलारी गांव के आसपास में है, और सोनी गुमटी से 3-4 किलोमीटर आगे पड़ेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पता एकदम से सही है, और वहाँ आप जा सकते हैं। जैसे कि मुस्तफ़ा जी भी कह रहे हैं कि भाई उतरौला रोड पर महादेव चौराहा के पास में। तो भैया मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन होल्डिंग हर जगह पर लगा हुआ है, आप किसी से भी पूछेंगे तो ये ज़रूर पता है कि मलारी गाँव पड़ता है, उसी के आसपास में है, और उतरौला रोड पर ही है, डेफिनेटली ये बात सत्य है। तो जिसको इस गर्मी में आनंद लेना है वाटर पार्क का, भाई आपके गोंडा में भी उपलब्ध है, और आज ही उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी रखी गई है 26 तारीख को ही, और बाकी आप सभी वहां जाके पता कर लेंगे बखूबी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और हमारे पास में बहुत सारे लिसनर्स भी जुड़ गए हैं। चलिए पहले ले लेते हैं आप सभी के मैसेजेस ही। तो मुस्तफा जी हैं सऊदी अरेबिया से, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, दरक्षा अंसारी जी हैं सीतापुर से, और तीरथ प्रसाद सोनी जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवाज बिकॉज कॉलोन गोंडा से, और इसी के बीच में कैफ मोबाइल जी भी आ चुके हैं गुड मॉर्निंग का मैसेज लेके। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड मॉर्निंग वाला। और इसके बाद में जो नेक्स्ट मैसेज है वो हमारी नीना जी का है, और बड़ी प्यार से बड़ा प्यारा सा मैसेज इन्होंने भेजा है। फिलहाल इतना प्यारा मैसेज मैं हर किसी को नहीं सुनाऊंगी, अपने दिल में ही रखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला मैसेज। और हमारे सुहागपुर बाजार में भी चल रहा है भंडारा। हाँ जी, तो आजकल थोड़ी थोड़ी दूर पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सड़क इस पार ससुराल, सड़क उस पार नैहर, और ये दोनों में ही आप कहीं भी बैठ के खा सकते हैं लंगर। हाँ, ऐसा वाला सिचुएशन चल रहा है, और बखूबी काफी सारी जगहों पर भंडारा चल रहा है। अब्दुल मजीम जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और जी, और हमारे धर्मेंद्र जी का भी ये कहना भैया प्रसाद ग्रहण करते हुए जाइएगा। और अब्दुल मजीम साहब कहते हैं, कौन कहता है कि फासले मिटाए नहीं जाते, अगर दिल साफ हो तो नफरत के साए भी पास नहीं आते। बिल्कुल सही आपने कहा, अगर सामने वाला दूर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा दिल उसके लिए साफ था, साफ है, साफ रहेगा, और फासले फिर हो ही नहीं सकते, क्योंकि दिल में सफाई है, सच्चाई है, और आंखों में भी अच्छाई है, और कर्मों में भी साथ साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम नाम की पगली जी हमारे बीच में आ गई हैं, आपकी भी एंट्री हो गई है, और अपना हालचाल जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप बहुत अच्छी होंगी हमेशा की तरह, आपका भी स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। और कमल नैन जी भी आ गए भैया, मल्हारी गांव के पूर्व। ओके, मल्हारी गांव के पूर्व, मल्हारी नहीं, मल्हारी गांव है भाई, नाम तो सही लिखिए जनाब, और कोई बात नहीं। और इन्होंने भी बता दिया भैया कि कहाँ है पता। और इसी के बीच में आ गए हमारे मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी, आपको भी गुड आफ्टरनून सर। और अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, सीतापुर से आई हुई हमारी प्यारी प्यारी प्यारी दरक्षा जी की डिमांड। आइए एंजॉय करते हैं इस डिमांड को, फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में आपके 3 से 4 के सफर में। मैं आपके होस्ट चंदू तारजा आकांक्षा, आपने ट्यून करके रखा है रेडियो 88.6 FM पे आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि फोन इन फरमाइश कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा। एंजॉय द ट्रैक।

दोस्तों, रीना शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ गई रुड़की उत्तराखंड से, और सभी के लिए इन्होंने बजरंगबली से प्रार्थना की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आरसीएम से बल्लू पांडे जी भटवी से जुड़ चुके हैं, कहते हैं कि भैया आज कुछ भी नहीं, आज बस ये जान लीजिए मलमास चला, भोलेनाथ की जय करिए। तो हमने कर दिया है भोले भंडारी की जय, और अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से जिसको जो पसंद हो चूज कर लीजिए। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए।

जी दोस्तों, तो अभी हम बढ़ेंगे दरक्षा अंसारी जी की डिमांड के बाद में नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारी सभी हज की और साथ ही साथ में इंडिया वाले देवी प्रसाद जी की। गाना बहुत खूबसूरत है, रोमांटिक सा सॉन्ग है, मूवी है मैंने प्यार क्यों किया, किया किया किया किया, आखिर में किया तो फिर कर लिया, बिना सोचने का क्या यार। एंजॉय करिए इस ट्रैक।

हाँ जी, अभी आपने देवी प्रसाद जी और सभी हज की डिमांड पे प्यारा सा नगमा सुना और एंजॉय भी किया, और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। इससे पहले कि हम नेक्स्ट डिमांड की ओर आगे बढ़े, हम आपको बता देते हैं हमारे साथ में जुड़ गए हैं एमपी रीवा से हमारे प्यारे लिसनर डेट्स कुमार साहब। और कुमार साहब, अपना हाल चाल जरूर बताइए, आपका एक प्यारा सा चेहरा बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमारे गोंडा का मौसम तो सुना थोड़ा सा मतलब राहत वाला हो गया, क्या आपके एमपी की तरफ गर्मी में थोड़ी सी गिरावट आई या नहीं? बस इतना ही आपसे जानना चाहूंगी। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे सऊदीया वाले मुस्तफा जी की, और इन्होंने ये सॉन्ग हमारे बबलू जी के नाम भी किया है। तो इन दोनों के नाम ये प्यारा सा सॉन्ग, आइए एंजॉय करते हैं आपके 3 से 4 के सफर यानी के कॉलर ट्यून गोंडा।

जी हाँ दोस्तों, इस गाने से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी सुन सुन के, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाला सॉन्ग। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है समायरा जी की, जो मैं सुन रही हूँ इमाम बाड़ा से, और ये गाना है जो उसको हम डेडिकेट करने वाले हैं हमारी प्यारी नीना जी को। नीना जी अगर आप सुन रही होंगी तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल आप भी अपने डिमांड्स के लिए कॉल कर सकते हैं 6393316429 पर, और ये खूबसूरत सा नगमा हमारी समायरा जी की ओर से, जो कि मैं सुन रही हूँ इमाम बाड़ा गोंडा से।

जी जब दिल दिया जाता है तो पूछ के नहीं दिया जाता है। हालात ऐसे होते हैं, नजरें गरम हो जाती हैं, ऊपर वाले की कृपा होती है जब मोहब्बत होती है। मोहब्बत बड़ी हसीन होती है, इसको मैला मत करिएगा। अगर कभी किसी से हो जाए तो उसको निभाइएगा, बस इतनी सी गुजारिश करती है आपकी अपनी आर्जे आकांक्षा आप सभी से। फिलहाल के लिए हमारे पास मैसेज आ गया है कुमार साहब का कि गर्मी की रुकावट की बात ना कीजिए। यूपी के बांदा जिले के पास ही रीवा पड़ता है, जो कि भारत का नहीं दुनिया का सबसे गर्म शहर इस समय है, और डेली भारत सरकार की ओर से सायरन बज रहा है कि भैया 10 से 4 के बीच में मन निकलेगा। वैसे शैलेंद्र जी आप भी बता सकते हैं, और शैलेंद्र जी भी आ चुके हैं खजुराहो एमपी से, कि आप एमपी में ही रह रहे हैं तो खजुराहो ज्यादा गर्म वाला जिला है या फिर बांदा। अब आप दोनों ही बताएंगे कि सबसे अधिक गर्मी कहां पड़ रही है।

भैया, लेकिन हमको सोचने पे मजबूर कर दिया हमारी रीना शर्मा जी ने। कहती हैं इनके गाने के बोल हैं, ये कली जब तलक मुस्कुरा के खिले तब तलक हो सकता है कि गर्मी थोड़ी कम पड़ जाए। भाई क्या हसमुख मतलब प्रवृत्ति के हमारी शानदार लिसनर हैं, और इतना मजा आ गया इनसे बात करके कि हम बता भी नहीं सकते। दीपक जी आ गए फिलहाल के लिए हथियागढ़ से, और हमारी हाथी आज तक नहीं आई है, लकड़ी वाली, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा होता था, लेकिन हम बस हाथी चाहते हैं आपसे। फिलहाल ये मजाक है, और बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और डिमांड किसकी है? डिमांड है हमारे प्यारे लिसनर यानी कि विनोद भरद्वाज जी की, जो हमें सुनते हैं जयपुर से। चलिए जयपुर से मंगाया है एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय करिए 30,000 के सफर में ये प्यारा सा नगमा।

0: ना गर्मी है आपके राजस्थान में, ना एमपी में है, ना ही अहमदाबाद में है, ना ही गोंडा में है, ना ही कहीं और। गर्मी तो भाई इट्स कुमार जी की बातों में है, कह रहे हैं कि गर्मी वहाँ है जो दिन भर में कम से कम 8 दफ़े नहा रहा है, वरना गर्मी नहीं है। हो सकता है पसीने से नहा रहा हो सकता है बाल्टी के पानी से नहा रहा हो सकता है कि बीवी की डांट से भी नहा रहा हो। क्या गजब की लाइन आपने मार दी है भाई, दिल खुश हो गया। और इसी लाइन के साथ आगे बढ़ेंगे इसी वाले नगमे की ओर, जो कि विनोद भरद्वाज जी की डिमांड फ्रॉम जयपुर।
1: अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी

बोल, क्या बात भाई, प्यारे प्यारे बोल ही रह जाते हैं जो याद आते हैं, वरना फिर इंसान चला जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ सिचुएशनल है दोस्तों। इसलिए जब भी रहिए, जहां भी रहिए, जैसे भी दीजिए, प्यार और मुस्कुराहट दीजिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और डिमांड है हमारी प्यारी रुड़की वाली लिसनर यानी कि रीना शर्मा जी की। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके सुनील कुशवाहा जी की, फिर होंगे हमारे सहनवाज जी, और उसके बाद अब्दुल मुजीम जी और रमेश कुमार जी। क्या गाना है वाह।

भाई हमारे बीच में है हमारे प्यारे लिसनर, जिनका नाम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हमें सीतापुर से सुनते हैं और इनका नाम है प्रेम मौर्य जी। इनका कहना है, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? हम अभी हैं चेन्नई तमिलनाडु में, बहुत गर्मी है मैम, यहाँ पे तो 48 डिग्री सेल्सियस है चेन्नई और तमिलनाडु में। फिलहाल MP वाले प्यारे लिसनर्स हमें बताएंगे आपके उधर कितना डिग्री सेल्सियस है गर्मी।

हाँ जी, अपने टाइम का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा लवली सा रोमांटिक वाला सॉन्ग अभी आपने एंजॉय कर लिया है हमारे रीना शर्मा जी की डिमांड पे, जो कि हमें सुनती है उत्तराखंड से। और अभी बढ़ते हैं सुनील कुशवाहा जी की डिमांड की तरफ। इनका भी गाना काफी सुना जाने वाला है और काफी खूबसूरत भी।

इतनी गर्मी में पसीने से भीगा हुआ इंसान एसी चाह रहा हो जैसे, बस हम इतना ही चाहते, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहते हैं। और रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी भी हमारे साथ में इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। राधे राधे आपको भी।

चलिए बढ़ते हैं 3 से 4 के सफर में। मुझे ये भी याद आ गया कि 3:34 हो चुके बाय स्टूडियो क्लॉक। नेक्स्ट डिमांड की बारी आ गई है और ये डिमांड हमारे शहनवाज जी की। एंजॉय करिए। आपके लिए स्पेशली, क्योंकि जिंदा दिल इंसान आप ठहरे हमारे लिए।

हाँ जी दीपक जी, और क्या कर सकते हैं, शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर होता है और हो जाया करता है। हमको जो मिला हमने वही प्ले कर दिया। फिलहाल ये बहुत खूबसूरत सा रोमांटिक सा सॉन्ग आप एंजॉय कर रहे हैं शहनवाज साहब की डिमांड पे।

दोस्त आपके प्यारे प्यारे हो तो आपको उनसे प्यार करना बनता है। और लिखा है हमारे प्यारे लिसनर ने कि भैया आपने बिल्कुल सही बोला है, हाँ हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, हमें लग रहा है अभी लग रहा है आपके हाँ कहने पर कि बिल्कुल सही कहा। हालांकि 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, MP के 14 जिले कर्क रेखा में पड़ते हैं। इस समय सूर्य कर्क रेखा के लंबवत अर्थात बिल्कुल सामने होता है, इस वजह से इतनी गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल सही बात है। और मनीष शर्मा जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं खुरासा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। रू ओहो आहा क्या हो, क्या बात है भाई, क्या लाइन मारी है। लिखा है रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। नीना जी हम आपसे कभी नहीं रूठेंगे, परेशान ना होइए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड है हमारे प्यारे लिसनर अब्दुल मुजीम साहब की। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक के साथ में जो कि होने वाली है रमेश कुमार जी की। और ये गाना हम किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं क्योंकि गाना बड़ा प्यारा है। किसको करेंगे ये सोचने की बात है, एंजॉय करिए फिलहाल।

हैदरी या अली अली अली। अभी आपने इस प्यारी सी डिमांड को एंजॉय किया हमारे प्यारे लिसनर की डिमांड पे, जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से अब्दुल मुजीब साहब। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड आई हुई हमारे पास में किसकी, ये बताते हैं। ये आई हुई हमारे पास में रमेश कुमार जी की, जो हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं। और गाना भाई बड़ा ही प्यारा, मैंने सोचा किसी को डेडिकेट कर दें, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी एक को डेडिकेट करूंगी, आप सभी के लिए और मेरे खुद के लिए भी। भाई जब हम कभी कभी खुद को मिस करते हैं ना, तो हम ऐसे गाना सुनना पसंद करते हैं। आप भी सुनिए, एंजॉय करिए। Yeah.

यादों भरे नगमे में एक बात सामने आई है, और उस बात ये है कि हमारे प्यारे लिसनर जो कि अध्यापक भी हैं, उनका कहना है इमली कौन कौन खाना चाहता है, वो हाथ उठाने के साथ साथ में खुद भी खड़ा हो जाए। क्या बात मारी है, ऐसा लग रहा है हम क्लास में बैठे हुए हैं। और याद आ गई मुझे इमली चूरा।

9:42 घड़ी की सुइयां बता रही हैं, बस कुछ पल और है हमारे पास। तो हम आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे पास में आई हुई है मोनू जी की तरफ से। अगर मैं गलत नहीं तो ये हमें दिल्ली से सुनते हैं या फिर मुंबई से, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इनकी कॉल आएगी तो मैं जरूर पता करना चाहूंगी। फिलहाल ये बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी तक पहुंचा रही है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा इन द वॉइस ऑफ अलीशा चिन्ना। एंजॉय द ट्रैक, बहुत ही प्यारा सा गाना।

क्योंकि हम दिल वाले होने के साथ साथ में बहुत ही भोले और प्यारे भी होते हैं। इंडिया वाले जो ठहरे, क्या क्या लूट गया है हमसे, विदेशियों ने लूटा और ना जाने किस किस ने, फिर भी हम प्यार से आज भी अतिथि देवो भवाई करते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, हमारे पास में जो आई हुई है वो है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, और श्याम नाम की पगली यानी कि माता जी के नाम ये गाना करती है। आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और एंजॉय करते हैं इस प्यारे से बजरंगी के भजन को।

हाँ जी, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। लगातार हमने दो भजनों का आनंद उठाया है, सुरेंद्र यादव जी और श्याम नाम की पगली, और साथ ही साथ में अभिनव त्रिपाठी जी जो हमें सुनते हैं गायत्रीपुरम से, इन सभी की डिमांड पे। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि है निब्बर जी की डिमांड। और ये डिमांड आई हुई है हमारे पास में, जी हाँ, रेलवे क्रॉसिंग गोंडा से।

दोस्तों, ये गाना आपने अभी एंजॉय किया हमारे निपल जी की डिमांड पे, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर फटाफट से, क्योंकि वक्त हो चला है 3:51 शेष केवल और केवल 9 मिनट में पास में है। गाने अभी काफी सारे हैं, तो आगे बढ़ते हैं अजीज साहब की डिमांड की ओर। ओल्ड वाला जिहाले मस्की मुकुंदा रंजेश बहारे, बाकी गाना आप खुद ही सुन लीजिए।

जी हाँ, ये दो सॉन्ग आपने एंजॉय कर लिया है हमारे मोहम्मद अजीज साहब के डिमांड पे, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड भैया उन सभी नन्हे मुन्ने नौनिहालों के लिए है जिनको ये गाना काफी पसंद आने वाला है। अविरल त्रिपाठी जी की डिमांड है भाई डोरेमोन का टाइटल ट्रैक प्ले किया जाए। और अगर हमें श्यामा जी सुन रही होंगी, यानी कि हमारे राम नरेश तिवारी जी के घर से नन्ही सी गुड़िया, और आप सभी के घर पे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, तो बस मुझे अच्छा लगेगा उन सभी के लिए ये गाना प्ले करते हुए। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक लेके।

जी तो ये टाइटल ट्रैक अभी आपने डोरेमोन का एंजॉय किया हमारे अविरल त्रिपाठी जी की डिमांड पे, और अब हम बढ़ेंगे रीत लाल जी की डिमांड की ओर। गाना बेहद खूबसूरत, हर एक लड़की के दिल में बसने वाला गाना, बहुत प्यारा सा गाना।

जी दोस्तों, और आज जिन जिन की डिमांड रह जाएगी उनका नाम बताना चाहूंगी। निशा जी और पटेल नगर से। इसके बाद में नेक्स्ट डिमांड जिनकी छूटेगी वो होंगे हमारे मुमताज अंसारी साहब, उसके बाद होंगे हमारे नेक्स्ट खुशी जी और शशि जी। इन चारों की डिमांड आज हमसे छूट जाएगी। सो सॉरी, वक्त कम।

बात भाई, मजा आ गया सुन के। रीतलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी सी डिमांड थी आपकी, और लगातार इन्होंने कई दिनों से यही सॉन्ग की डिमांड की और इनकी डिमांड रह जाती थी, और आज फाइनली मैंने इसको प्ले किया। मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। अब्दुल रासी साहब का डिमांड है और ये डिमांड भी बड़ा ही प्यारा है। इसके बाद लास्ट डिमांड लेंगे हम अपने प्यारे लिसनर एहसान।

साथ चले जिसपे तू वो डगर चाहिए। और इस डगर को अब आखिरी समर्थन देते हुए, मतलब कि आखिरी गीत की ओर बढ़ते हुए, आपकी अपनी आर्जी आकांक्षा और ले चलती आपको एहसान जी की डिमांड के ओर। और अब यहीं से करते हैं आप सभी से बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो 90.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। ख्याल रखिए, राधे राधे।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर

0: करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: डिलीशियस
6: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
0: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। और आपके साथ मौजूद है आपके अपने आरजे बिना, आपके शो विज्ञान शाला, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरोसिटी, यानी कि क्यूरोसिटी के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं विज्ञानशाला में। और विज्ञानशाला की बात अगर करूं तो सबसे पहले तो मुझे याद आ जाता है अभी हाल ही में बीता आपका और हमारा फेवरेट डे, यानी कि अर्थ डे, हमारी अर्थ डे यानी कि मदर अर्थ डे, जितने भी नाम लूँ उतने कम है। और इस डे को लेके बहुत सारी जगह अलग अलग काम किएगा, और हम सब ने भी पेड़ पौधे तो लगाए ही होंगे, लेकिन पेड़ पौधे लगा देने मात्र से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। समस्या का समाधान तब होगा जब हम समस्या ना बनाएं, यानी कि समस्या सबसे बड़ी है पृथ्वी के लिए प्लास्टिक और पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के लिए तो हम बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, व्हीकल कम कर रहे हैं, व्हीकलों को हम ईंधन के रूप में ना चला, ईंधन से ना चला करके हम इसे सोलर पैनल्स यानी कि सोलर ऊर्जा से चलाएंगे, सोलर एनर्जी से चलाएंगे, तो पोल्यूशन जो है वो कम होगा। तो ये तो पोल्यूशन की बात होगी। और क्या है जो हमारी मदर अर्थ को प्रभावित कर रही है, और क्या है जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है? वो है प्लास्टिक। और प्लास्टिक को लेके मैं अगर अपने गोंडा शहर की बात करूँ तो बहुत सारे विद्यालयों में, जैसे स्पेसिफिकली मैं सेंट जेवियर स्कूल की बात करूँगी, उस स्कूल में मैंने देखा कि बच्चे जो हैं इको ब्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मतलब ऐसा नहीं खर्चा करके बनाते हैं, उन्हें जहाँ भी कहीं प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई मिल जाती है वो उससे इको ब्रिक्स बनाते हैं। बहुत बढ़िया, वहाँ के मतलब जो भी टीचर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, उन सभी ने एक अच्छी सोच को जागृत किया। और मैंने सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ कि आपके भी घर में अगर बोतलें आ रही हैं तो उसको इधर उधर ना फेंके। और इसी के साथ अब ब्रिक्स बनेंगी कैसे? आप सोचेंगे जब सीमेंट यूज ही कर लिया, मिट्टी यूज ही कर ली, तो ब्रिक्स कैसे बनी? नहीं, बाद मजबूती की आ जाती है ना, तो ब्रिक मतलब मजबूत होनी चाहिए। तो उसे मजबूत करने के लिए देखिए प्लास्टिक को प्लास्टिक से ही मजबूत किया जा रहा है। आपके घर में चिप्स के रैपर, पैक्ड मटेरियल तो आता ही है, आजकल तो दालें वगैरह भी प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक होके आती हैं, मतलब एकदम एयर टाइट। तो उन प्लास्टिक की पन्नियों को आपको इकट्ठा करना है और उसको बारीक बारीक मतलब सीजर से काटना है। जैसे घर में आप फ्री बैठे हैं तो थोड़ा सा काटिए, अगर हम दिन में 15 मिनट भी निकालें अपनी मदर अर्थ के लिए तो बहुत होगा। उसको बारीक बारीक काटना है और काट के उस बोतल में भर देना है, और बोतल में तब तक भरना है जब तक बोतल एकदम टाइट ना हो जाए, एयर टाइट मतलब फुल, कि अब जगह नहीं है सांस लेने की, तो उसको फिर ढक्कन लगा के बंद कर देना है। ऐसे करके कई सारी आप बोतलें बना लेंगे, और जब भी कहीं घर बन रहा है या कुछ बन रहा है, मान लीजिए घर के बाहर आपको पायदान बनवाना है, तो ईंटों की जगह उनका यूज़ करके सीमेंट में उन्हें जमवा सकते हैं। ब्रिक तो ईंट तो टूट भी सकती है कुछ भारी चीज़ में, ये ना टूटेगी ना कुछ होगा, बल्कि मजबूती की मजबूती, और प्रदूषण से हम बचेंगे। और ऐसा तो है ही, जोड़ना बनाना बिगाड़ना तो लगा ही रहता है हमारे घर में। गार्डन में हम लोग देखिए ईंटों की वो बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं, क्यारी की क्यारी को ईंटों की जगह बनाने के हम प्लास्टिक इन बोतलों से क्यारी बना सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब देखिए बात करेंगे कि जो हमारे हाल ही में हो रहे सर्वेक्षण है उनमें क्या बात हो रही है, तो आज बात करूंगी इसके बारे में भी, और बहुत सारे पहलू मैं आज आप लोग के साथ चर्चा करने के लिए लाई हूँ। मतलब बहुत सारी बातें, कहते ना कि विज्ञानशाला में आके जो लर्निंग है वो क्यूरोसिटी को भी और बढ़ा देती, जितनी क्यूरोसिटी के साथ हम लोग आते हैं उस क्यूरोसिटी में भी इंटू 100 हम करके तब जाते हैं कि अगली बार ये चीज़ें बात होंगी। तो जैसा कि हमने मदर अर्थ डे 22 को सेलिब्रेट किया, आज बात भी हो रही है थोड़ी बहुत, और बात के साथ साथ हम लोग देखिए चर्चा कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली मलेरिया डे भी था, वर्ल्ड मलेरिया डे अभी जल्दी गया है 25 तारीख को। और इसी के साथ मैं आज एक देश की खास चीज़ को लेके आई हूँ कि आयुष्मान दिवस क्या होता है, ये भी बताना है मुझे आप लोग को। तो बहुत सारी बातें होंगी, तो आज जुड़े रहिएगा इन सारी बातों को सुनने के लिए। और सबसे पहले हम लोग एक गाना सुनते हैं, और गाना सुनने के बाद आप लोगों से बात करते हैं आगे किस लेवल पे हमारी ग्लोबल वार्मिंग पहुंच रही है और पृथ्वी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
8: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
11: तो वापस से आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला में, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरोसिटी। और जब क्यूरोसिटी की बात होती है तो हम लोग की जो जिज्ञासा है ना, वो कहीं दूर पहुंच जाती है कि अब और क्या जानेंगे, अब और क्या सीखेंगे और क्या क्या हम इस दुनिया को बताएंगे। तो जब दुनिया को बताने की बात होती है, तो जब पृथ्वी के लिए हम सोचते हैं तो दुनिया क्या, हर इंसान एक कश्मकश में आ जाता है कि आने वाले समय में पृथ्वी की उम्र कितनी बची है, क्या पृथ्वी हमारे आने वाली जनरेशन्स को अपना वही प्यार देगी जो उसने हमें दिया है। और देखिए, बढ़ती हीट वेव का भी कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी को पहुंचता नुकसान है। देखिए हमारी माँ को अगर नुकसान पहुँचेगा, मतलब हमारी पृथ्वी माँ को नुकसान पहुँचेगा, तो इंसान तो परेशान होता ही जाएगा। और गर्मी के मौसम में बहुत सारी मौतें शरीर में पानी कमी होने की वजह से हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं और उन कारणों को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। और सच्ची बताऊँ ना, मतलब दिल दहल जाता है सोच सोच के कि कैसे कैसे कैसे हम अपनी पृथ्वी को आने वाले समय में बचाएंगे। मन तो करता है पृथ्वी को एक चादर पहना दूं और आती धूप की किरणों से और आने वाले जितने भी, मतलब परेशानियां उन सबसे बचा लूं, लेकिन क्या करें, हमारी जो विज्ञान है वो भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। और हम तो इतना तक सोच रहे हैं कि धरती के साथ साथ और भी हम प्लैनेट्स पे अपने जीवन के लिए सोचें, क्योंकि धरती पे जब भार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी बढ़ेगी ना। तो सारी चीज़ें सोचते हुए विज्ञान भी बहुत कोशिशें कर रहा है पृथ्वी को बचाने की, और हम भी इस कोशिश में लगातार योगदान दे रहे हैं। और इस योगदान में हम ही नहीं, और आने वाले समय में भी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, चाहे वो जलवायु हो, मौसम हो, और पृथ्वी का बदलता मौसम है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी यहाँ के जलवायु की, कैसे पृथ्वी को जलवायु प्रभावित कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि यमन का नाम तो आपने सुना ही होगा। यमन के लाल सागर के तट पर बसे कॉफी के व्यापार में एक मशहूर मोचा शहर नाम का जो है वो मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बह के चला गया। कहते हैं वहाँ मोचा नाम का जो चक्रवात आया था उसने सब कुछ बहा दिया था। और ये एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। इसी के साथ हमारे यहाँ भी आए दिन कभी कोई बाढ़ का केस बिहार में सुनने को मिल जाता है, कभी हुदहुद नाम के तूफान आ जाते हैं और तहलका मचा देते हैं, तितली, ना जाने कितने तूफानों के बारे में हम लोग भी जानते हैं। और जब बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने 2020 में ही स्वीकार किया है कि पृथ्वी को आने वाले समय में समस्याएं बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी, और ये समस्याएं आगे बढ़ते तापमान की वजह से हो सकती हैं, बदलते जलवायु की वजह से हो सकती हैं। तो अब मैं बात करूंगी संयुक्त राष्ट्र जो कि आपदा न्यूनीकरण एजेंसी चलाते हैं, उन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से चक्रवाती तूफान को लेके बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता रखी हैं। लेकिन क्या सिर्फ बात चक्रवात पे रुकती है? नहीं, सूखा, बाढ़, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं हमारे पृथ्वी के परेशान होने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि पृथ्वी का बदलता ये रूप, इसके जिम्मेदार कौन है? हम सब, एवरीवन, जितने भी लोग हम सब सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, वो जो इस दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, सब सब सब सब रिस्पॉन्सिबल हैं, सिवाय बेजुबान जानवरों के। उन्होंने कभी पृथ्वी को क्षति तो नहीं एटलीस्ट पहुंचाई। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों, शेर तो जानवरों को खाता है? नहीं, वो एक फूड चेन को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें, तो ग्लोबल वार्मिंग का भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, और ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे आने वाले समय में जो ग्रीष्म ऋतु है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण जो है उसका दर बढ़ चुका है। इससे वातावरण में नमी की मात्रा की वृद्धि हुई है, और भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा की जो है वो तीव्रता से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं, कई स्थानों पर चरम वर्षा की घटनाओं की वृद्धि हो सकती है, और कहीं कहीं तो सूखा मालूम पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कैसे हम बचा सकते हैं अपने ग्रह को। तो पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, प्लास्टिक से अपनी पृथ्वी को बचाएं, और आने वाले समय में जितने भी लोग हैं जिनसे कि उम्मीदें की जाती हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब लैंड एरिया, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लैंड एरियाज हैं जहाँ पे हम पेड़ लगा के अपने देश को, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। और अगर मैं गर्मी के मौसम की बात करूँ, तो हीट वेव के लिए भाई सबसे बड़ा कारण जो है ये वायुमंडल में बदलती ऊष्मा की किरणें, जो कि तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं और पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ा रही हैं। और इसके पीछे कारण है हमारा बढ़ता हुआ प्रदूषण, पेड़ पौधों की कमी, जो कि सूरज की किरणों को काफ़ी हद तक यूज़ कर लेती थी, यूटिलाइज़ कर लेती थी, और धरती को गर्म नहीं होने देती थी। तो धरती की जो ऊष्मा है वो तो बढ़ेगी जब पेड़ नहीं होंगे इन वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो पेड़ लगाइए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए, प्रदूषण कम करिए। और देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि पृथ्वी को बचाना है, ना कि सिर्फ चलाना है। आप लोग सिर्फ, मतलब मैं कहूँगी कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए परेशान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस को चलाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पृथ्वी को बचाना। जिएंगे तभी तो इतने सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, इतने सारे गैजेट्स यूज़ करेंगे, नहीं तो क्या ही करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे पृथ्वी की, लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगी मलेरिया की। जी हाँ, मलेरिया नामक बीमारी जो है उसने बहुत सालों में बहुत लोगों की जान ली है, लेकिन आप सभी को पता है ये होती कैसे है। तो मैं थोड़ा सा मलेरिया पे भी प्रभाव, मतलब आज की शाम जो भी है इसमें, आज लर्निंग बियॉन्ड जो क्यूरोसिटी की बात हो रही है, तो लर्निंग वही है जो भी करंट चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हमें पूरा ज्ञान हो। तो मैं मलेरिया के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन मच्छर के ही काटने से बस नहीं होता है। मलेरिया जो है वो एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। चलिए, जिसको जिसको पता है आप जल्दी से मुझे आंसर करें, मतलब जल्दी से चैट रूम में आंसर करें। मैं चाहूँगी कि आप सभी आज जानें कि मलेरिया के पीछे का असली कौन गुनहगार है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो सबको पता चलेगा कि मलेरिया नामक बीमारी लाने वाला है कौन। तो मैं दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि भाई मलेरिया जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। ये सबसे पहले तो हमारे रक्त पे प्रभाव डालती है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को मैं जागरूक करती हूँ मलेरिया के बारे में कि मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर जो है यहाँ पे वेक्टर का काम करता है, यानी कि संक्रमण करता है, ये फैलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मच्छर को हमें रोकना है। क्या करना है, मच्छर को जन्म देने वाले जो एरिया है, यानी कि पानी जहाँ रुकता है, जहाँ पे मच्छर ब्रीडिंग कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, उस जगह को साफ सुथरा रखना है। पानी नहीं जमा होना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोएं, ठीक है। फुल बाजू के छोटे बच्चे हैं तो घर में फुल बाजू के उन्हें कपड़े पहनाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। तो सफाई अगर होगी तो कोई भी बीमारी हमारे पास वैसे ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ध्यान रखते हुए थोड़ा सा खुद ही नहीं एक्टिव होना है, आसपास के लोग जिनको इसकी जानकारी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको जागरूक करना है आप सभी को। तो अगर साफ सफाई होगी तो निश्चित तौर पे मलेरिया क्या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे आसपास नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूँ कि मलेरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मलेरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। ये दो ऐसे, मतलब कह सकते हैं, प्रोटोजोआ हैं जिनसे ये बीमारी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रोटोजोआ है, इसको ऐसे समझते हैं ना कि ये वो दोस्त है जो दो लोगों के घर रह के गुजारा करता है। मतलब इसने रेंट पे रूम नहीं लेना है, अपना रूम नहीं लेना है, दो लोगों के घर रह के अपनी ज़िंदगी चलानी है। मतलब कि ये आधी ज़िंदगी अपनी मच्छर के मुंह में बिताता है, ठीक है, उसके गट में जाता है थोड़े दिनों के लिए, फिर बाकी आके हमारी लीवर की सेल में रहता है, और वहाँ जाके हमारी RBC को नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमारी प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है, हमें बहुत ठंड लगती है, चिलिंग फीलिंग आती है, और साथ में फीवर बहुत ज़्यादा आता है, सर में दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे लक्षण हैं, और ये जो है ये मच्छर के मुंह में अपना रिप्रोडक्शन पूरा करता है और हमारे अंदर भी रिप्रोडक्शन करता है। मतलब ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से करता है, यानी कि बड़ा खतरनाक जीव है, दो लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर डालता है। फिलहाल हम इसको कुछ ही नहीं बोल सकते भाई, ये तो भी अपना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो इनको भी ज़िंदा रहने के लिए एक मुलाकात करनी है मच्छर से और एक इंसान से। तो इनको मुलाकात करने ही नहीं देंगे हम, पानी रुकने ही नहीं देंगे, हमारे पास इनको आने ही नहीं देंगे। और सबसे खास बात कि हर मच्छर से नहीं होता है, लेकिन अब आप सोचेंगे हर मच्छर से नहीं होता तो आर जमीना क्या गारंटी वो मच्छर मेरे घर आए नहीं आएगा। वो नहीं भाई, मच्छर का कोई पहचान तो आप कर नहीं पाएंगे, लेके बैठे तो है नहीं, कि आप टेस्ट करें कौन सा मच्छर कहाँ है कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको मच्छर को ही पैदा होने से रोकना है, ठीक है। तो मैं एनोफिलीज नाम का मच्छर है और ये एक मादा मच्छर है यानी कि फीमेल मॉस्किटो है। अब फिर कहेंगे कि लड़कियाँ जो है ना परेशानी करती हैं, तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इस बात के बाद मैं आगे बात करना चाहूँगी आप लोगों से एक और ख़ास चीज़ की, जिसके बारे में आप सभी जानने के लिए हैं बिल्कुल परेशान। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन गन सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आप सुन रहे हैं शो विज्ञानशाला, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। और अभी थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे बहुत सारी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छाव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: तो वापस से आप सभी का स्वागत है भाई। और जैसे कहते हैं ना कि आज मैं नॉलेज का भंडार लेके आया हूँ आपके लिए। बिल्कुल। तो देखिए, जानेंगे नहीं तो क्यूरोसिटी कैसे नहीं मतलब आप लोग को परेशान करेगी। तो जानकारी रहेगी तभी और क्यूरोसिटी आएगी और हम पहचान पाएंगे और खोज करेंगे कि भाई एनोफिलीज मच्छर कौन है, क्यूलेक्स कौन है, और दोनों को पकड़ के उससे पूछेंगे क्यों, आखिर क्यों क्यों हमें तुम काटते हो। क्यों नहीं तुम वेजिटेरियन हो जाते हो। वेल, आगे बात करेंगे भाई। उसका टेस्ट, उसको खून अच्छा लगता है। तो विज्ञानशाला में आज बात हुई मलेरिया की और हमने बात की हमारी प्यारी मदर अर्थ की। और अब मैं बात करने वाली हूँ आयुष्मान भारत दिवस की। मतलब आप कहेंगे ना आज आरजे बिना एकदम पैकेज। यस, आज बहुत कुछ बताना है मुझे आपको। जैसे कहते हैं ना कि अब बहुत सारे लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होंगे, हो सकता है इसमें से कोई सवाल आके आपका दिमाग पंचर करने का सोचे, लेकिन आपको पहले से जानकारी है और आपका दिमाग पंचर हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए, 30 अप्रैल को मनाते हैं हम सभी ये दिवस। और ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों इम्पॉर्टेंट है चलिए जानते हैं। तो पहले बताऊँ, पूरे देश में 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। और आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड वार्ड भी बनाया होगा ना, तो आज जानकारी पूरी दूंगी। तो एक ऐसा दिन जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज में जो वंचित मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता से पहुँचाने की और गुणवत्ता पूर्ण सुविधा। मतलब देखिए, सुविधा एक होती है, एक होती है गुणवत्तापूर्ण सुविधा, वो पहुंचाने को बढ़ावा देने के लिए मतलब और मोटिवेट करने के लिए ये दिन बनाया गया। और ये दिन सबसे पहले 2018 में शुरू किया गया, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है। तो ये दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस का जो उद्देश्य है वो समझिए कि 12 करोड़ से अधिक जो गरीब और संवेदनशील परिवार हैं, सेकेंडरी या कह सकते हैं कि माध्यमिक वर्ग के जो लोग हैं या तृतीयक यानी कि टर्शरी वर्ग के लोग जो लोग हैं जिनको देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए कभी भी कोई मतलब आर्थिक आवश्यकता हो तो वो परेशान ना हो, तो उन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष

वो मतलब आश्वासन के साथ आपका इलाज होता रहे। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। ठीक है, कैसी घोषणाएं? 2024 से 2026 के बीच में ये घोषणाएं की गई हैं। 70 वर्ष की आयु तक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आय की परवाह किए बिना योजना के तहत 5,00,000 रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। क्योंकि देखिए 70 साल का इंसान जो है वो स्वास्थ्य तो उसका इतना साथ नहीं देगा कि वो कुछ कर सके। हाँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो उनके लिए है ये। ठीक है, अगला है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ये भी बनता है इसी के अंतर्गत। 70 से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिकों का जो कहते हैं ना डेटा है उनको आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जाता है जो कि लोगों के एज के अकॉर्डिंग लागू किया जाता है और उनके परिवार में जितने भी 70 वर्ष से कम आयु के सदस्य हैं उन सभी को एक कवरेज के लिए साझा नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जितने भी 70 के अबव हैं वही ऐड किए जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी कि इसमें इम्पॉर्टेंट किन लोगों को मतलब किनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस योजना या इस दिवस के जो कहते हैं ना कि पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खास तौर पे इस योजना का फ़ायदा मिलता है कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी और ऐसे कई गंभीर जो बीमारियाँ हैं उन सबको मिला के लगभग 70,000 से अधिक एम्पल जो कहते हैं ना सूचीबद्ध अस्पताल हैं जिनमें इन सबको कैशलेस और पेपरलेस इलाज करने की सुविधा दी जाएगी। मतलब आपको कोई पेपर नहीं करना है, अगर आपको बीमारी है आप सीधे जाइए, आप जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन है उसको कराइए और शुरू कर दीजिए अपना इलाज। तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं अगर मिल रही हैं आपको एक ही छत के नीचे और एक ही सुविधा से, तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी अगर हो तो कई बार हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जो बताया आपको कि फिर से आप लोग जान लीजिए कि आपको अगर इसमें आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कोई मान्य सरकारी या सरकार का दिया हुआ कोई भी कार्ड, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या कोई ऐसी आईडी जो इसके अलावा आपका जो होता है क्या कहते हैं वोटर आईडी के साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे पर्सनल कार्ड्स होती हैं जो आपके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका आ जाता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में जैसे आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यूटिलिटी बिल, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपका निवास का प्रमाण पत्र आपको प्रमाणित करने वाला कुछ होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक जाति गणना यानी कि SECC प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। हालिया पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। राज्य अथवा केंद्र द्वारा निर्देशित अन्य दस्तावेज भी जो आपके साथ लागू होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब आपके पास ये होगा कि क्या BPL वाले भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, BPL वाले लोगों के लिए ही है ये, बिलो पावर्टी लाइन वाले। ठीक है, प्रतिवर्ष आपको 5,00,000 रुपए का जो कवरेज मिलेगा अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, 5,00,000 तक का खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मौजूदा बीमारियां हैं उन सब का इलाज इसके अंतर्गत किया जा सकता है। और आपको क्या करना है, आवेदन जो है वो पोर्टल पे जाके आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी, अपना जितना भी डेटा है वो सारा सबमिट करना पड़ेगा। और जो इसका कहते हैं ना कि डेडलाइन है जो भी चीज़ों की वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें अगर ऐसे मिल जाएं, और सुविधाएं बहुत सारी हैं, हमें जानकारी का अभाव होने की वजह से पता ही नहीं होता। तो इस दिन को मोटिवेट करते हुए 10 करोड़ परिवारों को 5,00,000 का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवरेज अगर मिल रहा है तो क्यों ना उन 5,00,000 लोगों में वो सारे लोग भी हों जो मुझे सुन रहे हैं, जिनकी मतलब जो क्रेडिबिलिटी है, जो चाहते हैं कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें ये सुविधा मिल जाए। भाई देखिए, बीमारी और कह सकते हैं परेशानी कभी भी इन्फॉर्मेशन देके पहले से नहीं आती, तो हम अगर पहले से तैयार रहेंगे लड़ने के लिए तो हो सकता है कि हमारा हौसला कहीं भी ना डगमगाए। ठीक है, कई बार क्या होता है हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और घुटने टेक देते हैं बीमारियों के आगे, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना ABY समाज के जो जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के लिए है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, साल 2008 में UPA सरकार द्वारा लॉन्च किए

स्वास्थ्य बीमा यानी कि NHBY को भी आयुष्मान भारत योजना में मिला दिया गया। एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी को चीज़ों की और डीप जानकारी चाहिए तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और संकुचित दृष्टिकोण से हटाकर एक व्यापक और अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ाने का एक छोटा सा पहलू है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट हो और जितना भी मतलब जितना हो सके वो सरकार की तरफ से, आप ये ना सोचें कि हमारा कौन साथ देगा, आपका साथ आपका कार्ड देगा, ठीक है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में कच्चा मकान में रहने वाले परिवार हैं, परिवार में किसी वयस्क जो 16 से 69 साल के उम्र के नहीं हैं, परिवार की मुख्य एक महिला का होना ज़रूरी है, परिवार में कोई दिव्यांग का होना, अनुसूचित जाति जनजाति भूमिहीन व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर, ये वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी, कानूनी रूप से मुक्त, बंधुआ आदि स्वतः आयुष्मान योजना का जो है वो लाभ उठा सकते हैं और वो स्वतः ही मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली उनका नाम, कहते हैं ना कि उनका नाम आ गया, तो उनका अगर इसमें आ रहा है नाम कैटेगरी में जा रहे हैं वो, तो वो ऑटोमेटिकली कर दिए जाएंगे। तो ऐसी सुविधाएं जब मिलती हैं तो हमें भी लाभ उठाना चाहिए। और देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिस्कशन भी करने बैठ जाए ना तो पूरा दिन पूरी रात कम पड़ जाएगी। ऐसी ऐसी समस्याएं लोगों के पास होती हैं, बहुत पुरानी बीमारियों से लोग झेल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सही इलाज सही समय पे नहीं मिलता। बहुत सारे लोग मतलब मैं एक बीमारी की बात करूंगी कि एक बीमारी है जिसका नाम है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। पहले इंडिया में बहुत फैला था लेकिन इसका इलाज जब शुरू किया गया तो जड़ से ये बीमारी ख़त्म हो गई। और अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग टीबी का इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं और लाखों रुपए देते हैं। मैं बताऊं, कुछ 1,000 या 500 रुपए का खर्चा लगता है दवाइयों का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत बहुत रेयर वाली जो दवा होगी वो बाहर मिलेगी, बाकी आपके आने जाने का जो खर्च है हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल जाने का वो बस जोड़िए। इसके अलावा टीबी का मुफ्त इलाज होता है सरकारी अस्पतालों में। तो बिल्कुल आप जानकारी के अभाव में हैं अगर आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही, तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, हम लोग को सुनिए, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैट रूम में हमें या हमारी मेल आईडी पे या हमारे इंस्टा अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हम आपकी मतलब उन बातों पे चर्चा करेंगे और आपकी जानकारी जो है ना संपूर्ण रूप से आपको दी जाएगी। तो अब आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आप सुन रहे थे शो विज्ञानशाला आरजे वीना के साथ अपने अंदाज में यानी कि लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: जब
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

दिन भर की धूप के बाद ये एक शाम जो मरहम की तरह आई है, लगता है हवाओं में किसी ने सुरीली सी धुन बजाई है। कभी तूफान तो कभी शांति, हर अंदाज में नेचर ने अपनी मैजिक की छड़ी घुमाई है। पर वो जो हर दिन एक ही अंदाज में आपको समझते हुए आपके पास आ जाता है, वो है आरजे बीना, जिसने अपनी आवाज से आपको आवाज लगाई है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आपके साथ मौजूद है आपकी अपनी आरजे बीना। सो आप सभी को बता दूं कि आज है आपका, मतलब हमारे गोंडा शहर वालों के लिए स्पेशल डे, बिकॉज आज ज्येष्ठ माह का चौथा मंगलवार है और पूरे शहर में जगह जगह, मतलब कहते हैं ना कि भंडारे चल रहे हैं और लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा भक्ति और पॉजिटिविटी दिख रही है। लोगों के अंदर चैरिटी की भावना है, पॉजिटिविटी है, एंड ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि ह्यूमैनिटी अभी कहीं बाकी है। और इसी के साथ साथ आज मुझे, मतलब पिछले साल से एक परिवर्तन दिखा कि कई जगह सफाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहे लोग। मतलब जैसे अक्सर क्या होता है, भंडारे के बाद गंदगी इज़ मैंडेटरी, बट ये चीज़ इस बार मुझे थोड़ी कम दिखी। हाँ, दिखी, कई कई जगह दिखी, पर कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत सिविक सेंस हम लोग भूल जाते हैं कहीं कहीं, तो वो थोड़ा सा लैक था। लेकिन बहुत सारी जगह, मुझे बहुत सारी जगह ये दिखा कि हाँ, इस बार ये परिवर्तन है। फिलहाल आपके फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM को सुनने का समय हो गया है, क्योंकि गोंडा शहर की धड़कन जो कि रुकती नहीं है, 6:00 पे आरजे बीना के साथ गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला में आपके साथ सीधे ट्यून हो जाती है। एंड यस, अभी बज रहे हैं 6:18:22, और आपकी आरजे बीना आपसे करने जा रही बहुत सारी बातें, क्योंकि स्वागत कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं आपको आपकी ब्यूटीफुल सी इवनिंग में। और जैसा कि सूरज ढलने वाला है, क्योंकि गर्मियां अभी मतलब पीक पे जा रही हैं, और 25 मई से, जैसा कि हमारे वेदर डिपार्टमेंट ने बता दिया कि हमारा जो नौतपा शुरू हो रहा है, 9 दिन एकदम गर्मी के होते हैं, पर मतलब पर कल रात में जो मौसम था गोंडा शहर का और आसपास के कुछ क्षेत्र का, वो बता रहा था कि नहीं, नौतपा को हम मात देंगे इस बार, गर्मी को थोड़ी सी मतलब कहेंगे सांस लेने देंगे। तो वो मौसम हुआ, काफ़ी तूफान आया, बारिश तो हल्की थी, पर हाँ थोड़ा सा आज चैन मिल रहा लोगों को, जहाँ 42-43-44 डिग्री टेम्परेचर पे 47 तक की फीलिंग लोगों को आई, जो रोड पे चल रहे थे उन्हें लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा हीट वेव बहुत ज़्यादा थी, इंसान सिर्फ पानी पी रहा था, हाइड्रेटेड रह रहा था। और अभी मतलब उससे थोड़ी राहत आज मिली है, थैंक यू नेचर, नेचर को थैंक्स तो बोलना ही पड़ेगा। और कहते हैं ना कि जब सूरज ढलने लगता है तो परिंदे घर को लौटने लगते हैं, और एक वक्त आता है जब आते जाते लोग एक दूसरे से मिलते हुए अपने घर को मतलब कहते हैं ना कि एकदम टारगेट करते हैं कि घर पहुंचना है। लेकिन उस घर पहुंचने के सफ़र को सुरीला और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग बनाने का काम आरजे बीना का होता है। एंड यस, आपको पता है कि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे इज़ अ लव स्टोरी डे, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आज आपको एक प्यारी सी लव स्टोरी भी सुनानी है, पर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मैं नई भी लेके आई हूँ जो आपको बतानी है। अब आप सोचेंगे क्या बताने वाली हूँ मैं, हाँ थोड़ा सब्र रखें, तो कहानी भी होगी, कुछ खास बातें भी होंगी, कुछ रियल स्टोरी की, मतलब कह सकते हैं कि बात करेंगे, उनके हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज कहते ना, शाम की जो मौसकी है काफ़ी अच्छी है, चलिए इसको थोड़ा सा हाई एनर्जी की तरफ ले जाते हैं। थोड़ी लो एनर्जी से शुरू हुई शुरुआत आगे हाई बीट्स तक जाती है, एंड फ्रिक्वेंसी आपकी आपकी धड़कनों को बढ़ाती है। लेट्स एंजॉय द म्यूजिकल ब्रेक विद योर आरजे बीना, एंड यस आप सुन रहे हैं कुछ खास, डेफिनेटली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहो। और आरजे बीना के साथ आप सुन रहे हो स्पेशल शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला।

मोहब्बत अगर शाही हो, मोहब्बत अगर शाही हो तो ताज नहीं मांगती, दिल की सल्तनत में बस एक नाम मांगती है। ना सोने के महल ना हीरो का खजाना, सच्चे जज्बातों का बस एक फसाना। वो नजरें जो इज्जत से झुक जाएं कभी, वो बातें जो दिल को छू जाएं सभी। शाही इश्क का दस्तूर बड़ा निराला है, इसमें वफा का हर लफ्ज उजाला है। ना तख्त की चाहत ना ताज की ख्वाहिश होती है, बस साथ रहे उम्र भर यही गुजारिश होती है। जहां प्यार में अहंकार का नाम ना हो, जहां जुदाई का कोई पैगाम ना हो। एक इश्क जिसे कुर्बानी भी करनी पड़ती है, दिल के महल में हमेशा खुशियां नहीं बसती है। शाही वो नहीं जिसके सिर पर ताज हो, शाही तो वो है जिसमें सिर्फ वफा का राज हो। तो आज इस शाही अंदाज में मैं आपको एक राजा की लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो हमारे इतिहास के कितना की धूल के नीचे दबी हुई है। इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनको शायद उल्टा ही नहीं गया कभी, वो धूल में दबे के दबे रह गए और शायद धूल ही मान लिए गए। तो आज उस धूल की परत को मैं हटाते हुए एक लव स्टोरी आप तक पहुंचाना चाहती हूं। तो जितने भी लोग लाइव हैं सबको फिर से मैं याद दिला दूं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं शो गुंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला विद योर फेवरेट फ्रिक्वेंसी ज्ञान 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो आप लोग अगर लाइव हो जाते हैं तो जल्दी से चैट रूम में अपने अपनी प्रेजेंस हाय टाइप करके भेज सकते हैं, जिससे मैं आपके नाम अनाउंस करके बता सकूं कि कौन कौन कहानी जो है शिद्दत से सुन रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है, अलग पहनावा है, अलग कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, और उन्हीं के साथ अलग अलग कहानियाँ भी हैं। तो डाइवर्सिटी सिर्फ खाने पीने या पहनने या कल्चर तक नहीं है, कहानियों में भी है। कहानियाँ भी एकदम अलग अलग और काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली हैं। तो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ, आप गेस करेंगे कौन से स्टेट की कहानी है। चलिए आप लोग को एक छोटा सा मैं क्लू देती हूँ कि गाना मैं सुनाने जा रही हूँ, उस गाने को सुनने के बाद आपको गेस करनी है कि स्टोरी किस स्टेट से है। बट हाँ, एक हिंट ये है कि इंडियन स्टेट है, वो तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो एक हिंट ये है कि आप लोगों को कि जो मतलब स्टोरी मैं आज सुनाऊँगी, रियल स्टोरी है, वो किस स्टेट की होगी वो आपको गाना सुनने के बाद पता चल जाएगी। तो सुन के बताइएगा कि ये कहाँ का गाना है, ठीक है। और मुझे पता है कि गाना जैसे आप सुनेंगे तुरंत आप लोग चैट रूम में टाइप करना शुरू कर देंगे। फिलहाल गाना सुनिए और फिर बताइए, तब ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी कहानी आपको।

इस गीत को सुन के तो मुझे लगता है आपके दिमाग में नाम आ ही गया होगा कि आज की कहानी राजस्थान से है। जी हाँ, राजस्थान की भूमि वीरांगनाओं से भरी है, वीरों से भरी है। ना सिर्फ प्यार की कहानियाँ बल्कि बलिदान की भी कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं वहाँ की। और मैंने ढोला की कहानी भी आपको सुनाई थी एक बार, और उसी ढोला के लिए ये गाना बना था, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, जो अपनी पत्नी को भूल गया था। ठीक है, तो फिलहाल आज मैं ये कहानी नहीं, एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसमें राजस्थान की गरिमा छुपी है। राजस्थान की भूमि पर हजारों वीर और वीरांगनाएं हुए। इसी राजस्थान के इतिहास में कई वीर बालाएं हुई, और उन्हीं वीर बालाओं में से एक वीर बाला थी हाड़ी रानी। इनको बलिदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने ना सिर्फ अपने पति से प्रेम किया बल्कि अपने राज्य से भी प्रेम किया, और उस प्रेम को निभाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बलिदान जो इतिहास में शायद कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा बलिदान। रामायण में जिस प्रकार माता सीता ने श्री राम के लिए अपनी चूड़ामणि निशानी रूप में दी थी हनुमान जी को कि आप ये जाके दिखाना कि मैं यहीं पे हूं, वैसे ही इन्होंने भी अपनी एक निशानी भेजी अपने राजा के पास, और वो निशानी ऐसी हुई जो इतिहास में कोई भी पत्नी अपने पति के लिए कभी दे ही नहीं सकती। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह की कहानी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय दिल्ली के बादशाह औरंगजेब थे। इन दोनों के मध्य जो कहते हैं ना कि जो संबंध थे वो शुरू से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। औरंगजेब ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का जो राज्य था उसके नाबालिग पुत्र अजीत सिंह को ना देकर उस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था, और उसी को मिलाते समय उन्होंने अजीत सिंह को मारना भी चाहा था। तब जोधपुर के वीर दुर्गा

राठौर अजीत सिंह को महाराणा के संरक्षण में ले आए, जिससे औरंगजेब बड़ा क्रोधित हुआ। उसने महाराणा को अजीत सिंह को सौंपने के कई फरमान भेजे कि भाई तुम अजीत सिंह को हमारे पास भेज दो, क्योंकि वो उस राज्य को हथियाना चाहता था। पर महाराणा ने बिल्कुल भी नहीं सुना, बादशाह की आज्ञा की अवहेलना कर दी। और दूसरा कारण, दोनों के मध्य दूरियां बढ़ चुकी थीं। बादशाह किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहते थे, परंतु राजकुमारी एक मुगल से विवाह नहीं करना चाहती थी। अतः उसने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि या तो वो राणा सा उससे विवाह करके उसके धर्म की रक्षा करें, या फिर उसको मृत्यु का वरण दे दे। ये पत्र महाराणा ने पूरी राज्यसभा में सुनाया। निर्णय लिया गया कि राजकुमारी से विवाह कर लेंगे, उन्हें बादशाह से युद्ध करने, जिससे कि उन्हें बादशाह से युद्ध ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने तुरंत सलुम्बर के राव रतन सिंह को युद्ध में जाकर मुगल सेना को रोकने के लिए कहा। और राव रतन सिंह युद्ध में जाकर मुगल सेना को रोकने तो जाना चाहते थे, पर उसी समय उनकी भी, मतलब कहते हैं ना, जिंदगी का एक नया चरण शुरू हुआ था। अब कहानी आती है राव रतन सिंह की। सुलंबर मेवाड़ के एक क्षेत्र में इनका ठिकाना था, जिसके सामवंत चुड़ावत सरदार राव रतन सिंह थे। जब महाराणा ने उन्हें युद्ध के लिए बुलाया, तब उनका विवाह हाड़ा राजपूत की कन्या हाड़ी रानी से तय हुआ था और हो भी गया था। यहां मैं आपको बता दूं कि राजपूत जाति में ये प्रथा होती है कि स्त्री विवाह के बाद नाम नहीं बदलती, बल्कि वो अपने पिता की गोत्र से जानी जाती है। तो इसीलिए उनकी मतलब हाड़ा राजा के नाम से ही उनकी बेटी का नाम हाड़ी रानी पड़ गया, तो हाड़ी रानी के नाम से वो जानी जाने लगी। जहां महाराणा राज सिंह का पुत्र सलुम्बर पहुंचा, तब सलुम्बर में खुशी का माहौल था। खबर सुनकर एकदम से बदल गया कि युद्ध की तैयारी करनी है। अभी अभी रतन सिंह की शादी हुई थी रानी हाड़ी से, तो युद्ध का तुरंत, मतलब आप बताइए, आपके घर में कोई खुशी का माहौल हो, उसके बीच में कोई ऐसी खबर आ जाए जो कि मतलब परेशान करने वाली हो, तो खुशी कब मतलब दुख में तब्दील हो जाती पता नहीं चलता। तो कुछ ऐसा ही हुआ। राव रतन सिंह अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे। तब हाड़ी रानी ने उनका कुमकुम तिलक किया। अभी एक हफ्ता हुआ था हाड़ी रानी को अपने ससुराल आए। उनके पैरों के मेहावर का रंग नहीं हल्का हुआ था, हाथों की मेहंदी अभी भी लगी हुई थी, और तिलक करके उन्होंने युद्ध के लिए उन्हें विदा कर दिया। जब युद्ध के लिए रतन सिंह जा रहे थे, तो रानी झरोखे से उन्हें दूर तक देखती रही, सोचने लगी जिसके साथ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले विवाह किया था, जन्मों जन्मों का साथ दिया था, साथ देने का वादा भी किया था, उन्हें अब युद्ध में भेजना पड़ रहा है। बड़े दुखी थी वो, और इसी के साथ रतन सिंह भी बहुत दुखी थे। वो भी रानी के लिए, उनका जी मचल रहा था कि अभी तो मेरी रानी आई है, उन्हें छोड़ के आना अच्छा नहीं लग रहा था। अब इधर युद्ध में आके वो अपना, जो कहते हैं ना कि राजपूत धर्म निभा तो रहे थे, पर उन्हें बार बार रानी की याद आ रही थी। तो क्या लगता है कि रतन सिंह वापस अपनी रानी के पास आ जाएंगे या वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे? लेकिन कुछ तो था जो बाकी था। एक गाना सुनते हैं, फिर इसके बाद की कहानी आपको सुनाते हैं।

रतन सिंह युद्ध के मैदान में अपनी पत्नी की आंखों को याद करते थे, उनका अंदाज याद करते थे, उनके हाथों की खनकती चूड़ियां याद करते थे।

युद्ध का मैदान और रतन सिंह का प्रेम जो कि अपनी पत्नी के लिए बढ़ता ही जा रहा था। फिर युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी नवविवाहित पत्नी के लिए एक चिट्ठी भेजी और उन्हें यह भी चिंता हुई कि अगर उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी का क्या होगा। उन्होंने अपने सैनिक को बुलाया और कहा कि जाकर रानी को ये चिट्ठी भेज दें, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रानी अपनी कोई निशानी मुझे भेज दें जिससे वे युद्ध में जाने से पहले देख सकें और अपने मन को युद्ध में स्थिर कर सकें। जब यह सेवक संदेश लेके सलुम्बर पहुंचा तो उसने रानी की दासियों से रानी को यह संदेश देने को कहा और कहा कि इसका उत्तर जल्दी दें। जब रानी ने यह संदेश पढ़ा तो फिर सोचने लगी कि उनके पति उनके सौंदर्य और उनके प्रेम में अपना कर्तव्य से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं और अगर कोई वस्तु उन्होंने निशानी के रूप में रतन सिंह को दी तो दुश्मन से लड़ने के बजाय वे उस वस्तु को ही देखते रहेंगे और अपने राजपूती धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः इतना सोचने के बाद रानी ने दासी को थाल लाने को कहा और संदेश लिखते हुए कहा कि इस थाल को राव जी के अलावा कोई भी कपड़ा हटाएगा नहीं। इतना कहकर रानी ने तलवार ली और अपना सर काट दिया और सीधा उस थाल में रख दिया। सेवक उस थाल को जल्दी जल्दी रतन सिंह के पास लेकर पहुंचे। उस थाल को देखकर राव की आंखें फटी की फटी रह गईं। सेवक ने रानी की निशानी देते हुए कहा, रानी ने कहा है कि वे युद्ध में इस क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए अपने मनोयोग से युद्ध करें, शत्रु सेना का संहार करें। रानी के इस बलिदान ने रतन सिंह को उनका कर्तव्य याद दिला दिया। तब राव ने रानी के बालों को दो हिस्सों में विभक्त करके उसे अपने गले में माला की तरह पहन लिया और युद्ध लड़ने लगे। उस युद्ध में रतन सिंह ने बहुत वीरता दिखाई और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और डर से तो लोग वैसे ही भाग जा रहे थे। और इसी युद्ध के बाद राव ने खुद के प्राण भी न्योछावर कर दिए और मुगलों की सेना को बिल्कुल युद्ध भूमि में डटकर जवाब दिया। महाराणा विवाह करके लौटे और उन्होंने इस वीर गाथा को सुना तो उनके वाक्य थे, हेक सलुम्बर दे में देई या सिर दीधा हुदोए, राज दिया कहे राज सी रण पलयो कद होए। मतलब कि मैंने केवल एक सलुम्बर दिया था, उसके बदले में एक सिर लेने का अधिकारी था, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे दो सिर दे दिए। मैं इस ऋण को पूरा मेवाड़ देकर भी नहीं चुका सकता। हाड़ी रानी के बलिदान और रतन सिंह के जज्बे को देख के राजस्थानी कवि कहते हैं कि सत्री सहनाणी चही समर सलुम्बर धीश, चूड़ा मन मेलही सिया इन धड़ मेलो सीस। मतलब जब श्री राम ने सीता जी को निशानी भेजने के लिए कहा था तब चूड़ामणि उन्होंने भेजी थी, परंतु ये वीरांगना तो ऐसी थी जिसने पति के कहने पर अपना सीस ही भेज दिया। राजस्थान की एक महिला बटालियन का नाम ही हाड़ी रानी बटालियन के नाम से भी रखा गया। मतलब वहाँ की जो बटालियन है, एक महिला की टुकड़ी जो है, उसका नाम रखा गया हाड़ी रानी बटालियन, जिससे उनका जज्बा ऐसा ही हाड़ी रानी की तरह रहे, निडर बेखौफ और सबके अंदर ये कहानी एक मैसेज देती है और ऐसा मैसेज जो मतलब क्या बताऊं,
तो चलिए दोनों के प्यार को सलाम करते हुए एक प्यारा सा गाना सुनते हैं।

इनकी वीरता के लिए सॉन्ग, इसके बाद इनके प्यार को समर्पित एक गाना सुनेंगे। तो दोनों ही गाने एंजॉय करिए लगातार।

तो प्यार की कहानियों में चाहे वो पद्मावत की हो, महारानी पद्मावती की कहानी हो, चाहे किसी की भी हो, राजस्थान की धरती पे एक अलग ही खुशबू है जो कल्चर के साथ साथ बलिदान के अलग अलग पर्चे दिखाती है। जब आप इनका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। कैसे हैं सभी? धर्मेंद्र जी, शुभ संध्या, क्या हाल है? और हनुमान जयंती की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल आज हनुमान जयंती तो मुझे नहीं लगता कि है, आज है ज्येष्ठ माह का चौथा। अभी ज्येष्ठ माह तो बीच में ब्रेक हो गया जब से माल मास लगा, फिलहाल आज चौथा ज्येष्ठ मंगलवार है और इसकी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और कहते हैं दिन ढल गया तो क्या हुआ, यादों का कारवां अभी बाकी है। माना कि हम बास नहीं आपके, पर हमारी दुआओं का असर अभी बाकी है। शुभ संध्या बंटी गुर्जर जी, कैसे हैं आप? राजस्थान से हमें सुन रहे हैं, क्या बात है, और क्या हाल है सबका? तो आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप अगर किसी की भी फेमस लव स्टोरी जानते हैं तो बिल्कुल सुना सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से भी मैं जानूँ कि आपसे भी एक्सपीरियंस जानूँ। आप अलग अलग जगह से सुनते हैं हम लोग को, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन सी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस लव स्टोरी है और जिसको कभी हमने सुना ना हो, या सुना है तो जाना नहीं है ठीक से, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो मैं चाहूँगी कि आपके एरिया में अगर कोई भी बहुत फेमस सी लव स्टोरी है तो आप या तो उनके नाम या स्टोरी ज़रूर चैट रूम में लिख के भेजें या फिर अपनी आवाज़ में सुनाएं, क्योंकि आपको भी पता है चाहे महेंद्र सिंह धोनी की लव स्टोरी हो, चाहे धर्मेंद्र की लव स्टोरी हो, सभी के पास अपना अपना अंदाज़ है। और आज मैं आप लोगों को, हाँ, धर्मेंद्र से याद आया कि भी हाल ही में एक कहते हैं ना कि हमारे देश के प्रेस्टीजियस अवार्ड सेरेमनी रखी गई, और मैं बताना चाहती हूँ कि वो अवार्ड सेरेमनी पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण की थी, हर साल दी जाती है। तो आपको पता है ये राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। और आज मैं उन सभी अवार्ड विनर्स का नाम बताना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और आजकल तो UPSC ने भी अपने मतलब जो कांड हैं वो करके रख दिए हैं। इस बार जो पेपर दे रहे हैं मुझे लगता है उनका तो सीधे ज्वाइनिंग ही होगा, वो ना तो इंटरव्यू देंगे ना उनको मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर का फर्स्ट लेवल ही इतना ज़्यादा टफ था। मतलब मैं ये नहीं जान पाती कि आप लोग पेपर सेट करते समय आजकल AI का यूज़ करने तो नहीं लगे हैं कि पेपर को AI को सॉल्व करना है, बच्चे सॉल्व करेंगे, मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं पद्म पुरस्कार की बात बताऊँ कि भारत के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार, जिसे कहते हैं पद्म पुरस्कार, और ये हर वर्ष होता है। और इसमें कहीं ना कहीं नागरिक अलंकरण समारोह भी इसको मानते हैं हम लोग। और अगर इतिहास की बात करें तो ये 1954 में स्टार्ट हुआ था और इन पुरस्कारों को 1955 में प्रतिष्ठा के आधार पर घटते क्रम में 3 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया। सबसे पहले पद्म विभूषण, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। मतलब सबसे बड़ा तो भारत रत्न का माना जाता है, भारत रत्न के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है पद्म विभूषण का। इसके बाद आ जाते हैं हम पद्म भूषण की, जो कि उच्च कोटि का विशिष्ट सेवा पुरस्कार होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे, या कह सकते चौथे पायदान पे, अगर भारत रत्न से अगर इनकी घटते क्रम में देखें तो ये चौथे नंबर पे आएगा पद्मश्री। ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट करने के लिए आपको मिल सकता है, मतलब लंबी संख्या आपको पद्मश्री की मिलेगी, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 18(1) में सभी उपाधियों को समाप्त करता है और राज्य को किसी भी नागरिक या गैर नागरिक को उपाधि देने से रोकता है। वहीं यह स्पष्ट रूप से केवल सैन्य और शैक्षणिक विशेषताओं के लिए अपवाद प्रदान करता है। और इसी के साथ ये जो कहते हैं ना कि पुरस्कार दिया जाने लगा, तो मैं आज आप लोग को सबसे पहले तो 2026 के जितने भी अवार्ड विनर्स हैं उनका नाम बताना चाहती हूँ, किसको किसको पुरस्कार मिला और इसकी घोषणा के बाद कौन कौन बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे होंगे।
तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पद्म विभूषण की, जो कि भारत रत्न के बाद आता है। इसमें 5 लोगों को चुना गया है। सबसे पहले श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, यानी कि धर्मपाजी को मिला है, आर्ट के लिए, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन आपको ये पुरस्कार मिला, इसके लिए हम लोग बहुत से ज़्यादा खुश हैं। श्री केटी थॉमस को पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, ये केरल के रहने वाले हैं। MSN राजम आर्ट के लिए इन्हें मिला, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ये। और श्री नारायणन, इनको लिटरेचर और एजुकेशन के लिए मिला है, ये केरला के रहने वाले हैं। श्री VS अच्चू थनथन, जिनको पब्लिक अफेयर के लिए केरला के रहने वाले हैं, मिला है। तो कुल 5 लोगों को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। अब बात करते हैं पद्म भूषण की, ये 13 लोगों को मिला है। सबसे पहले अलका याग्निक, जिन्हें संगीत के लिए मिला है, महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर्स के लिए उत्तराखंड के रहने वाले हैं। श्री कलिपति रामस्वामी को मिला है, जो कि मेडिसिन के लिए, उन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री ममूति, जिनको आर्ट में मिला है, यानी कि कला के लिए मिला है, केरला के रहने वाले हैं। डॉक्टर नूरी दत्ता त्रेयदू, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं, इन्हें भी दवाओं के लिए मिला है। श्री पीयूष पांडे को, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्हें भी कला के लिए मिला है। श्री SKM मिलथनन को सोशल वर्क के लिए मिला है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री शाता वधानी आर गणेश को मिला है, कला के लिए कर्नाटका की रहने वाली हैं। इसी के साथ श्री शिबू सोरेन को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, झारखंड के हैं। श्री उदय कोटक को मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, महाराष्ट्र के रहने वाले। श्री VK मल्होत्रा को पब्लिक अफेयर, दिल्ली के रहने वाले हैं। श्री वल्लपली नाटेसन को केरला के रहने वाले हैं, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। श्री विजय अमृतराज स्पोर्ट्स के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं, इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये 13 लोगों की लिस्ट थी। इसके बाद पद्मश्री कुल 113 लोगों को मिला है। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में बता देती हूँ। श्री अनिल कुमार रस्तोगी, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें कला के लिए मिला है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री अशोक कुमार सिंह, इन्हें भी पद्म पुरस्कार साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मिला है। इसी के साथ श्री बुद्धा रश्मिमणि, जिनको आर्कियोलॉजी के लिए मिला है, ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री चिरंजी लाल यादव को कला के लिए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के जितने नाम हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। श्री केवल कृष्ण ठकराल को मिला है मेडिसिन के लिए, ये भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। साथ ही साथ मैं नाम लेना चाहती हूँ मिस मंगला कपूर को की, जिन्होंने लिटरेचर और एजुकेशन में अच्छा कार्य किया है, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें पुरस्कार मिला है। और उत्तर प्रदेश से श्री प्रवीण कुमार को स्पोर्ट्स के लिए पद्म पुरस्कार मिला है। और उत्तर प्रदेश से ही हैं श्री राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें मेडिसिन के लिए पुरस्कार दिया गया है। आप भी कुछ अलग करके अपनी पहचान बना सकते हैं, बस जज्बा आपके अंदर बरकरार होना चाहिए। तो ये कुछ नाम थे जो कि उत्तर प्रदेश से थे। और अभी मैं सारे 113 नाम नहीं ले सकती, सॉरी 131 नाम नहीं ले सकती, 13 तो आपके पद्म विभूषण के 5 नाम, तो जो कम थे वो मैंने आप लोग को बता दी। अब आप बताइए कि आपके एरिया से किसको पद्म पुरस्कार मिला है, क्योंकि मैंने जो शुरू के थे वो तो बता ही दिए, क्या पता आपके क्षेत्र का कोई हो जो बच गया हो। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है। सो जैसा कि मैंने धर्मेंद्र जी का नाम लिया, तो चलिए सुनते हैं उनका कोई प्यारा सा गाना, जिसको सुन के आप भी खो जाएं इस प्यारी सी शाम में। तो लेट्स एंजॉय

0: Ma com'era? Vem messa.
1: अगर कोई आंखों को चूम ले तो उसके होठों पे भी आ जाए।
2: सरकान के औलाद।

जी हाँ, बंजारे नैना को भिड़ने के बाद एक नई कहानी बनने में समय नहीं लगता, और ऐसी एक कहानी है मूवी पटाखा की। अगर आपने कभी पटाखा मूवी नहीं देखी तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसमें सानिया मल्होत्रा और राधिका मदान की जो केमिस्ट्री है वो इतनी ख़तरनाक है, जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ, कभी कभी हमारे देश में ऐसा ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध घर के बच्चों में होता है, और जैसा इस मूवी में दिखता है। जी हाँ, गर्मी की छुट्टी में आपके घर में अगर छोटे या मीडियम साइज़ के बच्चे हैं और उनके बीच युद्ध होते आपने नहीं देखा है, तो इस मूवी को देख लीजिए, आपको याद आ जाएगी उस पुराने ज़माने की, जब बाल नोच नोच के एक दूसरे को भारत पाकिस्तान मानते हुए बच्चे लड़ाई करते थे, और लड़ाई करने के बाद पता नहीं चलता था कि कौन सही है कौन गलत। दोनों ही टीमों को बराबर से एक मैदान में लाने के लिए आम काटना पड़ता था, जिस पे वापस से वो लोग टूट जाते थे और फाइनली गर्मियां सुपर हो जाती थी। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये गाना, और आपको भी अगर आपका बचपन याद आ गया तो जरा चैट रूम में जरूर लिख के भेजिएगा कि क्या आपने भी भारत पाकिस्तान की तरह अपने बचपन में युद्ध किया है या नहीं।

तो कोई भूला चाहता है मुझे या भूलने की कोशिश भी कर रहा है, तो आरजी भी ना आपको याद दिला देगी कि नहीं नहीं नहीं मैं लाइव हूँ आप लोग के साथ। और मैं आज आप लोग को मतलब आज ऐसे ही मैं मतलब न्यूज़ देख रही थी और न्यूज़ के बीच में मुझे एक छोटा सा वीडियो दिखा जिसमें एक लड़का दावा कर रहा था कि वो राजा मान सिंह का पुनर्जन्म है। यार ये पुनर्जन्म वाला क्या किस्सा सही होता है, क्या पता होता हो, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल मैं आप लोग को राजा मान सिंह से थोड़ा रूबरू करा देती हूँ, अगर आपको याद हो तो या ना याद हो तो, दोनों ही केसेस में आपको मैं याद दिला देती हूँ कि राजा मान सिंह कौन थे और इनको लेकर क्या न्यूज़ आजकल वायरल हो रही है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानना चाहेंगे ना कि न्यूज़ क्या है। नहीं नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी ऐसी मतलब खबर है जिसने मुझे इतना चौंका के रख दिया। फिलहाल चौंकाने वाली न्यूज़ यही है कि कैसे एक लड़का दावा कर रहा है कि वो मान सिंह का न्यू जन्म है और इसके पीछे का मुझे मतलब साइंस नहीं समझ में आता। फिलहाल जो भी है, एक 10 साल का बच्चा है जो क्लेम कर रहा है कि वो राजा मान सिंह है, ठीक है। और इसके पीछे काफ़ी सारी न्यूज़ भी सामने आ रही है, सब लोग सवाल भी कर रहे हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर भी दे रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है। पर लोग यही मान रहे हैं कि ये रीबर्थ है राजा मान सिंह का और मुझे तो नहीं लगता। और मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ मेरा रीबर्थ होगा कि नहीं होगा या मैं किसी का रीबर्थ हूँ, कभी मुझे ऐसे सपने नहीं आए। क्या आपको कभी सपने आए कि आप किसी का रीबर्थ हैं? सोच के बताइए, सोच के आपको कभी क्यों लगता है कि अरे मैं तो गांधी जी का रीबर्थ हूँ, अरे यार मैं तो उनका रीबर्थ हूँ, क्या आपको कभी लगा? हाँ कभी घर वाले बोल देते हैं ये तो अपने बाबा की तरह, ये बाबा का पुनर्जन्म हो गया, ऐसे करके बोल देते हैं लोग। लेकिन क्या आपको रियली में लगता है कि ऐसा होता होगा? पर मुझे तो नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं। तो मैं न्यूज़ की बात करती हूँ कि राजस्थान के टोंक जिले में गांव, आज मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ क्योंकि कहानी लव स्टोरी भी राजस्थान की थी। राजस्थान के टोंक जिले में गांव जेकमाबाद में 10 साल के बालक ने खुद को पिछले जन्म में आमेर का राजा मान सिंह बताया और इसके बाद से पूरे गांव में जो कहते हैं ना न्यूज़ चैनल वालों ने आके पूरा धावा बोल दिया है न्यूज़ कवर करने के लिए। राजस्थान के टोंक जिले के छोटे से गांव में जेकमाबाद में ये लड़का रहता है जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वो उस दिन चर्चा का विषय बन गया जब बालक ने हैरानी से कुछ दावे किए और उसका परिवार कहता है कि पिछले जन्म में वो आमेर का राजा मान सिंह था। इस अनोखे दावे के चलते ना केवल गांव बल्कि आसपास के इलाके के लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी आई। अभी आपके सामने आके कोई कह दे कि भाई मैं राजा दशरथ का पुनर्जन्म हूँ तो आप दौड़ के पहुंचोगे, यार भाई चलो जानते हैं उस समय क्या क्या होता था, सच में पता चलेगा। तो इसी दावे की सच्चाई मानने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे और बालक का नाम कान्हा राम है वैसे तो, लेकिन आगे वो तो यही कहता है कि मैं तो मान सिंह हूँ। लड़का कहता है कि उसकी जो देवी आमेर की शिला देवी हैं वो पिछले जन्म में राजपूत था। उसने दावा किया कि हल्दी घाटी के युद्ध में उसकी हार महाराणा प्रताप से हुई थी। बालक ने आगे बताया कि उसने पिछले जन्म में जीते हुए युद्धों का खजाना आमेर के महलों में छिपा कर रखा है और टोंक जिले में जो लोग हैं वो लोग बहुत हैरानी से इस बात पे पहले तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, बाद में लोगों ने विश्वास किया और उनका दावा है कि उनकी माँ जो हैं वो उनको बचपन से ही एक अलग माहौल में रखती रहीं, लेकिन इनके अंदर राजा होने का मतलब जो था वो हमेशा से बचपन से ही दिखा, इनकी आदतें वैसी ही थीं। और उन्होंने ये भी कहा कि आमेर में खजाना अभी भी छिपा हुआ है और इन्होंने ये बताया मैंने कई युद्ध लड़े हैं। माँ ग्यारसी देवी की माने तो बालक पर माता रानी की कृपा है, कोई कहता है कि कोई मतलब अलग अलग सबकी मान्यताएं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, पर असलियत क्या है ये तो भगवान जाने।
तो फिलहाल आप लोग को मैं राजा मानसिंह के बारे में बता देती हूँ। आमेर राज

मुगल दरबार में शामिल हो गए थे क्योंकि मुगलों ने उन्हें ऑलरेडी जीत रखा था। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और युद्ध कौशल के बल पर अकबर के नवरत्नों में प्रमुख स्थान बनाया था। और हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था 1576 में, तो वहीं हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मान सिंह की मुगल सेना के साथ, जो कहते हैं ना कि महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ और वहाँ पे वो शहीद हो गए। उन्होंने काबुल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे कई मुगल साम्राज्य में, मतलब कई क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है वो बढ़ाया था। काफ़ी बढ़िया राजा थे, मुगल साम्राज्य की मदद करते थे, तो मतलब अपना विस्तार इन्होंने किया। लेकिन देखिए, जिंदा हुए हैं तो हुए होंगे, तो हमारे पास से ही हैं वो, नन्ही हैं राजा मान सिंह, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कभी टोंक का जा, सचिन जी को नहीं लगा कि ये किसी का रिबर्थ है। हाँ, टोंक का ही है वो थोड़े दिन ट्रेंड में रहा, अब न्यूज़ नहीं आती उसकी, लेकिन अभी भी लोग मतलब कह रहे हैं कि वो मान सिंह का मतलब रीबर्थ है। पता नहीं असलियत क्या है, ये तो वही जाने। अब लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, रीबर्थ वाला तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कोई इंसान रीबर्थ करके इस दुनिया में आ सकता है, पर कहने वाले को क्या ही बोले। मैं ही कह दूँ कि भाई मैं तो इनका ये रीबर्थ हूँ, आप लोग मान ही लोगे कि आरजू बीना कह रही थी ऐसा, हो सकता है, एक बार मन में आ जाता है। मतलब बंदा ऐसे ही कह दे कि बगल में तुम्हारे सांप बैठा है ना, तो नहीं बैठा होगा, तभी मन में एक डर आ जाएगा, यार देख लूँ है तो नहीं कहीं, तो ये होता है। तो मैम, वो राजा मान सिंह वाला मामला गलत था, वो हमारे तरफ से ही थे, उस बच्चे को रटी रटाई बातें बताकर उससे बुलवाया जा रहा था। ओह रियली? अच्छा, बंटी जी ने देखिए क्लियर कर दिया, मतलब एक क्षेत्र के होने का, अलग अलग क्षेत्र के होने से ये फायदे होते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट टू करेक्ट मिल जाती है। जुगल किशोर जी मध्य प्रदेश से, तो अगली बार मैं मध्य प्रदेश से कोई लव स्टोरी लेके आऊँगी। अब आप लोग बताइएगा किस राज्य से स्टोरी लेके आऊँ, तो इस बार राजस्थान की बारी हो गई, अगली बार मध्य प्रदेश से मैं लव स्टोरी लेके आऊँगी। आप लोग सोच के बताइएगा नेक्स्ट टाइम कि अगली बार, उसके अगली बार कौन सी लव स्टोरी आनी है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। अगर आप कुछ सुरीला सुन रहे हैं तो आरजे बीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला सुन रहे हैं। लव स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा अगली बार, मतलब देखिए लव स्टोरी अच्छी ही लगेगी क्योंकि रियल स्टोरीज हमेशा से हमें एक पॉजिटिव मैसेज देख जाती हैं। सो एंजॉय करिए और सुनते रहिए अपना रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में? बहुत खास खास बात जरूर बताइएगा। वैसे आज तो है मंगलवार और मंगलवार को होता है सब कुछ मंगल। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी मंगल नहीं हो रहा, या फिर थोड़ा बहुत मंगल हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मंगल हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो अगर आप मंगलवार के दिन सो के उठ के ये सोच लें कि आज मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ मंगल तो जरूर करने वाला हूँ, और हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए और कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश भी कीजिए, सोचिए भी शुरू ही कीजिए, हनुमान जी आपका साथ देंगे और सच में आपका दिन सच में मंगल हो जाएगा। बस सुबह सो के उठ के आपको बस सोच लेना है, बी पॉजिटिव यू नो। तो मैंने भी यही सोचा था कि आज के दिन को मैं एकदम मंगल मंगल करूंगी, और फाइनली मंगलवार हो गया, एकदम मंगल मंगल। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। आप लोग का कैसा गया है मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए डेफिनेटली जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपकी, आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी, और आपके नाम तो रहते ही है हर जगह हर कहीं, और आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के तो लफ्जों पर सिर्फ आप सभी के नाम होते हैं इस समय पे, है ना। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा ज्ञान स्थल एक तरफ, क्यों सही कहा ना मैंने। सो कैसे हैं आप सब, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। बंटी गुर्जर जी, अनुष्का श्रावस्ती से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, सचिन शुक्ला, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, कैफ मोबाइल वाले गोंडा से, आरसीएम बबलू पांडे आपका भी स्वागत है, निशा पटेल नगर गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राकेश वर्मा जी गोंडा से, राजेश मीना नागेश्वर धाकर द ग्रेट से, इन साहब आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आपके अपने शो में। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश बिना किसी देरी के, और हमारे पास में पहली फरमाइश है दोस्तों अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को सुनना है ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, हम एंजॉय करेंगे अग्निपथ का सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, आई चिकनी चमेली चुपके है अकेली पौवा चढ़ा के आई। सो आज के दिन तो पौवा बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, हाय राम राम राम राम। आज है मंगलवार, तो आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एकदम सात्विक बन के रहना चाहिए। मैंने भी यही सोचा था कि मैं सात्विक बन के रहूंगी, लेकिन दोस्तों इतना मैंने अपने आप को मोटिवेट किया सुबह सुबह कि मैं रोज सुबह जिंजर और गुनगुना पानी पीती हूँ ना, और मैंने सोचा क्यों ना लहसुन खाया जाए, और आज मैंने कच्ची गली लहसुन की भी खा ली, और फिर खाने के बाद में मुझे याद आया ओ शिट आज तो मंगलवार था। लेकिन कोई बात नहीं ना, अनजाने में हुई गलती को भगवान भी माफ कर देते हैं, है ना दोस्तों। तो मैंने भी यही सोचा और अपने दिन की शुरुआत तब भी अच्छे से कर ली। सो एंजॉय कर लेते हैं चिकनी चमेली सुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारी अनुष्का की फरमाइश पर, जो कि श्रावस्ती से, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपनी आज सिंपल और सिंपल की खट्टी मीठी बातों को, चिकनी चुपड़ी बातों को, बिना मस्के वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन स्टेडियम टन टन। आए हाय, शुरुआत ऐसी है तो शो का अंत कैसा होगा।

0: की एक बरसाती में रहने वाला। आज यहां आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा। क्या?
1: मांडवा।
2: सो हमने एंजॉय किया है अग्निपथ का ये सुपर डुपर हिट नगमा चिकनी चमेली चुपके अकेले पौवा चढ़ा के आई। अनुष्का की फरमाइश पर जो कि है श्रावस्ती से, नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों, बिना बिना बिना किसी देरी के। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। निशा पटेल नगर गोंडा से आपका स्वागत है, राजू सलमानी जी आवास विकास गोंडा से स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों जग्गू दादा की जुगल, किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना लता जी की आवाज में और मोहम्मद रफी जी की आवाज में आप आए बहार आई मूवी का कोयल क्यों गाए। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, स्टे ट्यून्ड। ये नगमा भले ही ओल्ड इज गोल्ड है लेकिन हमारे जग्गू दादा बिल्कुल भी ओल्ड नहीं है और ऑलवेज गोल्ड है। स्टे ट्यून्ड।

मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि गौरी का मनवा कुछ ज्यादा ही डोल गया है। अब गौरी के मनवा को कहते हैं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि अब आपके मनवा को डोलते डोलते आ चुका है चक्कर, और इतना धूप में अगर मनवा डोलेगा उसको चक्कर आएगा तो मनवा को कमजोरी हो जाएगी ना जग्गू दादा। तो मनवा को देते हैं रिलैक्स, और हमने इंजॉय किया ये फरमाइश जग्गू दादा मीन्स जुगल किशोर वर्मा जी की। अगली फरमाइश हमारे पास में सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना बड़ा मंगल। सो एंजॉय करते हैं, जेठ महीना तपती गर्मी, दिन है मंगलवार, ये हनुमान जी का भजन हम एंजॉय करेंगे। और बोले पवन सुत हनुमान की जय। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी, आपका स्वागत है। और धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से स्टे ट्यून्ड। कितना मजा आ रहा है ना, पता नहीं क्यों ही आ रहा है। बस यही है कि हनुमान जी वो क्या है ना कि मैं जिस दिन बहुत हंसती हूँ उस दिन नाजायज में किसी ना किसी बात पे मैं रो भी देती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन नहीं ना। स्टे ट्यून्ड।

सुन लो करुड़ पुकार, हमने एंजॉय किया है ये हनुमान जी का बहुत ही खूबसूरत सा भजन डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर, जो कि हैं गौरा चौकी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो निबर जी। रानी बाजार सुनार गली गोंडा से आपका स्वागत है। सबीहा गोंडा से स्टे ट्यून्ड वेलकम इन योर शो। एंड मोहित मालवे नगर गोंडा से आपका भी स्वागत है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू सलमानी जी की आवाज विकास गोंडा से। राजू सलमानी जी को आवाज विकास गोंडा से सुनना है अलका याग्निक और अनु मलिक का गाना चाइना टाउन का गाना। सो गाना आप गेस करिए, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा, एनर्जी को दो गुना तीन गुना कर देने वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ राजू सलमानी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

लिखे परदेसी दिल उड़ गया रे। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा राजू सलमानी जी की फरमाइश पर। चाइना टाउन का ये था गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश भी कुछ कम नहीं है। अगर ये 10 है तो शायद वो 11 है, और अगली भी शायद 11, अगर वो 11 है तो उसके बाद वाली तो भाई 12 है। अब कमाल से कमाल के गाने हम इंजॉय करेंगे आज के अपने फरमाइशी की महफिल में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज सबका दिल मेरी तरह गार्डन गार्डन हो रहा है, और इसीलिए सब इतने खूबसूरत। ओ माय गॉड, रों की हंसू समझ ही नहीं आ रहा, नगमों की डिमांड कर रहे हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना बिना किसी देरी के। और हमारे पास में अगली फरमाइश है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना सोनी सोनी अखियों वाली, दिल दे जा या दे जा गालियां, हम तेरे दीवाने हैं। सो एंजॉय करते हैं महब

का ये वाला गाना, जो गाना सबके दिलों में मोहब्बत को इस तरह उमड़ उमड़ कर फैला देता है, इस तरह मोहब्बत का वायरस डाल देता है कि फिर उस वायरस से बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, इंजॉय करते हैं मिश्रा ऑप्टिकल गुंडा से अजय मिश्रा की ये फरमाइश। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। कुमार टेलर गौरा चौकी से आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

हम तेरे दीवाने हैं और हम आशिक मस्ताने हैं। मोहब्बती का ये गाना हमने एंजॉय किया है। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की। सबीहा को सुनना है गाना बारिश के आने से तेरे भीग जाने से। सो एंजॉय करते हैं श्रेया घोषाल और टोनी कक्कर का ये गाना, मनीषा रानी पार्थ समथान का ये गाना, सिर्फ और सिर्फ सबीहा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। आज चैट बॉक्स में आप लोग बहुत शांत क्यों लग रहे हो? जब चैट बॉक्स में चहल पहल नहीं होती है ना, तो मेरी जुबान पर भी चहल पहल नहीं होती है। ऐसा लगता है कि मैंने सेंटा फ्रेश खा के रखा है और मेरी जुबान पे लगाम लग गया है। दोस्तों, तो क्या आप ये चाहते हैं?

सबिया की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा, हाउ रोमांटिक वाला, और लास्ट में थोड़ा सा दर्द भरा। ये थोड़ा सा दर्द क्यों डाल देते हैं, एक दो तीन चार मिनट का गाना होता है उसमें भी 30 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का या फिर एक मिनट का दर्द डाल ही देते हैं। बिना दर्द के लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कुछ भी क्या, और पहले दर्द डालेंगे फिर उसके बाद में दर्द को कम करने के लिए पेन किलर का प्रयोग करेंगे। वेरी बैड, वेरी बैड। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। सबीहा जी, आपका गाना तो बहुत ही बढ़िया था, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों किसकी, निशा की, पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना।

हाय। और मेरे अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था, दिल टूट गया है। आहाँ, सो दिल तो ऐसे ही टूट जाता है, छोटी छोटी बातों पे टूट जाता है। अगर चाय पीने का मन है, कॉफी मिल गया तब भी दिल टूट गया, कॉफी पीने का मन है चाय मिल गया तब भी दिल टूट गया। तो दिल का क्या है, जब मन तब उसको तो बहाना चाहिए कि भाई आ मेरे को उंगली कर और मैं तुरंत टूट जाऊंगा। सो हम एंजॉय करते हैं निशा की फरमाइश पर, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। वैसे फरमाइश तो ये निशा की है, लेकिन ये मेरे दिल की पुकार है जो निशा ने सुन ली और इस गाने की फरमाइश कर दी। थैंक यू, लव यू सो मच निशा, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आयुष तिवारी गोंडा से आपका स्वागत है, कृष्ण कुमार मिश्रा रिपोर्टर कृष्ण कुमार मिश्रा गोंडा से आपका भी स्वागत है। नागेश्वर धाकड़ का कहना है फूलों में हसीन गुलाब है, फूलों में हसीन गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है, कोई पूछे आपसे हमारे बारे में तो इतना बता देना कि वो तो लाजवाब है। आए हाय, तो ये किसके लिए था, आपके लिए था कि हमारे लिए था, ये जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वाला गाना। आए हाय। Stay tuned. टन टनन टन टनन, आहा आ गई ना वाइब म्यूजिक से ही, आहा

0: अरे दिल को तोड़ना ही क्यों है जनाब, दिल को सीधे सीधे चकना चूर करो ना, चूर चूर करो ना, कि जोड़े से ना जुड़े। हाँ हाँ वैसे जुड़ेगा, अगर टूटेगा तो वो कहते हैं ना कि जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो चकना चूर करो, जोड़ने का हिस्सा भी नहीं है ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। स्टे ट्यून और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है बी प्राक का गाना मोहब्बत। तो एंजॉय करते हैं बी प्राक का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, सिर्फ और सिर्फ हमारे बहुत ही खूबसूरत से धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय दिस पंजाबी, व्हाट एंजॉय दिस पंजाबी सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड,
1: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

दोस्तों, ये फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। सो क्या कहती है पब्लिक, बढ़े क्या अगली फरमाइश की तरफ? चलिए ना, चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले स्वागत है आप सबका, मींस चांदनी का स्वागत है गोंडा से। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है कुमार टेलर्स की गौरा चौकी से। और कुमार टेलर्स को गौरा चौकी से सुनना है गाना तेरे लिए ही जीता हूँ मेरे रघुनंदन राम। सो एंजॉय करते हैं फिर से बड़ा मंगलवार वाला ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग पवन सुत हनुमान का गाना, लेकिन इस बार कुमार टेलर्स की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों, ये फरमाइश थी कुमार टेलर्स की, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन इसके पहले मैं देना चाहूंगी जरूरी सूचना इस फरमाइशी गीत की, उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। तो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: तकनीकी की बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिर से स्वागत और इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों क्या हाल चाल है और क्या खाना पीना खा के आए हैं, क्या पेट भर के आए हैं मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताना, क्योंकि हाय मेरे पेट को तो किसी चीज़ की ज़रूरत है। मींस चाहे आप लिक्विड कुछ दे दो, चाहे मैं अगर अपने पेट को भी पानी भी दे दूँ ना तो मेरा पेट फिल हो सकता है, इसी तरह ज़रूरत है। आई मीन डिहाइड्रेटेड सा फील हो रहा है फिलहाल। आप लोगों ने तो एकदम पेट पूजा कर रखी होगी और अब आप चैन से आ चुके होंगे और आराम करेंगे और अपने फरमाइशी गीतों को और हम सभी के फरमाइशी गीतों को इंजॉय करेंगे। सो इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है आज आयुष तिवारी की, और आयुष तिवारी को गोंडा से सुनना है सैयारा का गाना बर्बाद। सो एंजॉय करते हैं आयुष तिवारी की फरमाइश पर बर्बाद गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओह माय गॉड आई लव दिस सॉन्ग। कमजोर हो जाता हूँ।

0: सो हमने एंजॉय किया है आयुष की फरमाइश पर ये वाला गाना और आयुष तिवारी है गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से, और गोरखपुर से अनिल शास्त्री को सुनना है गाना। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। सो एंजॉय करते हैं ये गाना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सुमित मिश्रा, आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं अब ओल्ड इज गोल्ड नगमा। लेकिन इसके पहले इट्स कुमार का कहना है कि कागज का था दिल मेरा, 48 डिग्री तापमान था, दिल जल गया। और अगर आप कागज के दिल को 48 डिग्री के तापमान में भी एक भट्टी से दूसरे भट्टी में डालेंगे तो ऑब्वियसली कागज का दिल जल ही जाएगा। और इस तरह जलेगा कि एक भट्टी से दूसरे भट्टी में डालते डालते और दूसरे भट्टी से तीसरे भट्टी में दिल को डालते डालते आपको दिल का राग भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना आपको? सो एंजॉय कर लेते हैं फिलहाल ये वाली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।
1: काम योर माइंड विद चक्रा बेस्ड मेडिटेशन म्यूजिक सारे का।

0: कि इन्हें देख के जी रहे हैं सभी, और ऑब्वियसली जी रहे हों वो चाहे ना जी रहे हों, लेकिन इन्हें देख के पी तो सभी रहे हैं। सो हमने इंजॉय किया है नील शास्त्री की फरमाइश पर ये वाला गाना जो कि है गोरखपुर से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली डिमांड की तरफ। एंड दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बचपन की सहेली है जिनका नाम है देवांशी सिंह। सो देवांशी सिंह की फरमाइश पर एंजॉय करते हैं बी प्राक और जानी का ये सुपर डुपर हिट दिल फेक आशिक वाला गाना, दिल टूटे हुए आशिकों वाला गाना, दर्द भरा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, दिल काट के।
1: एक तो परवरदिगार के बारे में ना बोलिए,

दुनिया को जो भी आता है दबाने लग जाता है। सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा दोस्तों, मेरी बचपन की सहेली, मेरी बचपन की फ्रेंड देवांशी सिंह के फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली डिमांड की तरफ दोस्तों, और हमारे पास में अगली फरमाइश है किसकी? कृष्ण कुमार की, रिपोर्टर कृष्ण कुमार मिश्रा की, और उनको सुनना है गाना दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। तो कुमार सानू की आवाज में चाहत का ये गाना एंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कुमार की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एनजॉय के मत जाइए, हमने एंजॉय, हम ये इंजॉय करेंगे ये वाला गाना। और अभी हमने इंजॉय किया है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं, इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, तो मई के मत जाइए। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास में आई भी है निब्बर जी की तरफ से, जो कि रानी बाजार सोनार गली गोंडा से। इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

गाय के मत जाइयो मेरी जान, हमने एंजॉय किया ये गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की, और चांदनी को सुनना है गाना मेरा महबूब किसी और दा है। तो आपका महबूब किसी और दा है तो आप भी अपने महबूब को कहिए मूव ऑन कर ले, और आप भी ब्रेकअप करिए और किसी और के पास चले जाइए, और आपका महबूब फिर कहेगा कि मेरा महबूब किसी और का है। कितना मजा आएगा ना, वैसे बदला लेने में अलग ही मजा आता है, और मुझे तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, मीन्स चांदनी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: What is this?
1: It's my wedding!
0: Whoa!
2: Wow,
0: Sophia Veg? Who is he?
3: क्या ये सब?
1: मेरी शादी हो रही है एंड इट्स टू लेट नाउ. मेरे मॉम डैड ने डिसीजन ले लिया है. वैसे भी तुम कहाँ सीरियस हो मुझे और अपने करियर को लेकर?
3: क्या तुम खुश हो?

एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइशें। तो फरमाइश थी चांदनी की, और अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की। नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना तेरा साथ है कितना प्यारा। सो एंजॉय करते हैं ये गाना, और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आपसे लेना चाहेगी अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना, और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपके अपनी अर्जी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी अर्जी सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा रंगमा नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। मिलते हैं कल, कल है वेंसडे, वेंसडे को एंजॉय करेंगे बहुत ही ज्यादा, और एकदम पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, कल जश्न मनाएंगे। एना दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है बाहर गजल और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। और जब बात गजल की आती है, मोहब्बत की आती है, गजल अपने आप में कई सारे पहलुओं को एक साथ समेटती है। किसी शायर ने कहा कि ये तो अच्छा है गजल, तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे, जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी न सका, जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। और ये वही गजल है

जिस गजल का हुनर कभी हमको सिखाता है और कहता है कि गजलों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे, गजलों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। और वही शायर ये भी कहता है कि

जी हाँ, जिंदगी के दर्द को अपने दिल में दबा कर कलमकार गजलें लिखता है, शेर लिखता है और गायक कलाकार उसे गाता है। सबका अपना योगदान है। जो कल को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, जो कल को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, आंसू को धुन बनाते हुए देख रहे हो, जो चाहता है चीखना रो लेना सिसकना, जो चाहता है चीखना रो लेना सिसकना, महफिल में उसे गाते हुए देख रहे हो। चलते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध गजल की तरफ। आवाज पंकज उदास की है, मेरे साथ भाई धर्मेंद्र मोहन जी हैं। सर गुड इवनिंग, आपको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, आपको भी। और हमारे साथ सविता शास्त्री जी हैं, नमस्कार। शुभ संध्या सर जी, आपको प्रणाम करते हैं। और अब चलते हैं पहली गजल की तरफ और इसके बाद आपसे रूबरू होते हैं उस शायर की तरफ। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हाँ, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। अच्छा, जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ तो मुझे कुछ पंक्तियाँ हैं जो याद आती हैं, कि मतलब जहाँ व्यक्ति को कन्फ्यूज़न है कि एक तरफ उसका घर है उसकी महबूबा का और दूसरी ओर मैकदा है जहाँ वो बैठकर शराब पी सकते हैं, और समझ में नहीं आता कि इन दोनों में किधर जाएं, इस तरफ या उस तरफ। अगर मैं पंक्तियाँ कहूँ तो ये कहूँगा कि तुम्हारे आँख की तौहीन है ज़रा सोचो, तुम्हारे आँख की तौहीन है ज़रा सोचो, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। मतलब इसका मतलब कि आँखों में वो बात नहीं है, नहीं तो शायद इंसान को ज़रूरत न पड़ती मैकदे की। और पंक्तियाँ कुछ यूं भी कहती हैं कि एक सिर्फ हम ही मैं को आँखों से पिलाते हैं, मैं मतलब शराब, एक सिर्फ हम ही मैं को आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं। तो अगर जिसने आँखों से पी ली हो, मुझको नहीं लगता कि उसको गिलास से पीने की आवश्यकता पड़ेगी, ग्लास की आवश्यकता पड़ेगी। वो पैमाने की तरफ शायद नहीं देखेगा जिन्होंने आँखों से पी ली है, और अगर आँखों से नहीं पी है तो शायद जाम समझ में आएगा। पंक्तियाँ फिर मुझे याद आती हैं कि तुम्हारी आँखों में वो बात ही नहीं है दोस्त, तुम्हारी आँखों में वो बात ही नहीं है दोस्त, डुबोने वाले समंदर ही और होते हैं। तो डुबोने वाले समंदर और होते हैं, और अगर किसी की आँखों में झांक करने के बाद भी अगर मैकदे की तरफ बढ़ा जाए, इसका मतलब उन आँखों में वो बात नहीं है। तुम्हारे आँखों की तौहीन है ज़रा सोचो, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। और अगर इसको हम साहित्य से थोड़ा सा और जोड़ें तो बात कर सकते हैं कि दर्द ने जन्म दिया है इन मैकदों को, इन मैखानों को, दर्द ने जन्म दिया है इन मैकदों को, इन मैखानों को, दर्द ने जन्म दिया है इन छलकते पैमानों को, अरे अगर दर्द न होता तो न ये बोतल होती, न होती शराब, न तुम पीते न हम पीते, न कहलाते खराब। जी हाँ, कई सारे परसेप्शन हैं, उन सभी बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे भाई। और हमारे साथ अनिल शास्त्री जुड़ चुके हैं, प्रणाम करते हैं दादा। अब कैसे हैं आप? और गजल पसंद आई भाई, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। और शशि सिंह जी हैं सर, नमस्ते। दो हंसों का जोड़ा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद भाई मनु जी, मेरा ख्याल है कि ये जो आपने कतार बनाया है, ये घड़ी में एक तरफ उसका घर एक तरफ इंदर सेन की पत्नी, एक तरफ मेरा घर यानी मेरा अपना परिवार, दर्शन में बाप, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है भाई। और जी, और राजेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई। और जी, कभी कभी चराग कभी तीरगी से हार गए, कभी चराग कभी तीरगी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए, कभी चराग कभी तीरगी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए। अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, अजीब खेल का मैदान है ये दुनिया भी, कि जिसको जीत चुके थे उसी से हार गए। अक्सर इंसान उससे हार जाता है
जिसको वो जीत चुका होता है। और तब वो कहता है कि इस स्थिति में अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। आइए, बहुत दिनों के बाद ये गज़ल मेरे जहन में आई, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुनाते हैं और आपसे मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गाने की 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हसी है, मतलब इंसान एक व्यक्ति के लिए कुछ पागल सा होता है। मुझे याद आई गजल कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, पीले पीले कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब, मैं घर वापस आया तो दरवाजे ने पूछा, मैं घर वापस आया तो दरवाजे ने पूछा, कहाँ गए वो लंबे लंबे नौकर वोकर सब, शहर के सारे खंभों पर इश्तहार लगे हैं, खो गए हैं कागज वागज पत्थर वत्थर सब, और उन्होंने कहा कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। लेकिन ये एक नामुराद आशिक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सामने वाले के लिए सब कुछ, वो चला गया तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। तो शायर ने कहा नहीं, इसके आगे की दो पंक्तियां हैं कि मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आपके बिना नहीं जी पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि हमारे बिना आप भी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। अब देखिए हमारे पास संदेश प्राप्त हुआ है बहन जी का। तानिया जी लिखती हैं गुड इवनिंग सर, कैसे हो? जी हाँ, आशीर्वाद है आपका। गीता श्रीवास्तव बहन लिखती हैं गुड इवनिंग आरजे सर, प्रणाम करते हैं दी आपको, और इसके पश्चात गज़ल बहुत अच्छी। और तो तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये सिक्के का एक पहलू था। मुझे लगता है सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, तो इसी स्टूडियो से हम एक बात अलग ऐलान और कहते हैं, एक बात का ऐलान और करते हैं। देखिए वो ऐलान आपको कैसा लगता है, आप जरा बताइएगा कि जो पिछला नगमा हमने आपको सुनाया और उसके जवाब में आपको ये दूसरा नगमा सुनवा रहे हैं, आपने इस केमिस्ट्री को, आपने पाया कि एक प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है गीतों के माध्यम से कि नहीं? अगर हाँ तो भाई हमारी कोशिश को थोड़ी सी दुआएं दीजिएगा। फिलहाल हमारा ये उत्तर उस गीत के लिए, उस नगमे के लिए, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है, आप छोड़कर जा रहे हैं और अब हम ये कह रहे हैं।

0: जी हाँ, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और जैसे ही मैंने ये गज़ल बजाई उधर से सविता जी ने एक बहुत ही प्यारी बात कही। इसे कहते हैं पढ़े लिखे आदमी का होना। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, अर्थपूर्ण। लिखा है बहुत ही अर्थपूर्ण प्यारी गज़ल। और जब आप शब्दों की गहराई तक जाएंगे तो क्या बात है, जिस्म की बात नहीं थी उनके रूह को छूना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी। मतलब वास्तव में एक एक शब्द अपने आप में हकीकत बयान कर रहा है कि वो उस फीलिंग को लेकर आ रहा है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। तो भाई अर्थपूर्ण गजल है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और धर्मेंद्र जी को भी भाई हम शुक्रिया आपका स्वीकार करते हैं। अनिल शास्त्री ने कहा है थैंक्स, क्या बात है। तो वास्तव में सच बोलना इतना आसान काम नहीं होता, किसी के रूह को छूना बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी की अंतरात्मा को छू लें, शायद इससे बेहतर इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, उठो लफ्ज़ मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। जी हाँ, नफरत से किसी का घर नहीं बसा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अपने इन दो हाथों से चार व्यक्तियों को एक साथ मार नहीं सकते, लेकिन अपने इन दो हाथों को जोड़ करके आप लाखों व्यक्तियों को एक साथ प्रणाम कर सकते हैं। तो हमारे दो हाथ खुले रहें कि आपस में जुड़ जाएं, ये क्या अच्छा होगा, क्या ही शानदार होगा कि नफरत को मिटाकर मोहब्बत का सजदा करें, उसकी इबादत करें। और मोहब्बत में साहब ये भी होता है कि लोग मिले और मिलने के बाद कहीं ना कहीं एक दौर बिछड़ने का भी आ जाता है। अच्छा, हमने आपको मिलन के कई नगमे सुनाए, आइए अब आपको सुनाते हैं बिछड़ने का एक नगमा। और मुझको उम्मीद है कि ये नगमा भी आपके दिल को बहुत छुएगा। सुनकर बताइए कि ये नगमा आपको कैसा लगा।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है, सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

जी हाँ, मतलब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमत लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। कल है बुधवार, अपने खजाने के साथ रहिएगा तैयार। आसमान वाले ने चाहा तो कल हम यहीं मिलेंगे आपसे ठीक 9:30 बजे आप ही के कार्यक्रम बाहर ए गजल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गाइनस 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। चलते चलते एक प्यारा सा नगमा आपको और सुनाते हैं।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं तनु, आज हूं आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी कुबूल है। ऑफिस में नए रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यूज चल रहे थे। रिचा इंटरव्यू बोर्ड की मेंबर थी। सुबह से 22 लोगों के इंटरव्यू हो चुके थे। उनमें से कुछ को सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया था पर अभी तक ऐसा कोई भी ब्राइट कैंडिडेट सामने नहीं आया था जिसे देखकर ये लगे कि ये कंपनी के लिए वाकई एसेट साबित होगा। लंच टाइम हो रहा था इसलिए इंटरव्यू से भी ब्रेक ले लिया गया। बड़ा बोझिल सा दिन लग रहा था। सारे मेंबर्स चाय के साथ यही डिस्कस कर रहे थे कि अभी तो काफी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू बचे हैं, होपफुली उनमें से हमें अच्छे फ्रेशर्स मिल जाएं। पता नहीं क्या हो गया है आज की इस जेनरेशन को, बस किताबी पढ़ाई और एक्स्ट्रा टाइम में फालतू का सोशल मीडिया। जनरल अवेयरनेस से कोई मतलब ही नहीं है। सारी दुनिया को बस डिजिटली ही देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस का उनके पास कोई सलूशन नहीं होता। जैसे इतनी छोटी सी उम्र में ही मशीनी जिंदगी जीने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रख लिया हो। एकदम घड़ी की सुइयों के साथ चलने वाली जिंदगी के लिए सेट। ठीक है, जरूरी है पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी जरूरी है, रिक्वायर्ड है, पर इस उम्र की अपनी एक ब्राइटनेस भी तो होती है। वो कोलीग्स के साथ बॉन्डिंग, वो वीकेंड के प्लान्स, कभी ऑफिस में भी चोहलबाजी, कभी किसी सिचुएशन का आउट ऑफ द वे सॉल्यूशन, पर्सनालिटी में वो कॉन्फिडेंस, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का जज्बा। एक अच्छा एम्प्लॉय भी वही साबित हो सकता है जो एक खुले विचारों का इंसान हो, साफ दिल वाला, जिसके पास एक सच्चा मन हो। अगर हम साथ वाले को पीछे ढकेलना चाहेंगे तो एज अ होल प्रोग्रेस कैसे करेंगे? ऐसा इंसान जिसके होने से पूरे माहौल में पॉजिटिविटी हो, ऐसा कॉन्फिडेंस जो टीम को लीड कर सके, जो अपने जस्टिफिकेशन से सबको मोटिवेट कर सके, जिसे लोग सुनना चाहें, जिसे फॉलो करना चाहें, जो हर काम को बेहतरीन ढंग से करना जानता हो, हर सेकेंड प्रोग्रेसिव रहना चाहता हो, जिसे जिंदगी जीने का सही तरीका आता हो।

कुछ फ्रेशर्स को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया था, पर अभी तक ऐसा कोई भी सामने नहीं आया था जिसे एम्प्लॉय करके ऐसा लगे कि हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे ही रिक्रूट्स की जरूरत है जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में एक एसेट साबित होंगे। टी ब्रेक के बाद फिर से इंटरव्यू शुरू हो गए। एक और अनमना सा इंटरव्यू चला। फिर भी उनसे बोला गया, नेक्स्ट कैंडिडेट को भेज दो। नेक्स्ट कैंडिडेट के आने तक रिचा अपने फोन में मैसेजेस चेक करने लगी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मे आई कम इन। इतनी भारी रौदीली कॉन्फिडेंट आवाज सुनकर रिचा ने मोबाइल स्क्रीन से अपनी नजरें हटाकर ऊपर देखा। जितनी रौबदार आवाज उतनी ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, परफेक्ट बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस। रिचा ने अपना मोबाइल साइड में रख दिया। इस कैंडिडेट का इंटरव्यू ठीक से लेना पड़ेगा। देखते हैं फिजिकल अपीयरेंस से मेंटल कैपेबिलिटी मैच करती है या नहीं। इंट्रोडक्शन प्लीज, माय नेम इज ध्रुव, बोलकर उसने अपना परिचय देना शुरू किया। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब कोई इंसान अपनी मेहनत से कुछ अचीव करता है तो उसके बारे में बात करने का उसका कॉन्फिडेंस ही ये प्रूफ कर देता है। गलत तरीके से पाई हुई डिग्रियां या सिफारिश लेकर आया कोई इंसान, उसमें वो भारीपन आ ही नहीं सकता। जितनी बखूबी उसने अपना परिचय दिया, उतनी ही धैर्य से सारे बोर्ड मेंबर्स के सवाल भी सुने और एक एक करके अपने पर्सपेक्टिव के साथ उन सब के सूटेबल जवाब भी दिए। अगर कोई बात नहीं पता थी तो उतनी ही स्थिरता से मना भी कर दिया। जिंदगी में वही इंसान प्रोग्रेस कर सकता है जो अपनी कमियों को और गलतियों को एक्सेप्ट करे। झूठी काबिलियत दिखाने से अंत में सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे पहले से ही सब कुछ आता हो। बस अपने अहम को किनारे रख के सीखने की और आगे बढ़ने की ललक ही इंसान को एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचा देती है। ध्रुव में हर वो बात थी जो कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स में देखना चाहती है। सारे बोर्ड मेंबर्स ने उसे एक मत से सेलेक्ट कर लिया।

आप ट्यून्ड हैं 89.6 FM पर। मैं हूँ तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर में प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कबूल है। अब तक आपने सुना, रिचा की कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यूज चल रहे थे। फर्स्ट हाफ में तो कोई खास कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, पर ब्रेक के बाद एक ऐसा कैंडिडेट आया जिसकी ब्राइटनेस और इंटेलेक्ट ने सारे बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर दिया और सभी ने उसे एक मत से सेलेक्ट कर लिया। उसका नाम था ध्रुव। सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अगले महीने की 1 तारीख से ऑफिस ज्वाइन करने का लेटर दे दिया गया। ज्वाइनिंग डे पर सभी को लंच टाइम में कैंटीन एरिया में बाकी सबसे इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कलेक्ट होने को कहा गया। सब ने अपना परिचय दिया। किसी में थोड़ी हिचक थी, कोई पहला दिन होने की वजह से थोड़ा सा शांत था, पर ध्रुव के चेहरे पर थी एक कॉन्टिन्यूअस अपीलिंग स्माइल। वो सबके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, सबको स्नैक्स ऑफर कर रहा था और उसके वहां होने से एक अलग सी एनर्जी थी। रिचा एक कोने में खड़ी सबको ऑब्जर्व कर रही थी। रिचा अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। जब उसकी नई नई नौकरी लगी थी तभी एक कार एक्सीडेंट में उसके पापा समय से पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए और घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। भाई बहनों को पढ़ाने में, सेटल करने में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। खुद के लिए कभी कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सही उम्र में छोटे भाई बहनों की शादी भी कर दी, पर खुद अपने लिए कोई फैसला नहीं ले पाई। कई बार सबने समझाने की भी कोशिश की, पर उसका हमेशा एक ही जवाब होता कि पहले सबकी जिम्मेदारियां पूरी कर दूं, फिर कर लूंगी। पर वो फिर आते आते बहुत देर हो गई। अचानक उसे याद आया कि माँ के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करना था। वो साइड में पड़े सोफे पर बैठकर मोबाइल पर अपॉइंटमेंट बुक करने लगी। तभी उसे लगा कि उसके बगल में कोई खड़ा है। उसने देखा तो ध्रुव था। उसके एक हाथ में कॉफी का मग था और दूसरे हाथ में एक प्लेट में सैंडविच। मैम, आप कुछ नहीं ले रही? व्हाट डू यू लाइक टू हैव? कॉफी एंड सैंडविच? या मैं आपके लिए कुछ और ले आऊं? नो, इट्स ओके, मैं ले लूंगी। बताइए ना क्या चाहिए, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, ये कॉफी मुझे दे दो। क्या मैं भी अपनी कॉफी लाकर यहाँ आपके साथ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। जो अपने लिए भी कॉफी लेकर आया और रिचा के साथ कुछ देर वहीं बैठा रहा। वैसे रिचा बहुत रिजर्व नेचर की थी। उसे अपने कॉलीग से काम के अलावा बहुत ज्यादा बात करना वरना पसंद नहीं था, पर न जाने क्यों उसने ध्रुव से आज उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ सवाल किए। घर में कौन कौन है, उसका घर कहाँ है, कुछ हॉबीज के बारे में भी। जो अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ रिचा के हर बात का बड़ी शालीनता से जवाब देता रहा। कुछ तो बात थी उन दोनों में जो उनके बीच एक कनेक्शन बना रही थी।

आप ट्यून है 89.6 FM पर। मैं हूँ तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कुबूल है। अब तक आपने सुना रिचा के ऑफिस में रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू थे। सारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में से ध्रुव एक ऐसा शख्स था जिससे सारे ही बोर्ड मेंबर्स इंप्रेस हो गए थे और सभी ने उसे एक मत से सेलेक्ट कर लिया था। अगले महीने की 1 तारीख को सारे नए रिक्रूट्स को ज्वाइन करने को कहा गया था। उस दिन सबको इंट्रोडक्शन के लिए कैंटीन एरिया में कलेक्ट होने को कहा गया। वहां पर भी ध्रुव एक अलग ही रौनक लगाए हुए था, हर वक्त चेहरे पर स्माइल, सबको इक्वली फ्रेंडली अटेंड करना। उसने भीड़ से अलग बैठी रिचा को भी जाकर कॉफी ऑफर की और परमिशन लेकर कुछ देर उसके पास ही बैठ गया। रिचा अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और पापा की असमय डेथ के कारण उस पर सबकी जिम्मेदारियां आ गई थीं। सबको पढ़ाया, शादियां की और जिम्मेदारियों में खुद उसकी उम्र कब खिसक गई वो समझ ही नहीं पाई। अपने हालातों की वजह से वो बहुत ही शांत और रिजर्व नेचर की थी। ऑफिस में सबसे प्रोफेशनल रिलेशंस ही रखती थी, पर उस दिन पता नहीं क्यों उसने ध्रुव से कुछ अनऑफिशियल बातें भी की। ध्रुव की बहुत ही अपीलिंग पर्सनालिटी थी जो रिचा को भी अट्रैक्ट कर रही थी। अब आगे कुछ ही दिनों में वो ऑफिस में सबसे ऐसे घुल मिल गया जैसे मानो कब से सबको जानता हो। उसका केबिन रिचा के केबिन के ठीक सामने ही था। रिचा नोटिस करती कि जब भी उसे किसी सबॉर्डिनेट से कुछ डिस्कस करना होता, कुछ समझाना होता, तो वो अपने केबिन में बुलाने के बजाय खुद ही उनके वर्क स्टेशन पर आ जाता और साथ बैठकर काम करता। सीनियर पोस्ट पर होने के बावजूद सबका हालचाल पूछता रहता और वेलफेयर के मामलों में तो सबसे आगे। उसके होने से पूरे ऑफिस के वर्किंग एनवायरनमेंट में एक एनर्जी सी रहती थी, आउटपुट बेटर होने लगे थे। रिचा ने अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी पूरी की थी, लेकिन अब सब अपनी अपनी फैमिली में एंगेज हो गए थे और रिचा के अंदर एक खालीपन सा रहने लगा था। उस दिन उसका मन कुछ ज्यादा ही खराब था। सुबह जल्दी ऑफिस आ गई थी, ना एक बार भी केबिन में कुछ खाने पीने को मंगाया, ना ही खुद कैंटीन गई। लंच टाइम के लगभग आधे घंटे बाद किसी ने उसका डोर नॉक किया। कम इन। उसने देखा तो ध्रुव था, हाथ में अपना लंच बॉक्स लिए। आते ही बोला, आज मैं आपको खिलाता हूँ मेरी माँ के हाथ की स्पेशलिटी, आलू के पराठे। जब तक रिचा कुछ कहती, उसने प्योन से कहकर 2 प्लेट में टिफिन के पराठे लगवा दिए और उसे 2 कप चाय का ऑर्डर देकर भेज दिया। खुद सामने की चेयर पर बैठ गया और बोला, खाइए ना, और तारीफ भी चाहूंगा घर पर जाकर माँ को बताने के लिए। फिर रिचा का मूड भी अचानक बदल गया, उसके चेहरे की शिकन मुस्कुराहट में बदल गई। खाना खाने के बाद ध्रुव बोला, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आज आपका मूड कुछ सही नहीं है, सुबह से आपने एक कॉफी तक नहीं मंगाई। अगर आप सही समझे तो मुझसे शेयर कर सकती हैं, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। उस पल कुछ ऐसा हुआ कि एकदम इंट्रोवर्ट नेचर वाली रिचा ने अपनी जिंदगी की किताब ध्रुव के सामने खोल कर रख दी। जवाब में ध्रुव ने कहा, आज से मेरे मन में आपकी इज्जत और बढ़ गई, आप वाकई एक आइडियल लेडी हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू।
उस दिन के बाद उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। ऋचा भी अब कुछ खुश सी रहने लगी थी।

आप ट्यून्ड हैं 89.6 एफएम पर। मैं हूं तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कुबूल है। अब तक आपने सुना ऋचा की कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यूज थे। ऋचा इंटरव्यू बोर्ड की मेंबर थी। वैसे तो कई कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए, पर ध्रुव की बात ही कुछ अलग थी। इंटेलिजेंट, इम्प्रेसिव, एनर्जेटिक, सारे बोर्ड मेंबर्स ने एक मत से उसे सिलेक्ट कर लिया। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद जल्दी ही ध्रुव सबसे घुल मिल गया। काम के साथ साथ सबसे पर्सनल कनेक्शन भी रखता था और सबका ख्याल रखता था, और वेलफेयर के कामों में तो सबसे आगे। जब उसने नोटिस किया कि ऋचा कुछ गुमसुम सी रहती है, तो उसने खुद आगे बढ़कर ऋचा से दोस्ती करी। उसमें कुछ तो ऐसी बात थी कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाली ऋचा ने भी उसे अपने बारे में काफी कुछ बता दिया। कैसे उसके पापा एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, उसने ही घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करी, सब भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, सबकी शादियां करी, और अब जब वो सब अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो गए हैं, तो उसकी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। बहुत जल्दी वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स बन गए। ऋचा को ऐसा लगने लगा था कि उसे भी समझने वाला, उसकी केयर करने वाला कोई तो है। अब दोनों रोज साथ लंच करने लगे। लंच के साथ काफी बातें भी हो जाती। उसे अपने मन की बात करके बहुत हल्का महसूस होता। ध्रुव को भी इंतजार रहता कि कब मौका मिले और वो दोनों साथ कुछ समय बिताएं। एक दिन ध्रुव ने ऋचा से कहा, आज शाम को कहीं बाहर चलें। शाम 6 बजे का टाइम तय हुआ। ध्रुव ने ऋचा को उसके घर से पिक किया और वो दोनों नदी के घाट पर पहुंच गए। बहुत अच्छा लग रहा था वहां शाम के वक्त। वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठे बैठे काफी देर तक बात करते रहे। फिर ध्रुव ने ऋचा से कहा, मैं आज तुम्हें यहाँ कुछ खास बात करने के लिए लाया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऋचा झटके से खड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ ध्रुव। बस अब हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। ध्रुव कुछ नहीं बोला। शायद उसे पता था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ऋचा नहीं ले पाएगी। उसे सोचने के लिए कुछ समय देना चाहिए। उसने ऋचा को उसके घर ड्रॉप कर दिया और चला गया। अगले दिन ऋचा को ऑफिस जाने का मन नहीं किया। शायद वो ध्रुव को फेस करने से बच रही थी। उसने 3 दिन की लीव एप्लीकेशन लगा दी। अगले दिन शाम को जब ऋचा घर पर बैठकर चाय पी रही थी, तभी उसका छोटा भाई ऑफिस से वापस आ गया। घर आते ही सोफे पर बैठकर जूते उतारते हुए उसने बोला, ऋचा दी, ये ध्रुव कौन है? ऋचा की धड़कन तेज हो गई। क्यों, क्या हुआ? भाई बोला, आज वो मेरे ऑफिस आया था। तुमने ही शायद उसे बताया है ना कि मैं कहाँ काम करता हूँ। ऋचा बोली, तुमसे किस लिए मिलने आया था, क्या कह रहा था? भाई सोफे से उठा और आकर ऋचा के पास खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, दीदी, वो तुमसे शादी करना चाहता है, और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। पर दीदी, अगर तुम दोनों तैयार हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको बहुत खुशी होगी। ऋचा ने माँ की तरफ देखा। माँ बोली, हाँ बेटा, हाँ कर दो, तुम खुश रहो, हम सब यही चाहते हैं, हमें और किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋचा ने बिना कुछ बोले अपनी शर्मीली मुस्कुराहट से सबको अपनी हाँ बता दी।
अपने कमरे में गई, फोन उठाया और ध्रुव को मैसेज कर दिया, कबूल है।

आप ट्यून्ड हैं 89.6 FM पर। मैं हूं तनु और ये थी मेरी आज की कहानी कुबूल है। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मुझे रिव्यूज भेज सकते हैं 9453254315 पर। और अगर आप भी पहुंचाना चाहते हैं अपने अपनों तक अपने दिल की बात तो हमें लिख दीजिए अपनी कहानी। हम लाएंगे उन्हें गीतों में पिरोकर आपके लिए। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। तब तक के लिए सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

दोस्तों, इतनी सारी गानों की आवाज सुन के अभी तो आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या लेके आई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको बता देती हूँ कि आज मैं जिस शो में आपको लेके आई हूँ और जिस सिंगर की बात करने वाली हूँ वो है क्या। दरअसल हम बात करने वाले हैं जो 2025 में जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। जी हाँ, शो चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत और मैं हूँ आपकी आरजे अनोखी। और आज हम उस सिंगर की बात करने वाले हैं जो अपने दौर में बहुत ज्यादा चर्चित रही, कभी अपने गानों को लेके तो कभी उन गानों के तरीकों को लेके। और आज भी वो उतनी ही प्रिय हैं हम सभी के बीच। वो हैं कौन, इनकी क्या कहानी है, बाकी सब क्या है ये जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक सॉन्ग हो जाना चाहिए। सुन लेते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना, ये खनक वाली आवाज, जी हाँ, है किसकी, आप जानने को बिल्कुल उतावले होंगे और कुछ लोग तो जान भी गए होंगे जिनकी ये फेवरेट रही है। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे भूले बिसरे गीत में पूर्णिमा जी की। जी हाँ, जिनका बचपन का कुछ और ही दौर रहा है, और जब ये अपने जवानी में आई, मतलब जब इनके करियर का दूसरा पड़ाव स्टार्ट हुआ, तो वो दौर कुछ और ही रहा। जी हाँ, 90 के दशक की खोज कही जाने वाली पूर्णिमा जी, 9 साल की उम्र में ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया था, फिल्मी सॉन्ग्स, और जैसे कि ये गाना है कि

तेरा वादा। और 70 के दशक में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत ही फेमस रही हैं पूर्णिमा जी, और बचपन में इनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, जो कि बड़े होकर इन्होंने खुद ही बदल दिया। और इसी तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारी गॉसिपिंग भी रही इनकी लाइफ को लेके, क्योंकि जब ये बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट थी तो इनके गाने का तरीका कुछ और था, और जब ये बड़ी हुई तो इनके गाने का तरीका कुछ और ही रहा।

कहा जाता है पूर्णिमा के गाने फिल्मों को हिट करवाने में बहुत हेल्पफुल माने जाते हैं, जो बेहद अपीलिंग और खनकदार माने जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ डबल मीनिंग और अश्लील गानों के लिए इन पर आरोप भी लगे और बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई। जैसे सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, कबूतरी बोले कबूतर से, ऐसे ही बहुत सारे गाने इन्होंने गाए, जिसके चलते इनको वो हक और सम्मान नहीं मिला जो बाकी क्लासिक सिंगर्स को मिलना चाहिए था या मिला। और इनके दशक में हमारे पास में हमारे 90s के जो सिंगर्स रही हैं, अलका याग्निक जी हो गई, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी बहुत सारी दिग्गज कलाकार आ रही हैं, फिर भी इन्होंने अपना मकाम बखूबी हासिल किया। तो आइए बढ़ते हैं इन्हीं के एक और गीत की ओर।

अब हमारी पूर्णिमा जी पूरे 64 साल की हो गई हैं और पिछले ही साल यानी 2025 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। पूर्णिमा जी ने क्षेत्रीय भाषा के

पूर्णिमा, जिनका असली नाम सुषमा श्रेष्ठ है, एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर है, जिन्होंने 1990 के दशक में बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए हैं और सुषमा श्रेष्ठ के नाम से बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें इतनी शक्ति हमें देना दाता और बोल राधा बोल जैसे गानों के लिए जाना जाता है और उन्होंने कई सारी भाषाओं में अलग अलग गाने गाए हैं। इनका जन्म 6 सितंबर 1960 में हुआ और ये नेपाल से बिलोंग करती। शुरुआत इन्होंने बाल कलाकार के रूप में 1971 की फिल्म अंदाज से की, जिसमें है ना बोलो बोलो ये वाला गाना इन्होंने गाया था। 90 का दशक इनके लिए वर्चस्व का दशक रहा, जब इन्होंने बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में एंट्री ली। 1971 की फिल्म अंदाज से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जिसमें इन्हें गाना मिला था है ना बोलो बोलो ये वाला गाना। जी हाँ, इनके कई सारे प्रसिद्ध गीत रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस माने गए कुछ गीत हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। बोल राधा बोल, तुतु तु तु तु तारा, जो कि आई थी 1992 में, इतनी शक्ति हमें देना दाता मूवी था अंकुश, और मूवी आई थी 1986 में। इसके अलावा हीरो नंबर वन का टाइटल ट्रैक टुकुर टुकुर देखते हो क्या, मैंने पैदल से जा रहा था उन्हें मोटर से आ रही थी, शाम है धुआं धुआं, गजब सीटी मारे सजन रे झूठ मत बोलो, ऐसे बहुत सारे गाने इन्होंने गाए, जिसकी वजह से माना जाता है इन्हीं गानों के कारण कहीं ना कहीं मूवीज भी हिट होती थी उस वक्त, जब पूर्णिमा जी के गाने उन मूवीज में हुआ करते थे। तो चलिए आनंद लेते हैं कुछ और गीतों का, जिसको गाया है पूर्णिमा जी ने।

अब बात करते हैं पूर्णिमा जी के निजी जीवन के बारे में, जिसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है मुझे। कारण है कि इन्होंने अपनी जानकारी आज तक कभी किसी से साझा ही नहीं की। इनकी शादी के उपरांत ये बिल्कुल से अपने करियर पे स्टॉप लगा के बैठ गई थी। माना जाता है कि जब इनकी शादी हुई उसके बाद इन्होंने ना कोई स्टेज परफॉर्मेंस दिया, ना ही किसी गाने से इनका कोई ताल्लुक रहा। लेकिन इनकी अगर निजी जीवन की बात करें तो इनका एक बेटा है जिनका नाम है निशांत चंद्रा, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है। और बाकी अगर इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने ज्यादा कभी किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी इंटरव्यू में इसके बारे में कोई बात नहीं की। तो चलिए बढ़ते हैं इन्हीं के एक और गीत की ओर और पुनः से आते हैं आज के सफर का